सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून 2026। इस समय प्रातः के 5:58:33 में है। अब आज की प्रथम सभा आरंभ होती है। आज की सभा में अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियो शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश

0: पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

जो व्यक्ति कर्म के साथ भगवान पर विश्वास रखता है वह परिस्थितियों से नहीं हारता। भगवान हमेशा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं, कभी हमारी इच्छा के अनुसार और कभी हमारे हित के अनुसार।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु, विषय है आत्मानुभूति, आलेख है श्री जय कुमार मुद्गल का, वाचन है श्री कृष्ण शरद का।
1: शुभ और अशुभ दोनों एक ही आत्मा के आंशिक प्रकाश मात्र हैं, फिर भी अशुभ मनुष्य के वास्तविक स्वरूप का, उसकी आत्मा का बाह्यतम आवरण है और शुभ अपेक्षाकृत। जब तक मनुष्य अशुभ के स्तर को छिन्न नहीं कर लेता, तब तक वो शुभ के स्तर पर नहीं पहुंच सकता, और जब तक वो शुभ और अशुभ दोनों के स्तरों को पार नहीं कर लेता, तब तक वो आत्मा तक नहीं पहुंच सकता। आत्मा की प्राप्त होने पर उसके लिए फिर क्या रह जाता है? अत्यंत अल्प कर्म, अतीत जीवन के कर्मों का अति अल्प वेग, पर ये वेग भी शुभ कर्मों का ही वेग होता है। जब तक अशुभ वेग एकदम समाप्त नहीं हो जाता, तब तक पहले की अपवित्रता बिल्कुल दग्ध नहीं हो जाती, तब तक कोई भी सत्य का साक्षात्कार और उसकी उपलब्धि नहीं कर सकता। अतएव जिन लोगों ने आत्मा को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, उनके लिए अतीत जीवन के शुभ संस्कार, शुभ वेग ही बचा रहता है। शरीर में वास करते हुए भी, अनवरत कर्म करते हुए भी, वे केवल सत्कर्म ही करते हैं। उनके मुख से सबके प्रति केवल आशीर्वाद ही निकलता है, उनके हाथ केवल सत्कार ही करते हैं, उनका मन केवल सत्चिंतन ही कर सकता है। उनकी उपस्थिति ही, चाहे वे कहीं भी रहें, सर्वत्र मानव जाति के लिए महान वरदान होती हैं। यदि वो कुछ भी न बोलें, तो भी उसका होना मात्र मानवता के लिए एक आशीष स्वरूप है। ऐसा व्यक्ति अपनी उपस्थिति मात्र से घोर दुरात्मा को भी संत बना देता है। इस प्रकार के व्यक्ति के द्वारा क्या कोई बुरा कार्य संभव है? ये सत्य है कि प्रत्यक्षानुभूति और केवल मुख से कहने में आकाश पाताल का अंतर है। अज्ञानी व्यक्ति भी नाना प्रकार की ज्ञान की बातें कहता है। तोता भी इस तरह बोलता है, मुंह से कहना एक बात है और अनुभव करना दूसरी बात। दर्शन, मतामत, विचार, शास्त्र, मंदिर, संप्रदाय आदि को अपने स्थान पर ठीक हैं, पर प्रत्यक्षानुभूति होने पर ये सब पीछे छूट जाते हैं। जैसे नक्शा अच्छी चीज है, पर नक्शे में अंकित देश को स्वयं देखकर आने के बाद यदि उसी नक्शे को पुनः देखो तो कितना अंतर दिखाई पड़ेगा। अतीब जिन्होंने सत्य को प्रत्यक्ष कर लिया है, उन्हें फिर सत्य को समझने के लिए न्याय युक्ति, तर्क वितर्क आदि बौद्धिक व्यायामों की आवश्यकता नहीं रह जाती। उनके लिए तो सत्य जीवन का जीवन प्रत्यक्ष से भी प्रत्यक्ष हो जाता है। प्रत्यक्ष उपलब्धि करने वाले लोग निःसंकोच भाव से कह सकते हैं, यही आत्मा है। हम चाहे उनके साथ कितना ही तर्क क्यों ना करें, वे हमारी बात पर केवल हंसेंगे। जब हम ठीक ठीक प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, तभी हमें प्रत्यक्ष उपलब्धि होगी और तभी हम वास्तव में धार्मिक होंगे। जब तक ये उपलब्धि हमें नहीं होती, तब तक हम में और नास्तिक में कोई भेद नहीं है। जो ये कहता है कि मैं धर्म में विश्वास करता हूँ, पर वो उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति की चेष्टा नहीं करता, वो निष्कपट नहीं हो सकता।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु कार्यक्रम, विषय था आत्मानुभूति, आलेख श्री जय कुमार मुद्गल का था, वाचन था श्री कृष्ण शरद का।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र के साथ। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है रंजना जोगलेकर का, संगीत है सतीश भाटिया का।

स्वयंभुव मनु से मनुष्यों की अनुपम सृष्टि हुई मानी जाती है। महाराज मनु ने दीर्घ काल तक राज्य किया। राजकाज करते हुए बुढ़ापा आ गया, किंतु विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। ये सोच मनु अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजकाज का भार अपने पुत्र को सौंपा और अपनी रानी शत्रुपा को साथ लेकर वन गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाले तीर्थ नैमिषारण्य को, जहां मुनियों और सिद्धों के समूह बसते थे, मनु शत्रुपा ने अपना निवास स्थान बनाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षरों वाले इस मंत्र का जाप उनकी तपस्या का आधार था। आरंभ में मनु दंपति साग फल तथा कंद का अल्पाहार करते थे, फिर फलमूल त्याग कर केवल जल पीकर रहने लगे। मन में मात्र एक उत्कट अभिलाषा कि किसी प्रकार उन परम प्रभु को देखें जो निर्गुण अखंड अनंत और अनादि हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर था रंजना जोगलेकर का, संगीत था सतीश भाटिया का।

हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा खरीफ सब्जियों की उन्नत प्रजातियां। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 7:00।

सुबह 7:31 पर ब्रज माधुरी कार्यक्रम में सुनिएगा कवि मुखसौ। आज के कवि होंगे मनोज कुमार शर्मा, साथ ही सुनेगा कुछ ब्रज लोकगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन पाएंगे सुबह 8:30 पर। 9 बजे हिंदी वार्ता के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम हर घर जल, जल जीवन मिशन। आलेख होगा महेंद्र सिंह का, वाचन होगा राजेश शर्मा का, प्रस्तुति होगी ओपी सिंह की। कार्यक्रम आबोहवा का प्रसारण समय सुबह 9:25 पर। विषय होगा वायु प्रदूषण और पर्यावरण। आलेख और वाचन होगा डॉक्टर LC अग्रवाल का।

ब्रज दर्पण कार्यक्रम आपको सुनाएंगे सुबह 9:30 पर। प्रस्तुति होगी जितेंद्र सिंह की, संयोजन होगा ओपी सिंह का। फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आप तक पहुंचेगा पूर्वाहन 11 बजे। प्रस्तुति होगी देवराज कृष्ण दीक्षित के यादों के झरोखे से। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दिन 11:30 पर। मध्याह्न 12 बजे कार्यक्रम होगा गीत बात और SMS। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम का समय 12:30 पर। कलाकार होंगी माधुरी शर्मा। वनिता लोक कार्यक्रम आप सुन पाएंगे दोपहर 1:15 पर। चर्चा के विषय होंगे महिला सशक्तिकरण, योग और मेनोपॉज। साथ ही आरोग्य भेंट वार्ता सुनिएगा, सर्वाइकल पेन कारण लक्षण और उपाय। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवदत्त शर्मा। भेंट करेंगी उषा पांडे। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय अपराह्न 2:30 पर। शाम 5:30 पर युववाणी कार्यक्रम में आज की बात में चर्चा होगी पूर्वजों का करें सम्मान, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर यह चर्चा होगी। साथ ही दूसरा विषय होगा योग, इसकी तकनीकें, आसन और लाभ। काव्य पाठ भी इसी कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे कीर्ति बल्लभ देव पाठक से।

ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम शाम 6:15 पर चर्चा होगी मिट्टी की सेहत और मेड़बंदी। दूसरी चर्चा बीजोपचार का महत्व। वार्ता सुनवाई जाएगी जून के द्वितीय पखवाड़े में किए जाने वाले कृषि कार्य।

वार्ताकार और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर फूल सिंह। संध्या वंदन कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 6:45 पर। 7:05 पर ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम में ब्रज वार्ता सुनवाई जाएगी। ब्रज साहित्य में सुदामा, वार्ताकार होंगे डॉक्टर गोपाल प्रसाद पाठक। शाम सुहानी, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 7:31 पर। विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर, ये आप सुन पाएंगे रात्रि 8:00। चित्रपट संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने सुनेगा रात 9:15 पर। विशेष कार्यक्रम

0: रात 9:15 पर। विशेष कार्यक्रम करें योग रहें निरोग, ये कार्यक्रम सुनवाया जाएगा रात 10 बजे। आलेख होगा जय सिंह का और वाचन होगा देवराज कृष्ण दीक्षित का। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रात 10:30 पर। आज आप सुनेंगे विदुषी अनीता सेन का ख्याल गायन, राग होगा यमन। तबले पर संगत करेंगे अब्दुल सलाम। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको सुनवाते हैं खेती की बातें कार्यक्रम। विषय है खरीफ सब्जियों की उन्नत प्रजातियां। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, खरीफ की प्रमुख फसलों में कद्दू वर्गीय सब्जियां, बैंगन मिर्च, भिंडी लोबिया और सेम का उत्पादन लिया जाता है। आज आप इनकी प्रमुख जो उन्नतशील प्रजातियां हैं उनके बारे में जान लें। सबसे पहले हम भिंडी को लेते हैं। भिंडी की जो प्रजातियां हैं उसमें आज़ाद भिंडी 1, परवनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी, वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, पूसा A-4 और BRS-6 प्रमुख किस्म हैं। बैंगन 2 तरह का होता है, लंबा और गोल। लंबी किस्मों में बैंगन की में आजाद क्रांति, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा क्रांति KS-331 और पंत सम्राट। गोल बैंगन में आजाद B-1, पंत ऋतुराज, कल्याणपुर टाइप 3, KS-224 और पूसा पर्पल राउंड। बैंगन की संकर प्रजातियां भी हैं जिसमें आजाद हाइब्रिड, अर्का नवनीत, सुफल, सुप्रिया, पूसा हाइब्रिड 5 और 6। मिर्च मसाले के लिए भी उगाई जाती है जिसमें पंत C-1, कल्याणपुर चमन, पूसा ज्वाला KDCS-810। अगर गृह वाटिका में मिर्च लगाना चाहते हैं तो इसके लिए चंचल, पंजाब लाल, पूसा सदाबहार किस्म अच्छी है। अचार के लिए अचार 8 और अचार 36 किस्म उपयुक्त मानी गई है। लोबिया की जो किस्में हैं उसमें पूसा बरसाती, पूसा 2 फसली और पूसा कोमल। सेम की किस्म रजनी और टाइप 2। अब हम बात करते हैं कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं उनकी किस्मों के बारे में। लौकी, जो लंबी लौकी आती है उसमें कल्याणपुर लंबी हरी, आजाद हरित, आजाद नूतन, पूसा प्रोलिफिक लॉन्ग, पूसा नवीन और अर्का बिहार। गोल लौकी किस्म है पंजाब गोल, पूसा संदेश, पूसा समर प्रोलिफिक राउंड। लौकी की ही संकर किस्मों में पूसा मंजरी, मेघदूत, वरद अच्छी किस्में हैं। तरोई में जो चिकनी होती हैं तोरई, उसमें कल्याणपुर हरी चिकनी, पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया। धारदार भी होती हैं तरोई, उसमें पूसा नसदार, रिज जेड, पंजाब सदाबहार CO-1। तरोई की संकर किस्मों में सुरेखा, हरिता, MSG-H-1। कद्दू कुल की जो किस्में हैं उसमें अर्का चंदन, पूसा विश्वास, पूसा विकास, अर्का सूर्यमुखी, अर्ली येलो और प्रोलिफिक, सोलन बादामी। करेला भी इस समय बहुत लगाया जाता है। करेला की किस्म है कल्याणपुर बारहमासी, पूसा 2 मौसमी, पूसा विशेष, अर्का हरित, प्रिया, फैजाबादी और बारहमासी।
0: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे खरीफ सब्जियों की उन्नत प्रजातियां, इस विषय पर वार्ता। वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। कुछ पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: गेस्ट में। गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं पतंगा फिल्म से, गाया है शमशाद बेगम और चितलकर ने। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई है सी रामचंद्र ने।
1: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

नागिन फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे हेमंत कुमार। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में। फिल्म का नाम है सुजाता, बोल मजरू सुल्तानपुरी के हैं, धुन बनाई है SD बर्मन ने।

एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, अब आगरा में भी लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही है वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2026 को किया था इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन। और मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नई तकनीकों को अपनाकर उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य की जगह देश का ग्रोथ इंजन बन गया है।
1: यूपी की एक नई पहचान बनी है। कहीं भी आप चले जाइए, गौरव के साथ 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासी आज अपनी इस पहचान के साथ जाने जा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का देश का सबसे अच्छा नेटवर्क है, रेलवे का बेहतरीन नेटवर्क है, मेट्रो बन रही है, प्रदेश में इंटर स्टेट कनेक्टिविटी बन रही है, नए नए पावर प्लांट लग रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही है, और आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाने का भी अब उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने कल गोरखपुर में गोरखपुर और आजमगढ़ मंडलों में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा भी की। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सभी निर्माण कार्यों में तेजी लाने और गुणवत्ता के साथ उन्हें समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
2: श्री योगी ने संबंधित अधिकारियों से दोनों मंडलों में संचालित पुराने और निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर सड़क निर्माण के कार्यों में तेजी लाने और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने देवरिया में निर्माणाधीन मोहन सेतु के कार्यों की प्रगति के बारे में विस्तृत जानकारी भी ली और अधिकारियों को कार्यस्थल का मुआयना कर सेतु निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्री योगी ने अधिकारियों पर जोर दिया कि वे जन प्रतिनिधियों से मिले प्रस्तावों के आधार पर प्राथमिकता तय कर सड़कों का काम जल्द शुरू कराएं ताकि आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिल सके। आकाशवाणी समाचार के लिए गिरीश नारायण चौबे, गोरखपुर।
0: मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में कल शाम महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की बैठक में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं को अत्याधुनिक विषयों में दक्ष बनाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने पर जोर दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल आगरा के शमशाबाद में महाराणा प्रताप की 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर श्री सिंह ने महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग और उनके संघर्ष को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में विश्व स्तर पर भारत की पहचान बदली है।
3: आपको जानकर खुशी होगी कि 2014 के बाद से दुनिया के 38 देशों के साथ व्यापार करने का समझौता भारत ने किया है। इसके पहले इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में प्लांट लगा रही हैं। आगरा भी डिफेंस कॉरिडोर का ही एक नोड है। डिफेंस फैक्ट्रियां अब इधर भी लगेंगी, लखनऊ से लगनी शुरू हो गई है, चित्रकूट में लगी, कहीं न कहीं कोई न कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की लगती चली जाएगी। अभी तो यह सिलसिला आगे बढ़ने वाला है मेरे बहन भाइयों, समय की प्रतीक्षा कीजिए।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट

0: neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं आज से शुरू हो रही हैं। एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला यह एयरपोर्ट भविष्य में 22.5 करोड़ यात्रियों का वैश्विक हब बनेगा। अंतिम चरण में 5 रनवे होंगे जो इसे विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट में शामिल करेगा। पश्चिम यूपी, दिल्ली, NCR और आसपास के राज्यों के लिए यह नया एविएशन गेटवे बनेगा। इंडिगो चरणबद्ध तरीके से लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर समेत 16 से अधिक शहरों के लिए उड़ानें शुरू करेगी। इसी के साथ अन्य उड़ान कंपनियां उड़ान भरेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन 28 मार्च 2026 को किया था। इस हवाई अड्डे की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी। विशाल धर दुबे, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध नगर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सुशासन के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं।
2: उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल बाराबंकी जिले में मीडिया से बातचीत कर पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ सेवा, सुशासन और जन कल्याण को शासन का मूल आधार बनाया है। वहीं अम्बेडकर नगर जिले में पहुंचे पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से युवाओं, किसानों और महिलाओं को बड़ा लाभ मिला है। आगरा में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल की मौजूदगी में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों की यात्रा ने देश की तस्वीर ही नहीं, तकदीर भी बदली है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार GST, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कल अयोध्या में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्री राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में सरकार ने SIT का गठन किया है। श्री मिश्र ने कहा कि जांच समिति की संस्तुतियों के आधार पर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। विभाग ने प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में आज भी कहीं कहीं बिजली गिरने और तेज झोंकेदार हवा चलने की चेतावनी दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 926 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 226 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुपोषण मिशन के दूसरे चरण का भी हुआ शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आगरा में महाराणा प्रताप की मूर्ति का किया अनावरण। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में बदली भारत की पहचान, अब आगरा में भी लगेंगी डिफेंस फैक्ट्रियां। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज से शुरू हो रही हैं वाणिज्यिक उड़ान सेवाएं। प्रधानमंत्री ने 28 मार्च 2026 को किया था इस एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन।

0: मौसम विभाग ने 20 जून तक प्रदेश भर में कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की जताई संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।

0: भैया, यह कार्यक्रम में आज आपको सबसे पहले सुनवाए रहे हैं कवि मुखसो। यह कार्यक्रम कवि हैं मनोज कुमार शर्मा।
1: सभी सुनबे बारे श्रोतान को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भैयाओ, जा मनुष्य के जीवन में जा योग को बड़ो महत्व होवे और जा योग को का महत्व होवे, योग को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए।

संसार को, समस्त विश्व को हमारे देश ने प्रदान कियो है। सुनो के योग प्रणेता शिव रहे जाने सकल जहान।

समात। तो बड़े बड़े ऋषि ने मुनि ने वेदन में पुराणन में जा योग की महिमा को आपको हमको सबको बताए हुई और जा योग को आज सगरो विश्व मानो है, पूरा विश्व मानो जाय के ताई हमारे देश को विश्व गुरु भी मानो जाए। देखो गीत के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहूँ कि जा योग को जा मानुष के जीवन में का महत्व होवे और योग करते का लाभ होवे और हमें जे योग क्यों करना चाहिए वो मैं जा गीत के माध्यम से आप सबके बीच में अपनी बात रखना चाहूँ।

घर घर जाके अलख जगाएं, करें योग और रोग भगाएं, करें योग और रोग भगाएं। आज बड़ी बड़ी जे मानसिक बीमारी चल रही भैया, जे बीमारी पहले टाइम पे ना ही, पहले वक्त पे ना ही, जा योग से जिनको भी उपचार हो सके, देखो जरा के

योग है। आज सगन को जे समझाएं, करें योग अरु रोग भगाएं। और देखो भैया, जब योग को परचम पूरे विश्व में फैर रहो है, के योग को परचम है फहरायो, शीघ्र जगत को है सिखलायो। योग को परचम है फहरायो, शीघ्र जगत को है सिखलायो। जा भारत को शीश झुकाए, करें योग अर रोग भगाए, करें योग अर रोग भगाए। और देखो भैया, जा योग से काका हमें लाभ मिले, सब मनखन को जे करना चाहिए, अपने जीवन ताई उतारना चाहिए, के प्राणायाम और आसन करके जीवन माहे खुशियन भर के, प्राणायाम और आसन करके जीवन माहे खुशियन को भर के, देश समाज

योग है। आज सगन को जे समझाएं, करें योग और रोग भगाएं। और भैया देखो, जा योग को भारत के जा ज्ञान को यूएन भी मानो और अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित करो। देखो जा अंतिम पंक्ति के माध्यम से मैं आप सबके बीच में रख रहा हूं कि यूएनओ ने जाकू जानो योग दे।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।
1: हॉर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवीआर फ्रांस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ

0: इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
2: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी। दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
3: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
4: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
3: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
5: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
3: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से

0: एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए, पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश, देशबंधु ने लिखा है। इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल, वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है। भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं, कहा देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ानें। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।

0: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आप सभी सुनने वालों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बावर्ची फिल्म से।

0: बावर्ची फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मन्ना डे, किशोर कुमार, हरीश चंद्र चट्टोपाध्याय और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा था कैफी आजमी ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत मुकेश और साथियों की आवाजों में। शब्दकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

स्वामी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत के बोल लिखे थे अमित कुमार ने, धुन बनाई थी राजेश रोशन ने।

लता मंगेशकर और आशा भोसले के स्वरों में अभी आप सुन रहे थे आए दिन बहार फिल्म के इस गाने को। लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गाने के साथ ही गीतांजलि कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9 बज रहे हैं और आइए अब आपको हिंदी वार्ता के अंतर्गत सुनवाते हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम हर घर जल। आलेख है महेंद्र सिंह का और वाचन है राजेश शर्मा का। प्रस्तुति OP सिंह की।

हमारा शरीर पंच महाभूतों से निर्मित है, जिनमें वायु और जल तत्व प्रत्यक्ष अनुभव तत्व हैं, जबकि आकाश, अग्नि और धरा तत्व अप्रत्यक्ष हैं। वायु और जल तत्व स्वयं में प्रकृति की संरचना में अपना प्रमुख योगदान देते हैं। वायु और जल यदि स्वच्छ रूप से उपलब्ध हैं, तो बाह्य पर्यावरण शुद्ध और संरक्षित बना रहता है, जबकि आकाश, भू और अग्नि तत्व आंतरिक परिवेश को संबल प्रदान करते हैं। इन तत्वों में से हम बात करें जल तत्व की, ये कहना समीचीन

होगा कि बिना स्वच्छ जल के जीवन का अस्तित्व संभव नहीं है। रहीमदास जी ने कहा भी है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इसलिए शुद्ध पेयजल के रूप में पृथ्वी पर अगर हम बात करें तो 3% से भी कम जल उपलब्ध है, जिसमें 1.6% भूमिगत जल, 0.001% जल वाष्प यानी बादलों के रूप में और लगभग 2.4% ध्रुवीय चोटियों और हिमनदों के रूप में है। वहीं 0.6% जल अन्य स्रोतों जैसे नदियों, झीलों और तालाबों में पाया जाता है। जीवन रक्षण हेतु इतना कम शुद्ध जल आज मानव की पहुंच में है, जिसके कुशल संरक्षण की जिम्मेदारी शायद हमारी भी है। आज की परिस्थितियों में COVID-19 जैसी महामारी ने निश्चित ही मानव को अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए सचेत किया है। वहीं टाइफाइड, मलेरिया, डायरिया, वायरल और डेंगू बुखार के साथ मस्तिष्क ज्वर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण कहीं न कहीं हमारी भी लापरवाही है। संक्रामक बीमारियों के प्रमुख कारणों में अशुद्ध जल का सेवन है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को मीलों दूर चलकर शुद्ध जल लाने जाना पड़ता रहा है। वहीं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में घर घर स्वच्छ जल उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना को जन कल्याण हेतु चलाया जा रहा है। वास्तव में ये योजना शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक ही लक्ष्य, जल की उपलब्धता और स्वच्छता मिशन के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु लागू की गई है। इस मिशन का उद्देश्य देशवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाना और जीवन सुगमता प्राप्ति है। अगर कहें जल जीवन मिशन का तात्पर्य हर ग्रामीण घर में निर्धारित गुणवत्ता वाले पानी की नल के जरिए पर्याप्त मात्रा में नियमित और स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित करना है, इससे गांव वासियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। 15 अगस्त सन 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जल जीवन मिशन के आरंभ की घोषणा की गई थी। तत्कालीन समय में 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में मात्र 3.23 करोड़ यानी लगभग 17% घरों में नल के जरिए जल आपूर्ति कनेक्शन द्वारा की जाती थी। स्थिति ये थी कि लगभग 17.70 करोड़ परिवार अपने घर के बाहर से पेयजल स्रोतों से जल आपूर्ति को मजबूर थे। जल जीवन मिशन के तहत सन 2024 तक हर ग्रामीण घर को सक्रिय घरेलू नल कनेक्शन मुहैया कराया जाना है। सन 2014 में भारत को खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 11 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया। देश को 2 अक्टूबर 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर खुले में शौच के अभिशाप से मुक्त घोषित कर दिया गया। जल जीवन मिशन का मतलब सतत विकास लक्ष्य 6 को हासिल करने के लिए निर्धारित समय सीमा से 6 वर्ष पहले ही सन 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में नल के जरिए जल आपूर्ति की व्यवस्था किया जाना है। इस तरह ये सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में अन्य विकासशील देशों के लिए आदर्श बन सकता है। इसके तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरों और राजमिस्त्रियों, प्लंबर, फिटर और पंप ऑपरेटरों आदि को स्थानीय निवासियों की दक्षता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि हर घर तक जल की नियमित आपूर्ति की जा सके। वर्तमान में इस मिशन पर काफी कार्य भी हो चुका है। जल जीवन मिशन के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान के अंतर्गत इन क्षेत्रों में खराब पानी वाले रिहायशी क्षेत्र,

रेगिस्तानी और सूखा प्रभावित क्षेत्र साथ ही पिछड़े और सांसद आदर्श ग्रामों को भी इसमें शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, इस मिशन में मानव विकास सूचकांकों में पिछड़े 112 आकांक्षा पूर्ण जिलों साथ ही इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित 61 जिलों में हर घर में नल के जरिए जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राथमिकता दी गई है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 3.77 करोड़ घरों को नल के जरिए जल आपूर्ति कनेक्शन दिए जा चुके हैं। अब ये मिशन 17% से बढ़कर 37% तक के सोपान तय कर चुका है। वर्तमान में गोवा और तेलंगाना हर घर जल वाले राज्य बन चुके हैं। इस मिशन के अंतर्गत जिन गांवों में निर्धारित गुणवत्ता वाला भूजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, वहां स्थानीय जल स्रोत पर आधारित पाइपलाइनों के माध्यम से जल आपूर्ति की ग्राम स्तरीय योजना बनाकर हर घर को इसका लाभ दिया जाएगा। आदिवासी पर्वतीय वन और रेगिस्तानी क्षेत्रों में सौर ऊर्जा द्वारा आधारित जल आपूर्ति शोधन संयंत्रों की स्थापना और नवाचारी प्रौद्योगिकी समाधानों को इस मिशन के अंतर्गत प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस मिशन के द्वारा हर घर को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 8 से 10 लीटर सुरक्षित और शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाना है। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने और जल से होने वाले रोगों को घटाने में सहायता मिलेगी। इसका लाभ सभी ग्रामीण आबादी, खासतौर से गर्भवती महिलाएं और बच्चों जैसे संवेदनशील समूहों को होगा। वर्तमान में जल जीवन मिशन के लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से स्थानीय समुदायों को ग्रामीण जलापूर्ति प्रणाली के लिए योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण देकर उनका सशक्तिकरण आवश्यक है। इस योजना में विभाग आधारित और निर्माण आधारित दृष्टिकोण के बजाय सेवा की डिलीवरी का नजरिया अपनाया गया है। इसके तहत लक्ष्य रखा गया है कि सशक्त समुदाय अपने गांव में जल आपूर्ति का प्रबंधन खुद करे, ग्राम पंचायतों और जल समितियों को स्थानीय जल आपूर्ति सेवा के तौर पर काम करना है, उनके पास हर घर को निर्धारित गुणवत्ता वाले पानी की स्थायी आधार पर नियमित और पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उन्हें कुशल होना चाहिए। इस तरह जल प्रबुद्ध गांव से आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। इस मिशन का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को दिया जाएगा। जल जीवन मिशन स्कीम के लिए सरकार ने 3.60 लाख करोड़ का बजट देने का प्रावधान किया है। स्कीम के माध्यम से 6 करोड़ घरों में पानी पहुंचाया जाएगा। जल जीवन मिशन के द्वारा होने वाले आर्थिक लाभों पर भी विचार कर लिया जाए। राज्य 42,000 कर्मियों के कौशल प्रशिक्षण की योजना बना रहा है, जिसमें राज्य और जिला जल और स्वच्छता मिशन के अधिकारी, इंजीनियरिंग कैडर जिसमें अधीक्षण अभियंता, कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता, राज्य और जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के कर्मचारी, PWSC सदस्य, स्वेच्छाग्रही ISA सदस्य, नेहरू युवक केंद्र की टीम और SHG के सदस्य शामिल हैं। राज्य में लगभग 76,000 लोगों को राज मिस्त्री, प्लम्बर, फिटर, मोटर मैकेनिक, पंप ऑपरेटर आदि आदि के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा, जिनकी सेवाओं का उपयोग जल आपूर्ति के बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ साथ उनके संचालन और रखरखाव में किया जाएगा। जल जीवन मिशन की कुछ विशेषताओं पर भी हमें ध्यान देना होगा। जल जीवन मिशन का मुख्य लक्ष्य है सभी घरों तक घरेलू कार्यशील नल कनेक्शन की व्यवस्था उपलब्ध करवाना। घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के साथ साथ स्थानीय जल संस्थानों के प्रबंधन को बढ़ावा दिया जाना। JJM हर ग्रामीण घर में कार्यात्मक घरेलू कनेक्शन सुनिश्चित करेगा। योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल, ग्राम पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्रों तक भी पानी के कनेक्शन उपलब्ध किए जाएंगे। जल जीवन मिशन स्थानीय स्तर पर

पानी की एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए पाइपलाइन जल आपूर्ति अवसंरचना का विकास करना है। जिन क्षेत्रों में जल गुणवत्ता की समस्या है, वहां मिशन के तहत प्रदूषण के निवारण हेतु प्रौद्योगिकीय मध्य परिवर्तन की व्यवस्था उपलब्ध की जाएगी। राज्य के जिला क्षेत्र में जल और स्वच्छता मिशन के तहत SWSM यानी स्टेट वाटर एंड सैनिटेशन मिशन के द्वारा कार्य किया जाएगा। जल जीवन मिशन से होने वाले लाभों में मुख्य रूप से घरों में पानी की व्यवस्था उपलब्ध होने से महिलाएं और किशोरी बालिकाओं को सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। उन्हें पानी लाने के लिए मीलों पैदल नहीं चलना पड़ेगा। महिलाओं के जीवन को आसान बनाने में मिशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। घर में पानी की सुविधा उपलब्ध होने पर महिलाएं अपने कार्यों को समय से पूरा कर पाएंगी। जल से संबंधित सभी समस्याओं से JJM के अनुसार ग्रामीण परिवारों को मुक्ति मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र के परिवार इस मिशन के माध्यम से स्वच्छ और ताजा जल नल से प्राप्त कर पाएंगे। आने वाली पीढ़ी को जल की व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए बच्चों को मिशन के तहत जल संरक्षण के बारे में जागरूक किया जाएगा, जिससे वो भविष्य के लिए जल को संरक्षित कर सकते हैं। ग्रामीण जल जीवन मिशन के तहत गाँवों में पेयजल के स्रोत के साधनों में वृद्धि होगी। इस प्रकार जिला जल परीक्षण प्रयोगशालाएं भी स्थापित होंगी और मौजूदा प्रयोगशालाओं के लिए NABL मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता है, ताकि जब लोगों को अपने घर पर प्राप्त पानी की गुणवत्ता के बारे में कोई संदेह या चिंता हो तो वे अपने जल के परीक्षण को नाम मात्र दरों पर परीक्षण करवा सकें।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम हर घर जल। आलेख था महेंद्र सिंह का, वाचन था राजेश शर्मा का और प्रस्तुति थी ओपी सिंह की।

0: जल है तो कल है, इसलिए जल का उपयोग खूब सोच समझ कर करें। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।
1: जिले की हलचल। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए देवरिया और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल। आलेख और स्वर है बृजेश चंद्र शर्मा का।
2: केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सफल 12 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजा पाठ हवन कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही विभिन्न जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई भी किया गया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान की मूल भावना के साथ विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत चयनित लाभार्थियों में स्वीकृत पत्र का वितरण किया गया। जिले में उत्तर प्रदेश आरक्षित नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा का आयोजन जिले में 12 परीक्षा केंद्रों पर सकुशल संपन्न हो गया। विकास के क्षेत्र में जिले को प्रदेश का रोल मॉडल बनाने के लिए जिलाधिकारी मधुसूदन हुलगी ने अपने अधिकारियों के साथ बैठकें कर विकास की गति को और अधिक तेज करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। विकास कार्यों का क्रियान्वयन पूरी गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ होना चाहिए।

0: कार्रवाई मिलने पर अधिकारी व कर्मचारी की जिम्मेदारी तय करते हुए विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जल स्तर एवं वर्षा संबंधी आंकड़ों का नियमित प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कटान रोधी परियोजनाओं को स्वसमय पूरा करने का आश्वासन देते हुए कहा कि जिले की बाढ़ से संबंधित 3 तहसीलों में से बरहज व रुद्रपुर में बाढ़ आने की ज्यादा संभावना रहती है। ऐसे में संभावित बाढ़ वाले क्षेत्र में सभी जरूरी एहतियातों को स्वसमय पूरा कर ले, जिससे कि आमजन को कोई समस्या न हो। बाढ़ एवं आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर सिंचाई व बाढ़ विभाग द्वारा संयुक्त रूप से जिले के सलेमपुर, बरहज व रुद्रपुर तहसील में राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। इस दौरान डूबे व्यक्तियों की खोज, बाढ़ के दौरान भवन ध्वस्त होने पर लोगों को बचाना आदि का सजीव प्रदर्शन किया गया।
1: हमारे जिले में बाढ़ विभाग द्वारा, सिंचाई विभाग द्वारा लगातार इसमें मॉनिटरिंग करके जो बाढ़ से बचाने हेतु तटबंध बनाने होते हैं उसके कार्य भी बहुत तेजी से चल रहा है, ताकि हम लोग कोई कटान ना हो और कोई भी आम जनमानस को किसी भी तरह का कोई इश्यूज क्रिएट ना हो। उसके साथ हमारी पूरी बाढ़ की तैयारी भी है, हमारे बाढ़ चौकी की तैयारी है, तो जिला पूरा तैयार है अगर कोई ऐसी सिचुएशन आता है तो सिचुएशन को एक साथ जोड़कर फेस कर सकते।
0: विगत दिनों विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री दयाशंकर सिंह ने जनप्रतिनिधियों के साथ एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। साथ ही जिले में 5,27,000 पौधे रोपित किए जाने के लक्ष्य के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा कि जलवायु संतुलन और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने एक पेड़ माह के नाम पौधा लगाने और उससे संरक्षित करने के लिए आह्वान किया।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल की जो हमारी उपलब्धियां हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए 9 प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश में सभी जगहों पर सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, सभी कर्मचारी और समाज के सभी लोग एक एक पेड़ अपने माँ के नाम पर लगा रहे हैं। केवल पेड़ ही नहीं लगाएंगे, बस इस पेड़ की सुरक्षित रखने की भी जिम्मेदारी हमारी होगी।
0: केंद्र सरकार की महिलाओं के लिए संचालित महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जिले के सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर वृहद रूप से गर्भवती महिलाओं की जांच करते हुए उन्हें निःशुल्क दवाएं दी गयी। इस दौरान 105 हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को चिन्हित करते हुए उचित परामर्श दिया गया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्की ने सीएम डैशबोर्ड से संबंधित कार्य परियोजनाओं का समीक्षा करते हुए गुणवत्तापूर्वक समयबद्धता के साथ परियोजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को बताया कि कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क निर्माण में अनावश्यक विलम्ब पर संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध FIR दर्ज किया जाए। विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा अनावश्यक विलम्ब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड के अंतर्गत 14 ऐसे बच्चे जो कक्षा 9 अथवा उससे अधिक की कक्षाओं में अध्ययनरत है, उन बच्चों में मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह द्वारा विकास भवन के गांधी सभागार में लैपटॉप वितरण किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल संसाधनों का उपयोग वे अपनी शिक्षा को और बेहतर बनाते हुए अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा, स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति जन जागरूकता जरूरी है। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े सभी अधिकारी व कर्मचारी टीम भावनाओं के साथ कार्य करें, जिससे कि योजनाओं का लाभ आमजन को मिल सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निपुण बनाने के लिए सभी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी, शिक्षक एक साथ मिलकर टीम भावनाओं के साथ कार्य करें। अभिभावकों में जन जागरूकता लाना जरूरी है। इसके लिए शिक्षक बैठकों का आयोजन नियमित रूप से करें और अधिक बच्चों का नामांकन प्रसिद्ध विद्यालयों में कराने के लिए प्रेरित भी करें।
3: देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर तथा सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड बनाने वाले प्रधानमंत्री बनने के उपलक्ष्य में जनपद गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह प्रसिद्ध देवालयों में रुद्राभिषेक पूजन आदि कर प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की कामना की एवं एक पेड़ माँ के नाम अभियान को गति देते हुए गाँव में वृक्षारोपण भी किया गया। विगत दिनों 3 राज्यों पश्चिम बंगाल, असम एवं पुडुचेरी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। उत्साह उस समय और दुना हो गया जब गाजीपुर के पलिया गांव निवासी उमेश राय पश्चिम बंगाल में तथा गाजीपुर के ही कमसड़ी गांव निवासी कौशिक राय असम में मंत्री बनाए गए। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश राय ने कहा कि गाजीपुर जनपद के इन प्रतिभाओं के विभिन्न प्रदेशों में मंत्री बनने से युवाओं में यह संदेश गया है कि भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जहां एक साधारण कार्यकर्ता भारत के किसी कोने में पैदा होकर किसी भी राज्य में मंत्री पद को सुशोभित कर सकता है। गाजीपुर से प्रारंभ होकर लखनऊ तक जाने वाला एवं बिहार बंगाल सहित पूरे उत्तर प्रदेश को दिल्ली से जोड़ने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गाजीपुर से लखनऊ तक 341 किलोमीटर की अपनी सुगम यात्रा के लिए प्रसिद्धि पा चुका है। गाजीपुर के हैदरिया से प्रारंभ होकर लखनऊ तक जाने वाला यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे न केवल यात्री वाहनों के लिए बल्कि ट्रकों, मालवाहक वाहनों एवं किसानों के लिए भी

0: वरदान साबित हो रहा है। जनपद गाजीपुर में आपदा प्रबंधन के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट रामभवन के नेतृत्व में पिछले दिनों गाजीपुर पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से बाढ़ राहत एवं अन्य आपदा के नियंत्रण के लिए मॉकड्रिल तथा मोबिलाइजेशन अभ्यास किया गया। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर गंगा तट पर अवस्थित है और इसका एक लंबा क्षेत्रफल गंगा के किनारे ही अवस्थित है। ऐसी स्थिति में अक्सर आने वाली बाढ़ से निपटने के लिए एनडीआरएफ एवं जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से यह अभ्यास किया, जिससे आने वाले समय में बाढ़ राहत का कार्य सुचारू रूप से अंजाम दिया जा सके।
1: यूपी के जितने भी हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हर जगह तैयारी की समीक्षा के लिए 11 की टीमें बनारस से यहाँ पे आई थी गाजीपुर में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसका मकसद यही था कि बारिश शुरू होने वाली है और जब भी बारिश होती है तो फ्लड सीजन शुरू हो जाता है, उससे पहले हमारी क्या तैयारी है बेसिकली, उसकी समीक्षा के लिए एक मॉक एक्सरसाइज किया गया था। और इसका यह मकसद ये भी था कि लोगों में थोड़ा सा एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए कि हम फुली प्रिपेयर हो जाएं किसी भी सिचुएशन से लड़ने के लिए।
0: पिछले दिनों गाजीपुर जनपद में एक दुखद घटना भी हुई। प्रसिद्ध होटल व्यवसायी आलोक राय के पुत्र विनीत राय की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस प्रशासन ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए तत्काल अपराधियों के खिलाफ इनाम घोषित कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी। पुलिस महानिरीक्षक वाराणसी वैभव कृष्ण एवं पुलिस अधीक्षक ईरज राजा के नेतृत्व में लखनऊ एसटीएफ की टीम ने विनीत राय हत्याकांड में शामिल 1 लाख के इनामी बदमाश कमलेश चौधरी को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया। गाजीपुर के 2 युवा पर्वतारोही खिलाड़ियों ने माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर तिरंगा लहराकर परचम फहराया है। गाजीपुर के नौली गांव निवासी पुनीत श्रीवास्तव, मर्दा क्षेत्र के सरी मुबारक निवासी अंकित चौबे ने लगभग 8 दिनों के अथक प्रयास के बाद बीते 19 मई को सुबह 11 बजे माउंट एवरेस्ट बेस कैंप का सफर पूरा कर लिया एवं -17 डिग्री तापमान होने के बाद भी तिरंगा फहराकर एक मिसाल कायम की। जनपद गाजीपुर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला के नेतृत्व में लोगों को दिन प्रतिदिन त्वरित न्याय सुलभ हो रहा है। 10 दिनों के अंदर ही 700 से ज्यादा राजस्व मामलों का निपटारा कर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने गाजीपुर के लिए एक मिसाल कायम की एवं विभिन्न राजस्व निस्तारण के क्रम में 140 हेक्टेयर जमीन भी खाली करा ली गई है। जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने बताया कि अनुचित रूप से राजस्व कर्मियों का विरोध करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी बरसात से पूर्व जनपद के चिन्हित तालाबों, पोखरों आदि को खाली करा लिया जाएगा।
2: राजस्व कर्मचारियों को काम न करने देना, राजस्व कर्मचारी अधिकारियों के साथ गुंडागर्दी करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरह का कृत्य अगर कहीं पे किया जाएगा तो हम लोग दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। और मेरा जनपद गाजीपुर की जनता को ये कहना है कि इस तरह का कृत्य में ना पड़े और अगर ये जानकारी आएगी तो फिर हम लोग सब कार्रवाई करेंगे, शासकीय कार्य में बाधा ना पड़े। यहाँ पे पीड़ित जनता भी है जिसका कार्य हम लोग डेली जनता दर्शन भी करके सुनवाई करते हैं और न्याय करने का प्रयास करते हैं।
0: पर्यावरण दिवस के दिन प्रारंभ होकर वृक्षारोपण अभियान को विशेष गति दी जा रही है, जिसमें जनपद गाजीपुर में वृक्षारोपण एक महत्वपूर्ण स्थान बना सके। प्रख्यात पर्यावरणविद एवं गाजीपुर के मूल निवासी कृष्णानंद राय ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून को गाजीपुर एवं वाराणसी में वृक्षारोपण कर पूरे भारत में पर्यावरण संबंधी बैठकों को वृक्ष के नीचे ही करने की सरकार से मांग की। ज्ञातव्य है कि गाजीपुर के बजलपुर गांव निवासी कृष्णानंद राय 40 वर्षों से साइकिल से यात्रा कर लाखों की संख्या में वृक्षारोपण कर लोगों के लिए पर्यावरण को जागरूक कर रहे हैं।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा, विषय है वायु प्रदूषण और पर्यावरण। आलेख और वचन है डॉक्टर LC अग्रवाल का।
4: श्रोताओं, जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है? वायु। और जब वायु ही प्रदूषित हो जाए तो आज बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण सांस लेना दूभर हो चला है। इस प्रदूषण को बढ़ाने में लगे हैं मानकों से परे दौड़ रहे वाहन। मानकों के मुताबिक अधिकतम दौड़ चुके वाहन भी वर्कशॉप में मरहम पट्टी करवाकर सड़कों पर बोझ बढ़ा रहे हैं। ऐसे बूढ़े वाहन अपनी काली खांसी से हवा में जहर घोल रहे हैं। जानकारों के मुताबिक वायु प्रदूषण को बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान इन बढ़ते वाहनों का ही है। शहर में प्रदूषण की दृष्टि से सबसे बड़ी समस्या ओवरलोडेड ट्रक, टेम्पो और पुराने वाहन है। बंधुओं, इन वाहनों से अधिक मात्रा में प्रदूषण होता है। लोड अधिक और इंजन पुराना होने के कारण ये अधिक धुआं छोड़ते हैं। एक अनुमान के अनुसार एक 4-पहिया वाहन 10 किलोमीटर चलने पर करीब 140 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड, 200

10 ग्राम हाइड्रोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड छोड़ते हैं, वहीं डीजल इंजन करीब 1 ग्राम मिश्रित गैसें भी वातावरण में छोड़ते हैं। वाहन से निकलने वाले धुएं में जितना अधिक कालापन होगा, वह वाहन उतना ही अधिक पार्टिकुलेट मैटर वातावरण में छोड़ता है, जिसे माइक्रोन में मापा जाता है। माइक्रोन के कण सांस के साथ शरीर के अंदर चले जाते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। वाहन में उपयोग किए जा रहे ईंधन में यदि मिलावट है तो धुएं में सस्पेंडेड पार्टिकल्स की मात्रा और भी अधिक बढ़ जाती है। बंधुओं, ट्रैफिक सिग्नल पर जब वाहन चालू खड़ा रहता है तो व्यर्थ ईंधन जलता है। साइलेंसर से कुछ पेट्रोल डीजल भी टपकता है, जिसे अनवर्ण हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। साधारणतः दोपहिया वाहन प्रति 8 किलोमीटर चलने पर 10 ग्राम वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड छोड़ते हैं। शहर में कई ऑटो टेम्पो आसान उपलब्धता के चलते पेट्रोल डीजल की जगह केरोसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ऑटो टेम्पो साधारण वाहनों की अपेक्षा दोगुना प्रदूषण फैलाते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वाहनों के इंजन की उम्र अधिकतम 15 वर्ष होती है। इसके बाद परिवहन विभाग को इनका नवीनीकरण नहीं करना चाहिए। इंजन की क्षमता जवाब देने के बाद वह प्रदूषण में सहायक होता है। पेट्रोल से चलने वाले वाहनों का धुआं डीजल से चलने वाले वाहनों से निकलने वाले धुएं से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। बंधुओं, वाहनों से निकलने वाले धुएं के ये कण और गैसें पादपों के छिद्रों, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, को बंद कर देते हैं। इससे पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण व श्वसन क्रिया में रुकावट पैदा होती है। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर छोटे पौधे जीवित नहीं रह पाते हैं। बंधुओं, विशेषज्ञों के अनुसार यदि स्वस्थ मनुष्य 20 से 30 साल तक ऐसे दूषित वातावरण में रह लेता है तो उसे दमा की शिकायत हो सकती है। अस्थमा के रोगी में अस्थमा की तीव्रता बढ़ जाती है। इस प्रकार प्रदूषण उत्प्रेरक का काम करते हैं। बंधुओं, वायु प्रदूषण कम करने के लिए हमें पहल करनी होगी। सड़क मार्ग के दोनों ओर यदि 5 से 10 मीटर के क्षेत्र में पेड़ पौधे और झाड़ियां लगा दी जाए तो 70% तक प्रदूषण नियंत्रण किया जा सकता है। पेड़ पौधे वाहनों के धुएं में निकलने वाले तत्वों को सोख लेते हैं। शहरीकरण के बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए हम आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। एक ही संस्थान के कर्मचारी वाहनों का पूल बना सकते हैं। इससे पेट्रोल की बचत के साथ साथ वायु प्रदूषण भी कम होगा। सप्ताह में हम एक दिन ऐसा तय कर सकते हैं जिस दिन बहुत जरूरी परिस्थिति नहीं होने तक वाहन नहीं चलाएं। इस प्रकार श्रोताओं, हम प्रदूषण को नियंत्रित करने में अपना सहयोग दे सकते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबोहवा, विषय था वायु प्रदूषण और पर्यावरण। आलेख और वचन था डॉक्टर एलसी अग्रवाल का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति है जितेंद्र सिंह की, संयोजन है ओपी सिंह का।
1: ब्रज दर्पण कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को जितेंद्र सिंह का नमस्कार। शिक्षा, सूचना और मनोरंजन से भरपूर आपके अपने कार्यक्रम ब्रज दर्पण में आप सभी श्रोता मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम कार्यक्रम की शुरुआत एक अच्छे, सुंदर और प्रेरणादायक विचार के साथ करते हैं, तो मित्रों आज का सुविचार है कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि धन, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा जीवन में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इन सबसे अधिक मूल्यवान है व्यक्ति का चरित्र और उसकी ईमानदारी। ईमानदार व्यक्ति

व्यक्ति के पास भले ही अपार धन न हो, लेकिन उसके पास लोगों का विश्वास और सम्मान होता है। यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। ईमानदारी का अर्थ है अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना, दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना और हर परिस्थिति में सही मार्ग का चयन करना भी है। ईमानदार व्यक्ति को सफलता मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उसकी सफलता स्थायी और सम्मानजनक होती है। आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में कई बार आसान रास्ते अपनाने का प्रलोभन मिलता है, लेकिन हमेशा ये याद रखें कि छल और बेईमानी के साथ प्राप्त की गई उपलब्धियां या सफलताएं क्षणिक होती हैं, जबकि ईमानदारी से अर्जित सम्मान जीवन भर हमारे साथ रहता है। जब कोई व्यक्ति पूरी ईमानदारी के साथ बिना पक्षपात किए सत्य और न्याय का साथ देता है, तब वो अपने निर्णय रिश्तों, लाभ या दबाव के आधार पर नहीं, बल्कि सही और गलत के आधार पर लेता है। और जब ये गुण किसी व्यक्ति के चरित्र का हिस्सा बन जाता है, तब वह केवल सम्मान ही नहीं बल्कि समाज का विश्वास भी अर्जित कर लेता है। ईमानदारी से कमाया गया विश्वास धन से कहीं अधिक मूल्यवान होता है और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी भी है। इसलिए इस गुण को अपने आचरण और अपने व्यवहार में आत्मसात करें।

श्रोताओं, जैसा कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 100 दिवसीय सघन टीवी अभियान चलाया जा रहा है, तो ये अभियान क्या है, इस अभियान को चलाए जाने का क्या उद्देश्य है?

0: इस बारे में हम बात करते हैं हमारे जनपद मथुरा से जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर संजीव यादव जी से। इस अभियान के बारे में हमारे श्रोताओं को क्या विशेष जानकारी आप देना चाहेंगे?
1: देखिए, ये इस वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर जो हमारी केंद्र सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हैं उनके द्वारा पूरे भारत वर्ष में 100 डेज कैंपेन 100 दिवसीय छगन क्षय रोगी अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत हमें जो हाई वल्नरेबल ग्रुप है, जैसा कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, HIV पेशेंट्स हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड लोग हैं, स्मोकर्स हैं, एल्कोहलिक्स हैं, तो ये हाई वल्नरेबल ग्रुप कहलाता है और ऐसे लोगों में क्षय रोग के होने की संभावना काफ़ी अधिक होती है। तो इनको हमें सबसे पहले निक्षय पोर्टल पर इसको रजिस्टर्ड करना था और इसके लिए हमें अपने राज्य की तरफ से 224 वल्नरेबल विलेजेस की सूची दी गई थी, जहाँ पर हमें कैंप लगा करके इन लोगों के एक्सरे और जो बलगम की जाँच होती है जीन एक्सपर्ट टेक्नोलॉजी यानी नाट टेस्ट से वो कराई जानी थी, तो उसी में हम कार्य कर रहे हैं। इसके अंतर्गत
0: क्षय रोग के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि क्या इसके लक्षण रहते हैं, कैसे पहचाने के इस व्यक्ति को क्षय रोग होने की संभावना है?
1: देखिए, क्षय रोग जो है दो तरह का होता है, एक तो पल्मोनरी होता है, एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी यानी फेफड़े का और फेफड़े के अलावा। तो पल्मोनरी TB जो है सबसे ज़्यादा होता है 80% के करीबन, और इसके जो लक्षण हैं वो ये 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी, 2 हफ्ते से ज़्यादा बुखार का रहना, बलगम में खून आना, छाती में दर्द। इसके अलावा क्षय रोग में वजन का जो है धीरे धीरे कम होना, और अगर बच्चा आए तो उसमें वजन कम होना नहीं नोटिस होता है, उसमें वजन का ना बढ़ना छोटे बच्चे में, और रात के टाइम पसीना आना, ये क्षय रोग के मुख्य लक्षण हैं। इसके अलावा जो अंग TB से प्रभावित होगा, यहाँ मैं बता दूँ, नाखून और बाल को छोड़ करके शरीर के किसी भी हिस्से में TB हो सकती है, और जिस अंग में TB होगी उससे संबंधित लक्षण भी आएंगे। यदि आँख की TB है तो विजन प्रॉब्लम आ सकती है, अगर ब्रेन की TB है तो पैरालिटिक अटैक या सीजर्स जिसे झटके लगना कहते हैं उस तरह के लक्षण भी आ सकते हैं। हड्डी की TB भी हो सकती है, खाल की TB भी हो सकती है, जिस अंग की TB होगी उससे संबंधित लक्षण भी प्रकट होंगे इसमें।
0: अगर जैसे किसी को हड्डी की TB होती है तो क्या खांसी उसमें भी होती है?
1: देखिए, अगर हड्डी की TB है तो ज़रूरी नहीं है कि उसको खांसी हो, क्योंकि ये खांसी जो है पल्मोनरी जब इन्वॉल्वमेंट होता है, लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब लक्षण आता है। तो हड्डी की TB में जनरली मरीज के कहीं दर्द हो रहा है या कोई फोड़ा सा बना है या हड्डी में से मवाद आ रहा है, तो इस तरह के लक्षण ज़्यादा मिलते हैं।
0: कहीं गलाव या गांठ की स्थिति हो सकती है?
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो इसको लेकर हमारे जनपद में किस तरह की स्थिति बनी हुई है?
1: देखिए, हमारे जनपद में जो हम क्षय रोग उन्मूलन का कार्यक्रम है उसके अंतर्गत हमारी अच्छी स्थिति बनी हुई है। राज्य की तरफ से हमें पिछली बार 16,164 मरीज खोजने का जो है टारगेट दिया गया था, जिसके सापेक्ष हमने 17,300 के करीबन मरीज खोजे थे, और इन मरीजों में भी ज़्यादातर संख्या 80% के करीब वो होती है जो दूसरे जनपदों और दूसरे राज्यों से हमारे यहाँ, जैसा कि आप जानते हैं वृंदावन में TB सेनेटोरियम है, कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं, वहाँ आकर के वो दिखाते हैं, और जहाँ वो डायग्नोस होते हैं वहीं वो नोटिफाई माने जाते हैं, वहीं नोटिफिकेशन उनका किया जाता है। इसीलिए मथुरा का टारगेट पॉपुलेशन के हिसाब से ज़्यादा दिया गया था।
0: इसके उपचार के बारे में थोड़ा और हमारे श्रोताओं को बताएं कि क्या TB का पूरी तरह से उपचार संभव है?
1: देखिए, आज की तारीख में TB टोटली क्योरेबल डिजीज है। जो पहले साधा TB की जिसे कहते हैं, जो ड्रग सेंसिटिव TB होती है, इसमें 24 हफ्ते इलाज चलता है, और वही 4 दवाएं आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायराजिनामाइड और थंबुटोल, जो 8 हफ्ते तक दी जाती हैं, और 8 हफ्ते के बाद इसमें से पायराजिनामाइड हटा दी जाती है, 3 दवाओं का कॉम्बिनेशन, बाकी के 16 हफ्ते तक दिया जाता है। इसके अलावा अगर इन दवाओं से रेजिस्टेंस आ जाता है, जिसको हम MDR TB कहते हैं, तो उसके अलग अलग शेड्यूल होते हैं। इसमें बीपालेम रेजिम चल रहा है, शॉर्टर रेजिम चल रहा है, ऑल ओवर लॉन्गर चल रहा है, और इसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है, 9 से 11-12 महीने तक, और 18 से 20 महीने तक भी हो सकता है।
0: अगर किसी व्यक्ति को घर में TB है तो अन्य परिवार में जो सदस्य हैं या उनके आसपास के लोग हैं उनको क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है?
1: देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मरीज जिसको खांसी आँसी है तो वो अपने मुंह पर मास्क लगा के रखे, इधर उधर थूके नहीं। इसके अलावा अगर ड्रग सेंसिटिव TB है तो उसमें हमारे यहाँ से TPT यानी TB प्रिवेंटिव थेरेपी भी शुरू हो चुकी है। इसके अंतर्गत अगर कोई भी केस TB का निकलता है जो ड्रग सेंसिटिव TB है, तो हम उसके घर के सारे कॉन्टैक्ट्स को बुलाकर उसकी स्क्रीनिंग करते हैं एक्सरे के द्वारा, या अगर सिम्टम बलगम आ रहा है तो नाट भी कराते हैं कि उसको हम एक्टिव TB को एक्सक्लूड करते हुए उसको हम जो TPT की दवाएं वो देते हैं, जिससे कि उनके हाउस होल्ड कॉन्टैक्ट्स में इन्फेक्शन ना हो सके।
0: मरीजों के क्या कुछ आंकड़े सामने आ रहे हैं?
1: मरीजों के आंकड़े जितना ज़्यादा आएंगे, जितने मरीज छुपे हुए बाहर निकल के आएंगे, उतनी हम TB एलिमिनेशन की तरफ अग्रसर होंगे, क्योंकि एक भी छुपा हुआ रोगी अपने जैसे 8 से 10 पेशेंट साल में

0: और बना देता है। तो सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टीबी नोटिफिकेशन करा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा छुपे हुए मरीजों को बाहर निकाल सकें जिससे वो अंडर ट्रीटमेंट आएँ और दूसरे लोगों में उस इन्फेक्शन को रोक सकें।
1: सरकार द्वारा टीबी के मरीजों को कुछ अनुदान या कुछ राशि वगैरह भी प्रदान की जाती है?
0: देखिए, सरकार द्वारा इसमें जो है अब इस समय हर माह 1,000 रुपये की निश्चय पोषण भत्ता के रूप में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा हम जो माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया था कि सभी 6 रोगियों को हम कोशिश करते हैं कि निश्चय मित्र से लिंकेज करा सकें और उनको जो पोषण पोटली है उसका मदद प्रदान कराया जा सके।
1: तो क्या टीबी के मरीजों को विशेष कुछ खान पान का ध्यान रखना होता है?
0: देखिए, टीबी के मरीजों में हाई प्रोटीन डाइट का बहुत महत्व है। अगर टीबी का मरीज की दोनों चीज़ें मिल रही हैं कि दवा भी रेगुलर ले रहा है और पूरी ले रहा है, उसके साथ साथ अगर उसको प्रोटीन रिच डाइट मिलती है तो उसमें क्योर बहुत जल्दी होता है। तो हम यही कोशिश करते हैं कि जो पोषण पोटली निश्चय मित्र द्वारा प्रदान की जा रही है, जैसा कि माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी आदेश निकाला गया था, तो इसमें प्रोटीन रिच डाइट हो, जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन की बड़ी है, चना है, और इसके अलावा हम बादाम वगैरह भी दे सकते हैं। जाड़ों के टाइम में हम गजक और गुड़ की भी बात करते हैं, गजक भी दी जा सकती है, उसको सत्तू दिया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जिनमें प्रोटीन ज़्यादा होती है वो मरीज को फ़ायदा पहुँचाती है। इसमें
1: टीबी मरीज अक्सर ऐसी कौन सी गलती करते हैं जिससे कि वो गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं?
0: देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यही करते हैं कि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी को और बुखार को वो साधारण बीमारी समझ के इधर उधर कभी झोला छाप से या केमिस्ट से दवा ले लेते हैं, थोड़े दिन फ़ायदा हो जाता है, वो सोचते हैं हम ठीक हो गए, जबकि 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी बुखार में उनको टेस्ट कराना चाहिए जिससे कि वो अगर बीमारी निकलती है तो ट्रीटमेंट पे आ सके। उसके अलावा दूसरी गलती ये जो मरीज करते हैं वो ये है सबसे बड़ी कि जब दवा शुरू होती है तो 1 से 1.5 महीने 2 महीने जैसा भी है उसमें फ़ायदा आ जाता है तो उनको लगता है अब हम बिल्कुल ठीक हो गए, ना हमें खांसी है ना हमें बुखार है, तो वो अगर दवा छोड़ देते हैं तो वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर प्रॉपर ड्यूरेशन तक ट्रीटमेंट ना लिया जाए तो उसमें अगली बार MDR-TB होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसमें कि मृत्यु दर भी ज़्यादा होती है और उसके इलाज का जो ड्यूरेशन है वो भी ज़्यादा होता है।
1: यानी इसमें दवाइयों का पूरा कोर्स करना चाहिए?
0: जी बिल्कुल, दवाइयों का पूरा कोर्स और पूरी डोज में दवा लेनी चाहिए, अदरवाइज रेजिस्टेंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं।
1: हमारे श्रोताओं से या जो टीबी रोगी हैं उनसे क्या कहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहूँगा कि टीबी आज की तारीख में टोटली क्यूरेबल डिजीज है। किसी को भी अगर इससे संबंधित लक्षण लगते हैं तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिला स्तरीय अस्पताल, कहीं भी जाकर के अपने बलगम की जांच कराएं, अपना एक्सरे कराएं या संबंधित जो अंग है उसकी जांच कराएं। और अगर टीबी निकलती है तो उसका तुरंत इलाज पूर्णतः निःशुल्क शुरू किया जाता है और ये बीमारी जड़ से पूरी तरह ठीक हो जाती है।
1: तो श्रोताओं, हमारे साथ रहे जिला क्षय रोग अधिकारी मथुरा डॉक्टर संजीव यादव जी, और जैसा कि बताया कि टीबी का इलाज पूरी तरह से संभव है, बशर्ते कि टीबी के लक्षण आते ही शीघ्र अतिशीघ्र जो है जिला अस्पताल मथुरा में या जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ संपर्क करें और इसकी जांच अवश्य कराएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर किसी मरीज में टीबी पाई जाती है तो इलाज में बिल्कुल लापरवाही ना बरतें और उसका पूरा जो दवाई का कोर्स है उसको अवश्य करें और अपने चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही चलें और इसमें कोई भी लापरवाही ना बरतें, किसी भी नीम हकीम के चक्कर में ना पड़ें। तो आज डॉक्टर साहब आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, हमारे श्रोताओं को जागरूक भी किया, इसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: श्रोताओं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में समाधान समारोह विशेष लोक अदालत 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लाभ ऐसे वादकारी ले सकते हैं जिनके मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। इस विशेष समाधान समारोह के बारे में हमें जानकारी देती हुई आप हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मथुरा की सचिव श्रीमती अनीता सिंह।
1: इस वर्ष का समाधान समारोह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये विशेष लोक अदालत 21, 22, 23 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित की जाएंगी, जिसके संदर्भ में जो बातकारी जिनके मुकदमे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं, वे अपनी इसमें एक साइट दी गई है, उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं www.sci.gov.in पर जाकर। आप अपने डिटेल वहां भर सकते हैं और अपना मामला इस विशेष लोक अदालत के संदर्भ में चिन्हित करा सकते हैं।
0: तो क्या इसके लिए हेल्पलाइन नंबर है?
1: माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है, जिसके हेल्पलाइन नंबर है 011-23-11-5652, एक और नंबर है 011-23-11-6464, अन्य नंबर इससे संबंधित और हैं 011-23-11-5652 एवं 011-23-11-6465। आप इन पर संपर्क कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो साइट बताई गई है, उस पर गूगल फॉर्म आपका होगा अवेलेबल, उस पर आप अपने केस का डिटेल, अपना नाम वगैरह भरते हुए अपना इस मामले को विशेष लोक अदालत में चिन्हित करवा सकते हैं, ताकि मामले का निस्तारण हो सके।
0: इसमें पक्षकारों को सूचना किस तरह मिलेगी?
1: इसमें पक्षकारों को सूचना, जैसा कि अब तक जो मामले वहां पर नोटिफाइड कर दिए गए हैं, उनकी समन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजे जा रहे हैं, उनके द्वारा संबंधित को सूचित किए जा रहे हैं समन सेल के माध्यम से। जो नोटिसेस या पक्षकारों को जो सूचना दी जानी है, जो आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हैं या आउट ऑफ द स्टेट हैं, उनको संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से सूचना जा रही है, ताकि इससे पूर्व 21, 22, 23 अगस्त से पूर्व एक पूर्व में सुलह समझौते के लिए एक बैठक आयोजित की जाएंगी संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में। जैसे जो मामले मथुरा से संबंधित हैं, उनकी बैठक यहाँ मथुरा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आयोजित की जाएगी।
0: मामले के निस्तारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय में किसी अधिवक्ता की आवश्यकता पड़ेगी या पक्षकार सीधे जा सकते हैं?
1: जी, इसके लिए पक्षकार जैसे यहाँ लोक अदालत में होता है, जैसा हम आज तक देखते आए कि पक्षकार सीधे ही अपना मामला रख सकते हैं, तो उसी तरीके से ये गूगल फॉर्म जो दिया गया है आपको www.sci.gov.in पर जाकर

आप अपना डिटेल भरेंगे, वहाँ एक अलग से इसके लिए बनाया गया है संस्था, वहाँ पर आप जाके इसमें डिटेल ले सकते हैं और इसके लिए किसी अधिवक्ता की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ही रजिस्टर करा सकते हैं। आपका मामला रजिस्टर्ड हो जाएगा, उसके बाद वो जो मामला जहाँ से संबंधित होगा, जैसे कि आप मथुरा से अगर करते हैं तो वो मथुरा के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अलॉट हो जाएगा। हम 21, 22, 23 अगस्त से पूर्व हम आपकी बैठक कराएंगे, उस बैठक में आप दोनों के

0: समझ में आए कि हाँ समझौते के आधार पर भी मामले निस्तारित हो सकते हैं, इसलिए पूर्व में बैठक आयोजित की जा रही है जहां मामलों को पक्षकारों को समझा के मध्यस्थता के आधार पर सॉल्व किया जाए।
1: तो श्रोताओं, ये विशेष जानकारी दी हमको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती अनीता सिंह जी ने। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय में ये विशेष समाधान समारोह आयोजित किया जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण है ऐसी वादकारियों के लिए जो कि सुलह के माध्यम से अपने मामलों का सरल और सुलभ तरीके से निस्तारण कराना चाहते हैं, तो इस विशेष समाधान समारोह का जरूर लाभ उठाएं। और आपने हमारे श्रोताओं तक ये जानकारी पहुंचाई, इसके लिए धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपका भी।

मित्रों, पानी प्रकृति का अनमोल उपहार है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज लिया गया छोटा सा संकल्प हमारे आने वाले कल को सुरक्षित कर सकता है, क्योंकि जल संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। जल ही जीवन का आधार है और पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य के दैनिक कार्यों से लेकर खेती, उद्योग, पर्यावरण तक हर क्षेत्र में जल की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना पानी के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, इसलिए कहा जा सकता है कि जल है तो कल है। आज के समय में जल संकट एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या, पेड़ों की कटाई, नदियों का प्रदूषण और पानी का अत्यधिक दुरुपयोग इस समस्या को और अधिक बढ़ा रहे हैं। लोग आवश्यकता से अधिक पानी खर्च करते हैं, जिससे भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। यदि समय रहते जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले वर्षों में पीने के पानी की भारी कमी हो सकती है। जल संरक्षण का अर्थ है पानी का सही और सीमित उपयोग करना और उसे व्यर्थ होने से बचाना। हम अपने दैनिक जीवन में अगर कुछ आसान उपाय अपनाएं तो हम ये महान कार्य कर सकते हैं, जैसे कि

वर्षा जल का संचयन करें। वर्षा के पानी को छत या खुले स्थानों से इकट्ठा करके टैंकों या गड्ढों में जमा करना और भूजल को रिचार्ज करना, ये एक सबसे बड़ा कारगर तरीका है अपने भूजल स्तर को ऊपर लाने का। और कुछ हमारी दैनिक आदतें रहती हैं, जैसे कि अक्सर लोग ब्रश करते समय या शेविंग करते समय नल को खुला छोड़ देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें जब आप उपयोग नहीं कर रहे हों तो उस समय नल की टोंटी को बंद कर दें। और नहाने के लिए अगर हम शावर यानी फुव्वारे के बजाय अगर हम मग या बाल्टी का इस्तेमाल करें तो इससे काफ़ी मात्रा में हम जल बचा सकते हैं। और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना भी जल संरक्षण करना है, क्योंकि अधिक से अधिक वृक्ष होंगे तो इससे हमारा जल भी संरक्षित होगा, क्योंकि जो हमारे वृक्ष हैं वो वर्षा कराने में सहायक होते हैं। ऐसी ही कुछ बातों का अगर हम ध्यान रखें और हम पानी की एक-एक बूंद को बचाएं तो हम ये महान कार्य कर अपनी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रख सकते हैं। और अब एक नज़र आज की कुछ खास खबरों पर डाल लेते हैं। तो आज की खास खबरों में है कि कान्हा की नगरी अब ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में एक नई इबारत लिखने जा रही है। कूड़े और नेपियर घास की मदद से सीवीजी बनाने के लिए 5 नए प्लांट लगाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस पहल से न केवल कचरा प्रबंधन सुधरेगा बल्कि पर्यावरण अनुकूलन ईंधन का उत्पादन भी होगा। और इसी के साथ एक और खबर है, मानसून की दस्तक से पहले नगर निगम की टीम ने नाले नालियों की सफाई का कार्य तेज कर दिया है। योजनाबद्ध तरीके से सफाई कर्मी कार्य में जुट गए हैं और बीते दिनों पहले से ही ये कार्य शुरू कर दिया गया है और अप्रैल माह से ही नगर निगम नालों और नालियों की सफाई का अभियान चला रहा है। और बात कर लेते हैं अब आज के दिन विशेष की। तो श्रोताओं, आज की तिथि यानी 15 जून इतिहास के झरोकों से ये कहती है कि आज ही के दिन सन 1908 में भारत के सबसे पुराने शेयर बाजारों में से एक कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की औपचारिक शुरुआत हुई थी। और आज ही के दिन सन 1947 में नई दिल्ली में आयोजित अधिवेशन में भारत के बंटवारे के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। और आज ही के दिन सन 2006 में भारत और चीन ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक पुराने सिल्क रूट को खोलने का फैसला लिया था। और आज ही के दिन सन 1215 में इंग्लैंड के किंग जॉन ने ऐतिहासिक मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र पर सहमति की मोहर लगाई, जिससे आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों की बुनियाद रखी गई थी। तो मित्रों, आज कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, फिर किसी नई जानकारी, नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज दर्पण, प्रस्तुति थी जितेंद्र सिंह की और संयोजन था ओपी सिंह का। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे आन मिलो सजना फिल्म में। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हिना फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर और साथियों की आवाजों में। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

एक मुसाफिर एक हसीना। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। आवाज़ें थी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। गीत को लिखा था SH बिहारी ने, संगीत दिया था OP नैयर ने।

त्रिशूल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। बोल थे साहिर लुधियानवी के, धुन बनाई थी खयाम ने। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। अगला गीत हमने लिया है अजनबी फिल्म से, आवाज है किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के, धुन आर डी बर्मन की।

0: सर्जन? वो यहीं पर।
1: यहीं है?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख तो बच्चे मर जाओ।

हेमलता के स्वर में अभी आप सुन रहे थे आँखियों के झरोखों सोए, इस फिल्म का गीत। गीत और संगीत था रविंद्र जैन का। अगला गीत हमने लिया है सौदागर फिल्म से, आवाज है लता मंगेशकर की। गीत को लिखा है रविंद्र जैन ने और संगीत भी दिया है रविंद्र जैन ने ही।

सौदागर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं घरौंदा फिल्म से, आवाज है रूना लैला की।

घर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजने को हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। प्रस्तुति है देवराज कृष्ण दीक्षित की।
1: हेलो आकाशवाणी, हेलो आकाशवाणी। हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का अभिवादन, नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आज के कार्यक्रम में। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ देवराज। जी हां श्रोताओं, एक बार फिर से हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, जिसमें हमारे श्रोता करते हैं फोन के माध्यम से अपने दिल की बात और हम सुनवाते हैं उनको उनकी पसंद का गाना। जी हां श्रोताओं, हम आपको बता दें इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग हम करते हैं प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। हमारा टेलीफोन नंबर है 25 30 135। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 STD कोड लगाकर हमें फोन करें। और अब आइए आरंभ करते हैं आज का हेलो आकाशवाणी।
2: हेलो
3: हेलो आकाशवाणी
2: जी, नमस्कार।
3: नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं?
2: ब्रज रेडियो श्रोता मित्र नेत्रपाल जी।
3: नेत्रपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: सर आप कैसे हैं?
3: एकदम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
2: सब ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है।
3: जी जी, और मौसम कैसा है अब तो?
2: मौसम अब तो सही हो गया है।
3: जी जी, बारिश होने से खुशनुमा हो गया है मौसम।
2: हाँ सर।
3: और परिवार में कैसे हैं आपके?
2: बिल्कुल ठीक है सर।
3: कार्यक्रम का आनंद आ रहा है?
2: हाँ सर, जो भी सुन रहा हूँ सभी कार्यक्रम।
3: जी जी, आज बताइए क्या सुनेंगे नेत्रपाल जी?
2: एक फिल्म है पत्थर और फूल।
3: जी,
2: कभी छया लगते हो कभी जोकर लगते हो।
3: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद नेत्रपाल जी।
2: नमस्कार नमस्कार
3: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: राधे राधे।
0: राधे राधे। हमारे कौन से श्रोता बोल रहे हैं?
1: मेरा नाम लव कुमार है सर। मैं नगला चंद्रभान दीनदयाल धाम से बोल रहा हूँ सर।
0: लव कुमार जी,
1: हाँ जी
0: बहुत प्यारा नाम है आपका।
1: जी सर, थैंक यू।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं सर स्टडी करता हूँ।
0: अच्छा, हमारे केंद्र के लिए आपने पहली बार फोन लगाया है?
1: नहीं, मैंने दूसरी बार लगाया है
0: अच्छा, और पढ़ाई ठीक चल रही है आपकी?
1: जी सर। अभी यूपी पुलिस का पेपर दे के आया हूँ लखनऊ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। और परिवार में कौन कौन है?
1: परिवार में माता जी हैं, पिताजी हैं, छोटा भाई है, बहन की शादी हो गई है। सभी
0: जी, सभी लोग ठीक ठाक?
1: ठीक ठाक हैं सर।
0: बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: आज परिचय फिल्म का गाना है मुसाफिर हूँ यारो।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू सर। राधे राधे।
0: राधे राधे।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासा कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: इंद्रभान जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: ठीक है सर, मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हैं। मेरे बाद यहाँ का मौसम तो एकदम सर, अभी पानी गिरा, धूप भी किया और उमस गर्मी भी है, हवा भी चलता है, ठंडा ठंडा हवा लगता है सर
0: जी।
1: और दिशा देखते हुए मनोरंजन चाहते अपने पसंद के गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है बरसात पुराना पिक्चर
0: जी,
1: और गीत के बोझे जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बालमा तोरे इंतजार है, गायिका लता मंगेशकर। सबसे पहले गीत आपको केंद्र निर्देशक आपको पूरे भारत श्रोता को आकाशवाणी मथुरा में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन के रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, मथुरा में जुड़े सभी उत्कृष्ट भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारियों को, पूरे भारत श्रोताओं को, हाले एक्टर श्रोताओं को धन्यवाद।
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हेलो आकाशवाणी।
0: नमस्ते सर जी।
1: नमस्ते।
0: रामेश्वर चौधरी जरौली सासली हाथरस से।
1: अरे वाह चौधरी साहब, कैसे हैं?
0: बहुत अच्छे हैं सर, आप सभी लोग कैसे हैं?
1: हम भी बहुत अच्छे हैं। मौसम कैसा है आपके यहाँ?
0: बिल्कुल, मौसम सुहाना हो गया सर। रात को हल्की बारिश हो गई और अब भी बादल छाए हुए हैं।
1: जी
0: गर्मी नहीं, हवाएं चल रही हैं ठंडी ठंडी।
1: जी जी जी बहुत अच्छी बात है, गर्मी से राहत मिली है।
0: जी, बहुत गर्मी भी खूब पड़ी है, लेकिन गर्मी का भी अपना अलग आनंद होता है सर जी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और
0: और
1: सब बढ़िया
0: ठीक
1: है?
0: है? हाँ सब बढ़िया है सर,
1: परिवार में सब ठीक है आपके?
0: सकुशल हैं सभी भगवान की कृपा से।
1: जी। आज बताइए चौधरी साहब, कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
0: गाना है सर, तुझे संग प्रीत लगाई सजना। ये सर,
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार सर जी।
1: नमस्कार।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: हेलो आसानी, राधे राधे।
0: राधे राधे।
1: संजय बोल रहा हूँ सर, रिकन गाँव से।
0: संजय जी कैसे हैं?
1: बढ़िया अच्छे, खूब बात हुई है, ठंडा मौसम हो गया है,
0: गर्मी से निजात मिल गई है।
1: और दूसरे बहुत आराम मिला है, तसली तो बहुत बहुत गिर गई।
0: जी जी, अच्छी बात है, हमारे किसान भाइयों को खुशी हुई है।
1: हाँ जी, बहुत खुशी हो गई है, दूसरे बहुत तो गिरी ज्यादा नहीं है तो।
0: जी जी,
1: और सुनाइए, हमारी मथुरा टीम बढ़िया है,
0: सभी लोग बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
1: हम भी अच्छे हैं, दुआ है कृष्ण जी की।
0: जी जी, आज बताइए क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
1: ये ठहरे हुए पानी में कंकर सामने
0: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी।
1: नमस्कार, राधे राधे।
0: राधे राधे।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति देवराज कृष्ण दीक्षित की थी। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था जतिन ललित ने। स्वर लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों के थे। फिल्म का नाम था मोहब्बतें। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं। फिल्म गैम्बलर से स्वर किशोर कुमार का है, बोल लिखे हैं नीरज ने, संगीत SD वर्मन का है।

अभी आपने सुना फिल्म हमसे मिले तुम का ये गाना। इस गाने को लिखा था हरात व्यास ने और संगीत नारायण दत्त का था।

आवाज़ें आशा भोसले और शब्बीर कुमार की थी। श्रोताओं, अपराह्न 12 बजे कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस में आज हम आपसे बात करेंगे योग सप्ताह के विषय पर, क्योंकि आज 15 जून है और आज 15 जून से योग सप्ताह का आरंभ हो चुका है। योग सप्ताह मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है जन जागरूकता फैलाना। तो श्रोताओं, आप भी हमें इस विषय पर अपने विचार साझा कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि योग करना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों आवश्यक है, क्यों ज़रूरी है। तो आप भी हमें मैसेज करिए और अपने विचार हमसे साझा करिए। और आइए आप सुनते हैं ये गीत। इस गीत को लिखा है देव कोहली ने, संगीत आनंद राज आनंद का है, आवाज़ें ऋचा शर्मा आनंद राज आनंद की, फिल्म का नाम है किस्मत।

अलका याग्निक और हंसराज हंस के गाए फिल्म कच्चे धागे के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत बात और SMS। श्रोताओं, आज हम आपसे बात करेंगे इस कार्यक्रम में योग सप्ताह के विषय पर। कार्यक्रम गीत बात और SMS सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, योग सप्ताह आज से शुरू हो चुका है, यानी कि 15 जून से, और 21 जून तक ये सप्ताह मनाया जाएगा। और योग सप्ताह मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोगों के अंदर जन जागरूकता को बढ़ावा देना, फैलाना, और लोगों को ये बताना कि योग करने के क्या फायदे हैं। श्रोताओं, इसका लक्ष्य लोगों को केवल एक दिन नहीं बल्कि साल के 365 दिन योग करने के फायदे और योग नियमित रूप से करने के फायदे बताए जा रहे हैं। श्रोताओं, दैनिक जीवन में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को बनाए रखने के लिए योग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए योग बहुत आवश्यक है। और अब हमें जो संदेश आया है वो सबसे पहले लिख भेजा है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से। लिखने वाले हमारे श्रोता रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और इनके सभी संगीत साथी। अगला संदेश हमारे पास आया है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जाका, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। ये फरमाइश हमें लिख भेजी है गांव जोगीवाला, श्रीगंगानगर से, प्रेम सहारण, मोनिका, मनीष और इनके सभी संगीत साथियों ने। अगला संदेश जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा का। ये फरमाइश हमारे पास आई है रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान की। और ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा, पीयूष सिक्का कोयल और भाविका सिक्का। ये संदेश हमें लिख भेजा है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार ने। अगली फरमाइश हमारे पास आई है महाराष्ट्र

से लिखने वाले श्रोता श्री कृष्ण बाठे, संदीप और अमूल्य बाठे। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं कोयते बस्ती पुनावले से अजय, सोनवने, करिश्मा, अविका और साइशा। अगला संदेश हमारे पास आया है रेलवे रोड गंजडवारा से मोहम्मद कलीम जख्मी, भुवन प्रकाश गौतम, दबीरुल हसन बेगम, शबनम अनवर, नजमा बेगम नाज और सरिता गौतम का। ये संदेश नांदेड़ प्रकाश जैन का, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन और पीआर जैन। अगली फरमाइश हमारे पास आई है वनस्थलीपुरम हैदराबाद से, लिखने वाले श्रोता हैं रेणुका, हरिणी, लोकेश, साई कृपा और इनके सभी परिवारीजन। ये संदेश हमें लिख भेजा है छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा, आयुष विवेक और आयुषी श्रीवास ने। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर लता मंगेशकर के स्वर में ये गीत, फिल्म का नाम है खानदान।

श्रोताओ, योग करना क्यों आवश्यक है, हमें योग को अपने जीवन में क्यों अपनाना चाहिए, इस विषय पर आप भी हमें अपने संदेशों के माध्यम से हमें अवगत

ये संदेश हमारे पास आया है जिला छतरपुर से। लिखने वाले श्रोता हैं बहादुर चक्रवर्ती, नंद किशोर चक्रवर्ती, भरत, हरिराम और इनके सभी संगी साथी। और ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरू निशा, सबिस्ता बेगम, पलक लुबना और यश मंसूरी। इन्होंने लिखा है कि हमें नियमित योग करना चाहिए, तभी हम निरोग रह सकते हैं। बिल्कुल श्रोताओं, यदि हम अपने आप को निरोग रखना चाहते हैं तो हमें अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करना ही होगा। और ये संदेश हमारे पास भेजा है बेंगलुरु से भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंद्र भूषण, संस्कृति पौरुष, रामगढ़ कैंट से लिखने वाले श्रोता है, महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल और इनके सभी संगी साथी। इन्होंने अपने संदेश में हमें लिखा है यदि हमें निरोग रहना है तो अवश्य ही योग करना होगा। हमारे ऋषि मुनियों की अनमोल धरोहर है ये हमारे शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक स्वास्थ्य को भी संबल प्रदान करता है। और अगला संदेश राज दरबार राजनगर बिहार से नवीन सिंह, ज्योति, श्वेता, सुशांत चुलबुल, कामेश्वर प्रसाद गुप्ता, प्रदीप कुमार नायक, राजबहादुर शाह, शंभू शाह, जय वीरू का। इन्होंने अपने संदेश में लिखना है योग करने से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। अगला संदेश हमारे पास पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना, तुलसी मस्कीन का। इन्होंने अपने संदेश में लिखा है योग करने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, तनाव कम होता है, शरीर में लचीलापन और ताकत बढ़ती है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, नींद अच्छी आती है। जी हाँ श्रोताओं, और अगला संदेश हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता हैं देव शंकर, तामूरिया, जयदेव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा और इनके सभी संगी साथी। ये संदेश हमें लिख भेजा है गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी ने। और ये संदेश हमारे पास आया है बरेली करेली से मोहम्मद आबिन अंसारी, नसरीन, शमा, शमीम, माए, नूर अंसारी और इनके सभी संगी साथियों का। ये संदेश हमारे पास लिख भेजा है करें रोग रहे निरोग की भारतीय परंपरा का घोष वाक्य निसंदेह जीवन की सभी बीमारियों को दूर रखता है। और लिखने वाले हमारे श्रोता हैं जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार और वसुधा वज्रसेन। तो अगला संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। इन्होंने अपने संदेश में लिखा है योग करना हमें अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए क्योंकि योग करने से हम स्वस्थ रहेंगे, छोटी मोटी बीमारियों से निजात मिलेगी। इसलिए जितना हो सके योग करते रहें और खुश रहें क्योंकि जान है तो जहान है। जी हाँ श्रोताओं, और ये संदेश सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का चंडीगढ़ सिटी से। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर फिल्म आराधना का ये गीत, स्वर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के हैं।

0: तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों के निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: कार्यक्रम गीत बात और एसएमएस के लिए ये संदेश हमें लिख भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सोरलकर रतलमाला आरती गौरी ओम कुमार सोरलकर ने। इन्होंने अपने संदेश में लिखा है, योग शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास का एक प्राचीन विज्ञान है। नियमित अभ्यास से शरीर में तनाव कम होता है, मानसिक शांति मिलती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। साथ ही ये बीमारियों से बचाकर एक स्वस्थ और अनुशासित जीवन शैली प्रदान करता है। जी हाँ श्रोताओं, इसीलिए हमें योग नियमित करते रहना चाहिए। और अगला संदेश हमारे पास आया है समडील नवापारा से लिखने वाले श्रोता मुकेश गुप्ता, श्रद्धा आदिति, राधे दीपक और अंकुर राघव गुप्ता। इन्होंने लिखा है, करे रोग रहे निरोग, योग से शरीर की सुंदरता बरकरार रहती है, साथ ही मन को शांति मिलती है। और ये संदेश हमारे पास आया है

झालावाड़ से लिखने वाले श्रोता हैं हमारे हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर बाई, प्रभुलाल बागरी और इनके सभी संगी साथी। इन्होंने अपने संदेश में लिखा है, योग करेंगे हम सब लोग तभी हम सब निरोग रह सकेंगे। जी हाँ श्रोताओं, यदि हम अपने नियमित दिनचर्या में योग को शामिल करेंगे तो बहुत सी बीमारियां हमसे दूर रहेंगी और हम निरोग रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। इसीलिए हमें नियमित योग करना चाहिए। और ये संदेश हमारे पास आया है गोकुल चौक गंगाजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी का। इन्होंने अपने संदेश में लिखा है, योग शरीर ही नहीं तन से और मन से भी जुड़ा हुआ होता है और इसे प्रसन्नचित रखता है। उदाहरण के तौर पर यदि आज 25 साल से मैं योग कर रहा हूँ तो मेरी उम्र 75 वर्ष की है और मैं तंदुरुस्त हूँ। साथ ही हार्ट ब्लॉकेज, लकवा, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर इन रोगों से ग्रसित भी हूँ फिर भी अपने आप को जवान महसूस कर रहा हूँ। सभी लोगों से मैं आग्रह करूँगा कि आप अपने जीवन में योग को अवश्य अपनाएं। तो श्रोताओं, आप सब हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपने सुना कि ये कितनी सारी बीमारियों से पीड़ित है लेकिन इन्होंने योग करना फिर भी नहीं छोड़ा है और योग ये लगातार कर रहे हैं जिससे कि ये थोड़े बहुत इन योग करने की वजह से बिल्कुल अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं, जवान महसूस करते हैं। इसीलिए आप सब भी अपने नियमित दिनचर्या में योग को जो है शामिल करें। और ये अगला संदेश हमें लिख भेजा है शहादरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना आशच राजा, चैतन्य मस्कीन ने। इन्होंने अपने संदेश में लिख भेजा है, योग करने से ध्यान और प्राणायाम मन को शांत करते हैं और तनाव के हार्मोनों को कम करने में मदद करते हैं, दिल की बीमारियों के खतरे को कम करता है और गहरी सांस लेने की क्षमता में ये सुधार करता है। जी हाँ श्रोताओं, तो आइए आप सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये गीत। स्वर किशोर कुमार का है, फिल्म का नाम है चलते चलते।

और ये संदेश हमारे पास आया है बहादुर चक्रवर्ती का। इन्होंने लिखा है अपने संदेश में कि योग करने से माँ के लिए शांति बढ़ती है, मन अच्छा रहता है, काम में तनाव जो है बढ़ता है उसमें जो है कमी आती है, इसीलिए लोगों को योग जरूर करना चाहिए। और ये संदेश हमारे पास आया है रामगंज खंडवा से। लिखने वाले श्रोता हैं विजय महोविया, कविता, सोनू, मोनू, रानू, सपना, शिवी, सलोनी और पेंटर बाबू। इन्होंने लिखा है निरोगी काया का एकमात्र उपाय है योग करना, जिसमें रोग को दूर करने की शक्ति होती है। शरीर के कायाकल्प का मूल मंत्र है योग। और ये संदेश हमें लिख भेजा है कलानौर से, हरियाणा से, नरेंद्र शर्मा, किरण, नितिन और मयंक शर्मा ने। इन्होंने लिखा है करो योग, रहो निरोग। हम योग करते नहीं पर करना चाहिए, इससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। जी हाँ श्रोताओं, इसीलिए हमें योग को अपने नियमित दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। और ये संदेश हमारे पास आया है फुटानी चौक नारायण स्टेट से। लिखने वाले श्रोता ललन मिश्रा, नूतन अमन, बेबी आराध्या और लल्लू पंडित। इन्होंने लिखा है अपने संदेश में योग मूलतः एक आध्यात्मिक अनुशासन है, यह स्वस्थ जीवन जीने की कला और विज्ञान है। यह केवल आसन या प्राणायाम नहीं अपितु जीवन जीने के सकारात्मक तरीका है। यह मन, शरीर और श्वास के बीच संतुलन बनाने की कला है। अगर इन तीन चीज़ों पर हमारा नियंत्रण हो जाता है तो हम बहुत सारे विकारों से दूर हो जाते हैं। और ये संदेश हमारे पास आया है दीपक, मयंक मूरत, चेतन नाहटा, विनोद मूरत और नेहा जैन का, मध्य प्रदेश उज्जैन से। इन्होंने लिखा है अपने संदेश में रोज योग करें, स्वस्थ रहें। ये संदेश लिखने वाले हमारे श्रोता हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हरमिंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल, वैदेही, अंशिका, अंकिता, अनूप शहर मध्य प्रदेश से, जयवंती केवट जी। और ये संदेश हमारे पास उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, भोजराज खोरवाल और भानु प्रकाश का। इन्होंने लिखा है योग हमारे शरीर को लचकदार और बीमारियों से दूर रखता है, इसीलिए योग ज़रूरी है निरोगी काया के लिए। जी हाँ श्रोताओं, और अगला संदेश हमें लिख भेजा है तेलंगाना से करीमनगर, लक्ष्मी नारायण, विजया, अभिनय साई।

Encarar, né? जनकपुरी सहारनपुर से लिखने वाले श्रोता जोन डिकेस्टो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्टो। अगला संदेश हमारे पास आया है मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार का। इन्होंने लिखा है, योग करने से सभी बीमारियां दूर होती हैं और हम तो नियमित योग करते हैं। ये संदेश आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरव और साइना शर्मा का। इन्होंने लिखा है, योग करना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि योग करने से हम निरोग रहते हैं। और ये संदेश भोपालगढ़ राजस्थान से लिखने वाले हमारे श्रोता धर्मेंद्र चीपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार। इन्होंने अपने संदेश में लिखा है, आज योग पर बहुत ही अच्छी चर्चा कर रहे हैं। योग करना भी चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। अपने शरीर के स्वस्थ रखने के लिए कम से कम सुबह सुबह योगासन, जो काफ़ी तरह के होते हैं, करने से शरीर पूरी तरह से एकदम फिट रहता है। जी हाँ श्रोताओं, यदि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर योग अवश्य कर सकते हैं। और अब हमारे इस कार्यक्रम का समय जो है समाप्त होने के आ गया है, इसीलिए अब हम इस कार्यक्रम को अपने को यहीं सब विराम देते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बात और SMS। आज हम आपसे बात कर रहे थे योग पर, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है,
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत। आज की कलाकार थी माधुरी शर्मा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलिग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस बीच घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज वृद्धि दर्ज की गई है। सेंसेक्स 922 अंक बढ़कर 76,450 पर, जबकि निफ्टी 287 अंक बढ़कर 23,910 पर कारोबार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले

0: एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम करें योग रहें निरोग। आलेख जयसिंह का होगा, वाचन स्वर देवराज कृष्ण दीक्षित और संजय सारस्वत के होंगे।

रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे राग यमन में ख्याल गायन। कलाकार होंगी विदुषी अनीता सेन। तबले पर संगत करेंगे अब्दुल सलाम।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर बहनों का कार्यक्रम होगा वनिता लोक। इसमें आरोग्य के अंतर्गत भेंट वार्ता प्रसारित की जाएगी सर्वाइकल पेन कारण लक्षण और उपाय विषय पर। जानकारी देंगे डॉक्टर देवदत्त शर्मा, भेंट करता होंगी उषा पांडे।

संध्या 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। इसमें आज आप सुनेंगे काव्य पाठ। कवि होंगे कीर्ति बल्लभ देव पाठक।

संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे ब्रजवार्ता। ब्रज साहित्य में सुदामा, वार्ताकार होंगे डॉक्टर गोपाल प्रसाद पाठक।

रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम विशेष श्रृंखला के अंतर्गत सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

अभी आप सुन रहे थे समवेत स्वरों में देशगान। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब बहनें सुनेंगी अपना कार्यक्रम वनिता लोक।

वनिता लोक कार्यक्रम को सुन रही मातृशक्ति को प्रियंका खंडेलवाल का सादर नमस्कार। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। हिंदी साहित्य के छायावाद युग के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद की इन प्रेरणादायी पंक्तियों के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आज हम महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। बहनों, महिला सशक्तिकरण क्या है हम बताते हैं। महिला सशक्तिकरण है महिलाओं को शिक्षा, सम्मान, आत्मनिर्भरता और अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार। किसी भी समाज की प्रगति तभी संभव है जब उसकी महिलाएं सशक्त, जागरूक और आत्मविश्वासी हों। नारी केवल परिवार की देखभाल ही नहीं करती, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। हमारे देश में नारी को शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना गया है। वह माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में परिवार को प्रेम, संस्कार और संवेदनाएं प्रदान करती है। आज महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, खेल, राजनीति, प्रशासन और सेना जैसे अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं और नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रही हैं। इसके साथ ही आर्थिक आत्मनिर्भरता भी महिलाओं को सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जब हम महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होती हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास।

विश्वास बढ़ता है और समाज में सम्मान बढ़ता है। आज अनेक महिलाएं स्वरोजगार, स्वयं सहायता समूहों और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आत्मनिर्भर बन रही हैं। बहनों, हमें यह समझना चाहिए और समझना होगा कि महिला सशक्तिकरण केवल महिलाओं का विषय नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। अपनी इस चर्चा के अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी, नारी केवल घर की पहचान नहीं, नारी केवल घर की पहचान नहीं, वह समाज और राष्ट्र की भी शान है। उसके सम्मान और सशक्तिकरण में ही एक विकसित भारत की पहचान है।

बहनों, अब करते हैं चर्चा योग और मेनोपोज की। योग अपनाएं, स्वस्थ रहें, हर चुनौती का हंसकर सामना करें, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ जीवन के हर पड़ाव को सफल बनाएं। जी हाँ बहनों, बहनों, मेनोपोज यानी रजोनिवृत्ति। हमारी बहनें सोच रही होंगी ये होता क्या है। अपनी बहनों को बताते हैं कि बहनों, महिलाओं के जीवन का ये एक स्वाभाविक चरण है। आमतौर पर 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच मासिक धर्म स्थायी रूप से जब बंद हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं मेनोपोज यानी रजोनिवृत्ति। इस समय शरीर में हार्मोनल परिवर्तन होने के कारण अधिकांश महिलाओं को अनिद्रा, तनाव, चिड़चिड़ा

0: थकान और अधिक पसीना आने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, जिनका सामना महिलाएं करती रहती हैं। ऐसे समय में योग करना बहुत ही लाभदायक होता है। योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शांत और संतुलित बनाता है। नियमित योगाभ्यास तनाव को कम करता है और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। बहनों, योग के साथ संतुलित आहार, पर्याप्त पानी और सकारात्मक सोच भी बहुत आवश्यक है। हमें यह समझना होगा कि मेनोपॉज कोई बीमारी नहीं बल्कि जीवन का एक प्राकृतिक परिवर्तन है। अपनी इस चर्चा को अब मैं यहीं विराम देती हूं और अब बात करते हैं एक ऐसी बीमारी की जो आज के समय में सामान्य है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहनों सर्वाइकल पेन की। सर्वाइकल पेन एक आम स्वास्थ्य समस्या बनती जा रही है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो यह दैनिक जीवन को भी प्रभावित कर सकती है। बहनों, हमारा दैनिक जीवन प्रभावित ना हो, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम सुनवा रहे हैं आरोग्य भेंट वार्ता क्रम के अंतर्गत सर्वाइकल पेन कारण, लक्षण और उपाय। इसकी जानकारी हमें दे रहे हैं डॉक्टर देवदत्त शर्मा और भेंट कर रही हैं उषा पांडे। तो सुनते हैं यह भेंट वार्ता।
1: भागदौड़ भरी जिंदगी का फसाना कुछ यूं हुआ, हम रहे न हम, दर्द का तराना बन गया। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास, श्रोताओं, इतना भी समय नहीं है कि वो अपना ख्याल रख सकें। भागदौड़ भरी जिंदगी में हासिल तो सब कुछ हो जाता है मगर कुछ पीछे छूट जाता है और वो है हमारा स्वास्थ्य। पहले तो छोटी मोटी चीज़ें लगी ही रहती थीं, जैसे घुटनों में दर्द है, कमर दर्द है, सर्वाइकल पेन है, लेकिन अब वो इतना बड़ा रूप ले रही हैं कि व्यक्ति परेशान हो चुका है। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल पेन के बारे में कि ये सर्वाइकल पेन क्या है, और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए कि सर्वाइकल पेन लक्षण, कारण और उपाय, उसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर देवदत्त शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
2: जी नमस्कार मैम।
1: डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस तरह से आजकल लोग अच्छे खासे परेशान हैं, हमारी यूथ भी परेशान है, चाहे वो किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, सभी परेशान हैं सर्वाइकल पेन के कारण। तो ये सर्वाइकल पेन है क्या?
2: जी मैम, सर्वाइकल पेन आज के समय के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा सीवियर हो रहा है ये
1: जी।
2: आजकल बच्चों में या बूढ़ों में, नई जनरेशन पुरानी जनरेशन दोनों में ही ये देखने को मिल रहा है। तो आजकल क्या है, ये सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। तो इस पर अगर अब बात करें तो इसकी परेशानियाँ बहुत सारी हैं, जैसे कि सिर में दर्द होना, सिर में चक्कर आना, गर्दन दर्द रहना, कंधों में दर्द रहना, ये सारी परेशानियाँ इस सर्वाइकल पेन में आ रही हैं। और ये आजकल शहर में से गाँव में भी पहुँच रही है
1: जी,
2: गाँव से और जवान से बूढ़ों में, बूढ़ों से बच्चों तक, सब जगह मिल रही है ये।
1: ये तो डॉक्टर साहब लक्षण हुआ, चक्कर आना
2: जी,
1: और गर्दन में दर्द, हाथ में दर्द, नसों में दर्द, इस तरह का। लेकिन ये है क्या, इसके पीछे कारण क्या है?
2: सर्वाइकल पेन की समस्या हड्डियों के दर्द से जुड़ी होती है
1: जी,
2: जिसमें गर्दन में दर्द या कंधे में दर्द होता है, जो हमारी गर्दन की वर्टीब्रा या गुटके बोल सकते हैं, उनमें बदलाव आ रहा है। और वो आ रहा है जैसे कि पोस्चर के लिए, पोस्चर आजकल लोगों का खराब हो चुका है, तो पोस्चर में जैसे कि मोबाइल सबसे इसमें मेन कारण मान सकते हैं।
1: पोस्चर का मतलब डॉक्टर साहब?
2: पोस्चर का मतलब हो गया बॉडी को गलत तरीके में झुका के बैठना, और बहुत लंबे समय तक उसमें मोबाइल चलाना या गर्दन झुका के लैपटॉप पे काम करना, तो उस वजह से जो हमारे गुटके हैं गर्दन के, उसमें बदलाव आ रहे हैं बहुत ज्यादा, या फिर वो ऐसा समझ लीजिए वो घिस रहे हैं या उनका पोस्चर चेंज हो रहा है।
1: बैठने का तरीका यानी
2: हाँ
1: सही होना चाहिए।
2: हाँ, बैठने का तरीका बदल चुका है लोगों का, वो सही होना चाहिए।
1: और कोई कारण डॉक्टर साहब?
2: और इसमें मेन अब ये चल रहा है विटामिन D3 और एक कैल्शियम, दोनों ही लोगों में, बच्चों में या बूढ़ों में कम मिल रहा है, क्योंकि दूध की जगह लोग चाय का सेवन ज्यादा कर रहे हैं। अब महिलाओं से मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे क्लिनिक पे आती हैं तो मैं पूछता हूँ क्या आप दूध पीती हैं।

0: तो वो सीधे मना करती हैं, डॉक्टर साहब हमें पसंद नहीं है दूध, हमने पिया ही नहीं है शुरू से। बड़े बूढ़े बच्चों सबको एक गिलास दूध तो लेना चाहिए, क्योंकि कैल्शियम कम होगा, गर्दन या हड्डियों में कमजोरी आएगी। हड्डी में कमजोरी आने से गर्दन के जो पोस्चर होते हैं वो जल्दी चेंज हो जाते हैं, घिसावट आ जाती है, सर्वाइकल पेन के रूप में ये आगे बढ़ रहा है। जी मैम,
1: भारी वजन के कारण भी कुछ दिक्कत
0: हाँ
1: आ सकती है।
0: हाँ एक कारण भारी वजन रखने से भी ये बढ़ रहा है। जैसे गांव में चारा बहुत ज़्यादा एक वेट के साथ में रख लेते हैं सिर पे, तो गांव में भी समस्याएं काफ़ी बढ़ रही हैं इस पेन की। और ये मोबाइल वैसे मेन है इसका, मोबाइल पे ज़्यादा लोग फोकस दे रहे हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको काफ़ी रोका जा रहा है, पर वो एक लत लग गई है मोबाइल की, तो वो दो दो तीन तीन घंटे लगातार गर्दन को झुका के फोन चला रहे हैं, उससे परेशानी ज़्यादा आ रही है।
1: डॉक्टर साहब, चक्कर तो आता ही है इसमें, क्या उबकाई भी आती है?
0: हाँ, चक्कर के साथ उबकाई भी आ सकती है और दर्द तो रहता ही है। दर्द, गर्दन भारी रह सकती है, सिर भारी रह सकता है, आंखें भारी रह सकती हैं, इसमें आंखों से पानी भी आ सकता है। ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं इस सर्वाइकल पेन की मैम।
1: शुरुआती पहचान क्या है डॉक्टर साहब, जब ये
0: जी,
1: कैसे पहचाने हम?
0: सर्वाइकल पेन को पहचानने के लिए गर्दन में दर्द अगर आपको हो रहा है, फर्स्ट स्टेज पे दर्द होगा, फिर सेकंड स्टेज पे आपको सिर भारी रहेगा, चक्कर आ सकते हैं, हाथ सुन्न रह सकते हैं, कंधों में जकड़न आ सकती है, गर्दन में जकड़न आ सकती है, ये शुरुआती सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं।
1: ये सिम्टम्स कितने दिन में नजर आते हैं, जैसे गर्दन से हाथ तक आना दर्द का, और उसके बाद चक्कर आना या उबकाई आना? आपने कहा कि आंखों में भी दर्द और जलन की शिकायत हो सकती है, तो ये सिम्टम्स एक साथ तो आते नहीं है डॉक्टर साहब, धीरे धीरे ही आते होंगे, तो लगभग कितने दिन में ये पूरी चीज़ क्लियर हो जाती है?
0: 1 महीने के अंदर में आ सकता है। अगर आपको 1 महीने बराबर पेन बन रहा है तो जकड़न और बढ़ती जाती है। अगर किसी जॉइंट में दर्द अगर 1 महीने हुआ है तो वहाँ की मांसपेशियाँ कमजोर होंगी, फिर जो स्टेज है उसकी और आगे बढ़ेगी। तो 1 महीने के बाद आपको ऐसा हो सकता है कि आपके कंधे भी जाम होना शुरू हो जाएं। कंधे जाम होंगे, उसके बाद नीचे हाथों में सुन्नपन भी आपको 2 महीने में आ सकता है। तो 1 से 2 महीने के सिम्टम्स में आप इसे पहचान सकते हैं कि आपकी परेशानी बढ़ रही है। जी
1: और
0: मैम,
1: धीरे धीरे क्या डॉक्टर साहब, ये पैरों की तरफ भी जाता है, कमर और पैर की तरफ भी जाता है?
0: कमर की तरफ नहीं जाएगा ये, आपको गर्दन से सिर्फ हाथों में, और कमर की परेशानी अलग होती है, उसे लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस या बैक पेन बोल सकते हैं, वो अलग है, होता गर्दन की जैसा ही है, जैसे गर्दन में बदलाव आते हैं ऐसे ही कमर में भी बदलाव आते हैं, उसकी वजह से पैरों में आपका, कमर की वजह से जा सकता है, गर्दन से हाथों में ही आपको आएगा या कंधों में आएगा, ये हो सकता है, या आधी पीठ में आपको महसूस हो सकता है।
1: डॉक्टर साहब, आजकल के समय में खान पान बहुत गलत हो गया है,
0: जी
1: सही समय पे अच्छा खान पान नहीं ले रहा है, दिनचर्या उसकी बिगड़ी हुई है, क्या ये भी कारण हो सकता है?
0: जी मैम, ये भी कारण है, खान पान में बदलाव, समय से खाना ना खाना, गलत समय पे खाना खाना, तो स्ट्रेस लेना, ये सब सिम्टम्स आपके सर्वाइकल पेन को बढ़ा सकते
1: रात
0: हैं।
1: को सोते समय कहते हैं कि सर्वाइकल पेन अगर हो या ऐसी कोई समस्या हो या लक्षण दिखाई देता हो तो डॉक्टर तकिया लगाने को मना कर देते हैं और सोने का जो पोस्चर है वो चेंज कर देते हैं, तो डॉक्टर साहब इसके
0: जी,
1: बारे में बताएं।
0: सर्वाइकल पेन में बहुत ही पतला फोम का तकिया लगा सकते हैं। अगर नहीं लगाएं, अगर आप सीधा लेटे हुए हैं तो ठीक है, चलेगा। बाकी का करवट लेते हैं तो आप एक टावल रख सकते हैं हाथ के नीचे, हाथ को मोड़ के उसके ऊपर टावल रख के सो सकते हैं। अगर आपको हाथ में पेन आ रहा है तो आपको वो वाला हाथ नहीं लगाना जिसमें पेन आ रहा है, अगर आप बदल के दूसरा हाथ यूज करें और उसके सहारे सो सकते हैं। और सीधा किसी को लेटना है, अगर तकिया लगाना ही है तो एक टावल को रोल बना के गर्दन के नीचे लगा के सोएं, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा।
1: यानी जिस हाथ में परेशानी है
0: जी
1: उस हाथ से अपोजिट साइड में, अगर दाएं में परेशानी है तो बाएं साइड
0: बाएं,
1: से सोएं,
0: जी, बाएं से सोएं,
1: दाएं पे प्रेशर ना
0: दाएं पे
1: डालें।
0: प्रेशर ना जाए, जिस हाथ में आपको दर्द है तो उस हाथ को ना लगाएं।
1: डॉक्टर साहब, किस कारण से ये होता है और इसके लक्षणों के बारे में जाना, अब हम आपसे जानना चाहेंगे इसके उपाय के बारे में कि जब हमें पता चले

0: तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए?
1: अगर आपको सर्वाइकल पेन जैसा फील हो रहा है, सर्वाइकल पेन लग रहा है, तो सबसे पहले अपने किसी फिजियोथेरेपिस्ट या जनरल फिजिशियन या ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर को सजेस्ट करें, जाके मिलें, उनसे बताएं अपनी पेन के बारे में। तो वो कुछ पेन किलर मेडिसिन भी इसमें आप ले सकते हैं, या फिर आप फिजियोथेरेपी के कुछ सेशंस आप शुरुआत में ले लेंगे तो ये आपका लंबा बीमारी नहीं रहेगी, ये जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगी और जल्दी आप ठीक हो जाओगे। क्योंकि फिजियोथेरेपी में मसल्स को रिलीज किया जाता है, जो जॉइंट की स्टिफनेस को कम किया जाता है, आपकी गर्दन की जो मोबिलिटी जकड़न रुकी हुई है उसे बढ़ाया जाता है। तो आप सबसे पहले आप फिजियोथेरेपी जाके भी आप इसको दिखा सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइज बताई जाती है और कराई जाती है?
1: हाँ जी मैम, अगर जिनको सिर्फ जकड़न और हल्का वल्का सर्वाइकल पेन स्टार्ट हुआ है तो वो सर्वाइकल एक्सरसाइज से ही रुक जाता है। बाकी का जिनको स्वेलिंग आ गई है या वर्टिब्रल चेंजेज आ गए हैं, स्पॉन्डिलाइटिस हो गया है जिनको, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, तो वहाँ हम मशीनों का, इलेक्ट्रोथेरेपी का यूज करके उस स्वेलिंग को, इन्फ्लामेशन को हम कम करते हैं, और साथ में सर्वाइकल ट्रैक्शन भी देते हैं। अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं तो वहाँ पर एक गर्दन का खिंचाव होता है जो फिजियोथेरेपी सेंटरों पर मिलता है, सर्वाइकल ट्रैक्शन, तो उससे हम उन चक्करों को रोकते हैं और मोबिलिटी को बढ़ाते हैं, गर्दन की मोबिलिटी को बढ़ाते हैं।
0: डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज कितनी बार करना चाहिए?
1: दिन में 2 बार आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, 2 से 3 बार। बाकी का जैसे कंधे उठाना या शोल्डर के मूवमेंट हैं, वो तो आप दिन में 3-4 बार जब भी याद आ जाए तब भी आप कहीं ऑफिस में या कहीं बैठे हों वहाँ भी कर सकते हैं।
0: इसका खाली पेट करने से कोई वो
1: नहीं
0: है,
1: सर्वाइकल की एक्सरसाइजों को खाली पेट या भरे पेट से कोई दिक्कत नहीं है।
0: इसके लगभग कितने स्टेप होते हैं डॉक्टर साहब एक्सरसाइज के?
1: 10-10 के रिपीटेशन आपको स्टार्टिंग से शुरू करने चाहिए, बाकी का 20-40 तक आप बढ़ा सकते हैं।
0: योगा किस हद तक कारगर है इसमें?
1: योगा आपको जैसे सर्वाइकल पेन स्टार्टिंग है तो योगा भी आप कर सकते हैं, इसमें गर्दन की स्ट्रेचिंग्स होती हैं योगा में, भुजंगासन होता है, चक्रासन होता है, ये आसन आपको सर्वाइकल पेन में रिलीफ दे देंगे स्टार्टिंग से ही।
0: डॉक्टर साहब, वॉक कर सकते हैं, वॉक से आराम मिलेगा?
1: हाँ, वॉक भी जरूरी है, वॉक करना पूरी बॉडी के लिए फायदेमंद है, जो कि आपकी बॉडी की मोबिलिटी को बढ़ाता है, जो स्टिफनेस को कम करता है, तो वॉक तो जरूरी है, वॉक आप कर सकते हैं। अगर किसी को सर्वाइकल पेन 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड पे चल रहा है, चक्कर आ रहे हैं, स्टिफनेस है, तो वहाँ पे वॉक करना ठीक नहीं है, वो थोड़े समय बाद अपना फिजियोथेरेपी सेशन लेने के या डॉक्टर को दिखाने के बाद चालू कर सकते हैं वॉक को।
0: सिकाई के बारे में बताया गया है डॉक्टर साहब, सिकाई ठंडा गर्म कैसी करनी चाहिए?
1: इसमें स्वेलिंग अगर बहुत पुरानी है तो इसमें आपको गर्म सिकाई ही फायदा करेगी, क्योंकि गर्म सिकाई हमेशा जकड़न अकड़न को दूर करती है मांसपेशियों की, और जो ठंडी सिकाई हमें स्टार्टिंग में क्रिटिकल या बहुत ज़्यादा स्वेलिंग, बहुत इन्फ्लामेशन स्टार्टिंग हुई है किसी चोट से या, तो वहाँ हमें बर्फ़ की सिकाई कर लेनी चाहिए।
0: सिकाई कितनी बार कर सकते हैं डॉक्टर साहब?
1: सिकाई 1 बार में 10 मिनट की, और उसके बाद दिन में 2 या 3 बार।
0: डॉक्टर साहब, मसाज के बारे में?
1: हल्के हाथ से आप मसाज दे सकते हैं, कोई भी दर्द का तेल या तिली का तेल आप यूज करके इसमें मसाज दे सकते हैं, मांसपेशियों को रिलीज कर सकते हैं इसमें।
0: दिनचर्या कैसी होनी चाहिए डॉक्टर साहब, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की थी कि दिनचर्या बिगड़ने से इस तरह की परेशानी आ सकती है?
1: दिनचर्या हमारी सुबह जल्दी जगने से और शाम को जल्दी सोने तक ठीक रहती है। सुबह 5 बजे जगना और रात को 9 से 10 बजे सोना, और दिन में अपना टाइम से लंच करना, ब्रेकफास्ट करना, डिनर करना, ये सब टाइमिंग होनी चाहिए इसमें। ये नहीं है कि आप 12 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो और शाम को 4 बजे खा रहे हो, तो इससे भी बॉडी पे इफेक्ट आता है।
0: जी डॉक्टर साहब, स्ट्रेस बहुत आजकल व्यक्ति लेता है, तो स्ट्रेस का भी क्या इसमें रोल है कुछ?
1: स्ट्रेस की वजह से भी आपका सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो सकता है।
0: एक तो कहा जाता है कि कम नींद लेने पर परेशानी होती है, लेकिन इसके बारे में ऐसा सुना गया है कि ज्यादा आराम करने से भी इस तरह की समस्या हो सकती है, ये बात सही है डॉक्टर साहब?
1: सामान्य बॉडी को 1-8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, अगर उससे ज्यादा अगर आप

0: लेट रहे हो या गलत पोस्चर में लेट रहे हो तो वो नुकसान करता ही है। अगर आपको कम नींद आ रही है वो भी नुकसान करता है, और ज़्यादा आप नींद ले रहे हो वो भी नुकसान करेगा आपको।
1: खान पान कैसा होना चाहिए ऐसे में?
0: खान पान में मैम देखो, हेल्दी फूड जैसे कि हो गया आजकल फलों का जो सीजन चल रहा है, ये सारे फल लेने
1: मौसम के
0: चाहिए।
1: अनुसार
0: हाँ, मौसम
1: फल?
0: के अनुसार जो भी फल चलते हैं वो सारे फल लेने चाहिए, और दही और दूध का इस्तेमाल जरूर होना चाहिए बच्चों, बड़ों, बूढ़ों को, सभी को। और साथ ही साथ ये हेल्दी डाइट, गर्म भोजन, ताज़ा भोजन करना चाहिए, ना कि बासी भोजन करना चाहिए।
1: पानी
0: ये
1: का ज्यादा से ज्यादा
0: पानी का
1: प्रयोग करना
0: ज़्यादा सेवन,
1: चाहिए।
0: कम से कम 3 से 4 लीटर हर व्यक्ति को पानी पीना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, सर्वाइकल पेन के बारे में आपने जानकारी दी कि किस तरह से, किन कारणों से ये होता है, इसके लक्षण क्या हैं, और आपने इसके जो बचाव हैं उसके बारे में बताया। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमने और हमारी प्यारी बहनों ने सुनी आरोग्य क्रम के अंतर्गत भेंट वार्ता, सर्वाइकल पेन कारण लक्षण और उपाय। जानकारी दी देवदत्त शर्मा ने और भेंट की उषा पांडे ने। इसी महत्वपूर्ण जानकारी के बाद अब बात करते हैं मनोरंजन की दुनिया की ओर, और चलते हैं, रुक करते हैं मनोरंजन की दुनिया की ओर और सुनते हैं यह गीत।

बहनों, इस मधुर गीत की समाप्ति के साथ ही स्टूडियो की घड़ी ने भी हमें संकेत कर दिया है आज के कार्यक्रम को समाप्त करने का। तो मुझे यानी प्रियंका खंडेलवाल को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम वनिता लोक, आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए श्रोताओ। किसान भाइयों, इस मंगलवार दिनांक 16 जून सन 2026 को शाम 6:15 पर 30 मिनट अवधि के हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में इस बार का विषय है खेत बचाओ अभियान, क्रम में बागवानी वाली फसलों का महत्व। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर एस के शर्मा, भरतपुर संभाग। किसान भाई, खेत बचाओ अभियान में खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट एवं फसल अवशेषों के उचित उपयोग तथा फसलों के लिए उचित पोषक तत्व प्रबंधन व कार्बनिक खेती, मिट्टी के कटाव व क्षरण को रोकने के लिए पेड़ों के महत्व पर जानकारी हेतु हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर एस के शर्मा, भरतपुर संभाग। आप हमारे टेलीफोन नंबर 0565-2530-135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412-2525-575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस संबंध में आप सीधे बातचीत कर सकते हैं डॉक्टर एस के शर्मा, भरतपुर संभाग से। कार्यक्रम का समय होगा मंगलवार शाम 6:15 से 6:45। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: India welcomes peace deal between Iran and the United States, says it will help restore peace and stability in the region. Sensex jumps over 1,100 points as global crude oil prices tumble up to over 4% amid US-Iran peace deal. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman assures adequate buffer stock of food grains in the country despite El Nino conditions. United Kingdom announces social media ban for children under 16. And in FIFA World Cup 2026, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta Stadium in the United States this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की भी भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
1: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्व भर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता

0: हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
1: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
2: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
3: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में

0: कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
2: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। राजा का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक राजा पान इस उत्सव का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबू वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनीशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमरीका और

0: ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT MCIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: पतंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
1: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
1: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडे और संजय मार्कंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
1: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
1: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
1: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
1: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
1: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
1: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
1: और अब सुनिए

0: हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
0: तो ये थे श्रोताओं हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
0: श्रोताओं हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब चलिए बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
1: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: वो नीम के पेड़ों की घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।
0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे, उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
2: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे। बड़े आंवले जैसे।
2: कितने खूबसूरत हैं, अब तक ये कहाँ थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था।

0: फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वो अकेले ही खेलता था। वो कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओ,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता कंचा ले सकता था, लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुनो।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चौदह।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
6: आ गया।
2: जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
7: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
7: पानी रखने के लिए खास जगह है,

0: इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
1: लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जार जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
2: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
0: अप्पू,
2: उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
0: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
2: उसका दम घुट रहा था।
0: बोल।
2: वो खामोश खड़ा रहा।
0: क्या नहीं बोलेगा?
2: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
1: मास्टर जी,
0: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
1: वो
2: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
0: हाँ हाँ बता, डरना मत।
1: वो
2: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
0: हाँ हाँ
2: वो कांपते हुए बोला।
1: वो कंचा।
0: कंचा?
2: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
0: स्टैंड अप।
2: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
1: दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
2: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
1: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
2: तब शक हुआ।
1: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो, नहीं दे तो?
0: किसी को शक हो तो पूछ लो।
2: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
0: क्या किसी को कोई शक नहीं?
1: नहीं मास्टर जी।
2: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
1: क्या जॉर्ज को

0: चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
1: अप्पू क्या सोच रहे हो?
0: वो मैं
1: पूछ लो ना, शंका क्या है?
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा? 10 पैसे में?
1: क्या सोच रहे हो?
0: वो पैसे।
1: क्या? कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
0: हाँ।
1: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
0: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
1: लाओ।
2: मास्टर जी ने कहा,
1: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
0: ओए,
2: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
0: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
2: वो बेंच से उतरा।
1: किधर?
2: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
0: फीस देनी है।
1: फीस मत देना,
2: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
1: ऑन द बेंच।
2: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
1: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
0: ध्यान दूंगा।
2: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।
2: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
5: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
2: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
0: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
2: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो।
1: क्या सब फीस जमा कर चुके?
5: जी मास्टर जी।
2: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

शाम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया।

फाटक के सीखचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी।

0: तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है? उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए, स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
2: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
3: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं।

0: पस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
2: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
2: बहुत अच्छे लगते हैं।
0: वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
3: तो श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERTMCIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5:30 हुए हैं, अब हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है। सभा की शुरुआत में हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम आपसे बात करेंगे योग के विषय में। योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की प्राचीन भारतीय पद्धति है। इसमें शारीरिक मुद्राएं, जिन्हें हम आसन कहते हैं, श्वास नियंत्रण, जिन्हें हम प्राणायाम कहते हैं, और मन की एकाग्रता शामिल है। नियमित अभ्यास से शारीरिक लचीलापन, मानसिक शांति

और मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त होती है। योग में कुछ प्रमुख आसन हैं, जैसे भुजंगासन, पेट के बल लेट जाएं, हथेलियों को छाती के पास जमीन पर रखें, श्वास अंदर लेते हुए शरीर के ऊपरी हिस्से, सिर, कंधे और छाती को उठाएं, कुछ देर रोकें, फिर सांस छोड़ते हुए वापस आएं। ये रीढ़ की हड्डी मजबूत करता है, सीना चौड़ा होता है और पेट की चर्बी कम होती है। इसी प्रकार और भी बहुत से आसन हैं, जैसे ताड़ासन, वज्रासन, श्वासन। योग के बहुत सारे प्रकार भी हैं, जैसे प्राणायाम, श्वास लेने और छोड़ने की तकनीक, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, जो फेफड़ों को स्वस्थ और मन को शांत करती है, मन को एकाग्र और स्थित करने की प्रक्रिया होती है। योग केवल व्यायाम ही नहीं है, बल्कि ये जीवन शैली है। इसके वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित लाभों में शामिल हैं, ये मानसिक स्वास्थ्य, तनाव, चिंता और डिप्रेशन को कम करता है, शरीर के प्रति लचीलापन बढ़ाता है, जोड़ों का दर्द कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन सुधरता है, नींद अच्छी आती और शरीर में दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। योग के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे योग हमेशा खाली पेट, योग अभ्यास से 2 घंटे पहले कुछ ना खाएं, उसके बाद ही योग करें, अपनी क्षमता से अधिक जोर शरीर पर ना डालें, किसी कुशल प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही अभ्यास शुरू करें। आप योग के नियमों और आसनों के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने किसी योग गुरु से या विकिपीडिया पर या किसी योग्य चिकित्सक से भी, जो कि योग के बारे में जानते हों, उनसे सलाह ले सकते हैं।

ढीला ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो किपला मारो मंत्र टेटी बनकर निकलो वक्त शाम बड़े में।

कहिए हाथों में हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है, तेरे होंठों की प्यास है, ऐ दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब गा।

उतारता मेरे हाथों तू तू मैं हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

0: और साथियों, कार्यक्रम में अब काव्यांकुर क्रम में आपको सुनवाते हैं काव्य पाठ। प्रस्तुत कर रहे हैं योग दत्त शर्मा।
1: जैसा कि हम देखते हैं कि शरीर जो है, इसका जो आधार है वो आत्मा है। इस आत्मा को कहीं हम भुला दे रहे हैं और इस संसार की दुनिया में खो जाते हैं। इसी के ऊपर मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी जो आपके सामने व्यक्त करूंगा अपने शब्दों में कि एक बार हम गहरी नींद में खोए थे, एक बार हम गहरी नींद में सोए थे, मीठे मीठे प्यारे प्यारे सपनों में खोए थे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे सपनों से तात्पर्य है कि जो हम ये जीवन धारण कर रहे हैं, आत्मा ये शरीर धारण कर रही है, ये एक सपना ही तो है। आत्मा तो एक सच है और सपना ये शरीर है। कि मीठे मीठे प्यारे प्यारे सपनों में खोए थे, स्वप्न में सुंदर नारी देखी। नारी का तात्पर्य है संसार से, जो सुंदर लगता है, भावमय लगता है। कि स्वप्न में एक सुंदर नारी देखी, मन में प्यार उमड़ आया और लटक मटक कर चलना उसका हमको खूब भाया। संसार का ये आकर्षण है हमको अपनी तरफ मोहित करता है। कि लटक मटक कर चलना उसका, कि लटक मटक कर चलना उसका हमको खूब आया। यूं ही देवी जी ने अपना आगे कदम बढ़ाया, यूं ही देवी जी ने अपना आगे कदम बढ़ाया। रोमांचित हो गए हम तो दिल बहुत घबराया, रोमांचित हो गए हम तो दिल बहुत घबराया। बोले ठहरो देवी जी। हम सोचते हैं इस संसार की माया को पकड़ लें, भाई पकड़ में कहाँ आती है। कि रोमांचित हो गए हम तो कि दिल बहुत घबराया। बोले ठहरो देवी जी, ये दिल पागल अनजाना है, देखा तुमको एक नजर में, हुआ तुम्हारा दीवाना है।

ये पागल दिल कैसे माने, ये पागल दिल कैसे माने, तुमसे कुछ कहना चाहता है कि ये पागल दिल कैसे माने, तुमसे कुछ कहना चाहता है, धड़कन बढ़ जाती है कहने में, तुमसे शर्मा जाता है, धड़कन बढ़ जाती है कहने में, तुमसे शर्मा जाता है, शब्द निकल नहीं पाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, इसलिए सपनों की रानी ये दिल घबरा जाता है, इसलिए सपनों की रानी दिल घबरा जाता है। सुनकर हमारी ये बातें, सुनकर हमारी ये बातें देवी जी खुश हो जाती हैं, सुनकर हमारी ये बातें देवी जी खुश हो जाती हैं, भावुक मुद्रा दर्शाकर हमको समझाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब हम इसको अपना मानने लगते हैं, इस माया रूपी संसार को अपना मानने लगते हैं, तो संसार हमें समझाता है। कुछ संत हमें समझाते हैं कि शरीर है, आत्मा को समझो, आत्मा जो पहले भी थी, अब भी है, बाद में भी रहेगी, हम तो केवल शरीर चेंज कर रहे हैं। कि सुनकर हमारी ये बातें देवी जी खुश हो जाती हैं, कि सुनकर हमारी ये बातें देवी जी खुश हो जाती हैं, भावुक मुद्रा दर्शाकर हमको वो समझाती हैं, भावुक मुद्रा दर्शाकर हमको वो समझाती हैं। और क्या समझाती हैं कि भोले वाले ओ अनजाने, कि भोले वाले ओ अनजाने, प्यारे से इंसान हो तुम, बुद्धि विकसित हुई नहीं तुम्हारी, सीधे हो नादान हो तुम, विषय वासनाओं में फंसकर तुमने चक्कर खाया है, इसलिए दिल धड़का है और जोरों से घबराया है। सपनों की रानी को पाना किसने तुम्हें सिखाया है, कि सपनों की रानी को पाना किसने तुम्हें सिखाया है, अस्तुहीन दुनिया सपनों की किसने तुम्हें बहकाया है, प्यार हुआ सपने में तुझको, कि प्यार हुआ सपने में तुझको, किसे कैसे इसे निभाएगा, नींद खुलेगी सपना होगा, अकेला तू ही रह जाएगा। एक ये परम सत्य है, जब इस संसी शरीर जो टूटेगा, जब आत्मा इस शरीर को छोड़ के जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, ये शरीर तो यहीं रह जाएगा। कि प्यार हुआ सपने में तुझको कैसे इसे निभाएगा, कि प्यार हुआ सपने में तुझको कैसे इसे निभाएगा, नींद खुलेगी सपना होगा, अकेला तू ही रह जाएगा, नींद खुलेगी सपना होगा, अकेला तू ही रह जाएगा। जाग रे जाग वो भले इंसान, क्यों गहरी नींद में सोता है, इंद्रियों का दास हुआ तू सुंदरी के लिए रोता है, कि इंद्रियों का दास हुआ तो सुंदरी के लिए रोता है, पर नारी में माँ को देख तू, और फिर भी हमें समझाते रहते हैं कि पर नारी में माँ को देख तू, देख बहन और बेटी को, इस मिट्टी का खून है तू, कल सम्मान यहाँ की बेटी को, हर माँ में माँ को देख तू पगले, बल आत्मा का बढ़ जाएगा, हर बहन लगेगी बहन सी प्यारी, दिल ना कभी घबराएगा। यदि ये बातें वो दिल्ली वाले सुन लिए होते, तो आज जो ये कांड होते हैं वो हुए नहीं होते, आज जो ये बलात्कार होते हैं ये हुए नहीं होते। कि हर हर बहन में बहन को देख तू, कि हर माँ में माँ को देख तू पगले, भरा बड़ा बल आत्मा का बढ़ जाएगा, हर बहन लगेगी बहन सी प्यारी, दिल ना कभी घबराएगा, हर बहन लगेगी बहन सी प्यारी, दिल ना कभी घबराएगा। मन ही मन खुश हुए चौबे जी, संतों ने तो हमें समझाया कि आत्मा है ये, आत्मा को छोड़ दो, आत्मा को ही सब समझो, लेकिन हम मानते कहाँ हैं, हम तो इस संसार को ही सब कुछ मान रहे हैं, कि संसार ही सब कुछ है, संसार के बिना कुछ नहीं, फिर भी हम उसी में खोए रहते हैं। कैसे, कि मन ही मन खुश हुए हम तो, कि मन ही मन खुश हुए हम तो, मैं कितना किस्मत वाला हूं, उत्तम विचार नारी से, उत्तम विचार वाली नारी से शादी करने वाला हूं, कि उत्तम विचार वाली नारी से शादी करने वाला हूं। नई साल का प्यारा तोहफा मिला ये सुंदर सपना है, आशा पूरी होगी अब तो, सब कुछ लगता अपना है, उपदेश सुनकर देवी जी तुमने जो ज्ञान बढ़ाया है, इस देश की मपावन भूमि का तुमने सम्मान बढ़ाया है, इस देश की पावन भूमि का तुमने सम्मान बढ़ाया है। एक यही भूमि है जिसको हम माँ कह के पुकारते हैं, कभी नहीं सुना होगा आपने ऑस्ट्रेलिया मम्मी, हॉलैंड पापा, कभी सुना नहीं, पर भारत हमारी माता है, भारत हमारी माता है। कि इस देश की पावन भूमि का तुमने सम्मान बढ़ाया है, संस्कारों में पला बड़ा में मर्यादा में रहता हूं, शादी करने की इच्छा है दिल की तुमसे कहता हूं, कि शादी करने की इच्छा है दिल की तुमसे कहता हूं, जब भी जिस कन्या के संग में, कि जब भी जिस

0: बिना कृष्ण में भय रचाने जाता हूं। कहने का तात्पर्य क्या, आत्मा केवल एक शरीर धारण नहीं करती, कभी किसी शरीर में तो कभी किसी शरीर में, कभी किसी शरीर में तो कभी किसी शरीर में, कि जब भी जिस कन्या के संग में ब्याह रचाने जाता हूं, सैया बनने जाता हूं और भैया बन के आ जाता हूं, सैया बनने जाता हूं और भैया बन के आ जाता हूं। व्याकुल हूं मैं इस संकट से, कि व्याकुल हूं मैं इस संकट से, तुम इतिहास दोहराना ना, तुम ही एक अंतिम आशा हो मुझे छोड़ के जाना ना, कि तुम ही एक अंतिम आशा हो मुझे छोड़ के जाना ना, तुम हो कुंवारी मैं ब्रह्मचारी। कुंवारी का तात्पर्य क्या, कि हम जो है इसी दुनिया को ये समझते हैं ये तो केवल मेरी है और कोई इस पे हक जमा नहीं सकता, कि तुम हो कुंवारी मैं ब्रह्मचारी, तुम हो कुंवारी मैं ब्रह्मचारी, तुमसे आकर्षित होता हूँ, जोड़ी हमारी बड़ी प्यारी बनेगी तुमसे कहता हूँ, बन जाओ सपनों की बन जाओ रानी सपनों की, गल जयमाला डालूंगा जीवन भर का नाता होगा प्यार तुम्हारा पालूंगा, कि जीवन भर का नाता होगा प्यार तुम्हारा पालूंगा। यूं ही आगे बढ़े हम तो, कि यूं ही आगे बढ़े हम तो देवी जी को मनाने को, जब हमको लगने लगता है कि ये पूरा संसार अपना है और अपना हो गया है, तभी हमको कहीं ना कहीं एक झटका लग जाता है, कि यूं ही आगे बढ़े हम तो देवी जी का प्यार पाने को, नींद खुली रह गया अधूरा प्यार सुंदरी का पाने को, नींद खुली रह गया अधूरा प्यार सुंदरी का पाने को, होश में आए माथा पकड़ा, होश में आए माथा पकड़ा, कैसा सुंदर सपना था कितनी प्यारी बहू हमारी, मानो सब कुछ अपना था कितनी प्यारी बहू हमारी, मानो सब कुछ अपना था, अब जब शरीर ये छोड़ दिया आत्मा अपने लोक को चली गई, तब एहसास होता है काश हम भगवान का जाप कर लेते, काश हम ईश्वर के बारे में सोच लेते।
1: अभी आपने योगदत्त शर्मा के स्वर में उनका यह स्वरचित काव्य पाठ सुना और अब कार्यक्रम में आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युवावाणी FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 6 बजने को हैं, अब वक्त है हिंदी समाचारों का। कृपया कुछ पल समाचारों की प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो ने आज स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या, मिस्र, यूक्रेन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। सरकार ने कहा है कि सभी तेल

0: उत्पादक संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ पूरी क्षमता से काम कर रहे हैं और पेट्रोल तथा डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा गया है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को खुदरा दुकानों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
1: भारत सरकार ने 11 तारीख को एक गजट नोटिफिकेशन दिया है और उसके अनुसार एक आदमी को एक दिन में 200 लीटर डीजल देने की बात की गई है और इसके अलावा इंडस्ट्रियल और जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उनसे ये कहा गया है कि वो अपनी आवश्यकता का डीजल अपने कंज्यूमर पंप से लें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी ले जाने वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। अमरीका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1% गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 40% अधिक है। रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को मंजूरी दे दी है। 48 ब्लॉक खंडों को शामिल करते हुए कवच सुरक्षा प्रणाली के चौथे संस्करण को 598 किलोमीटर के मार्ग पर लगाया जाएगा। उधर अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 736 अंक बढ़कर 76,264 पर बंद हुआ। उधर निफ्टी 231 अंक बढ़कर 23,854 दर्ज हुआ। अमेरिका में फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज स्पेन का सामना काबो वर्डे से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। संध्या 7:20 पर होंगे प्रादेशिक समाचार। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद संध्या 6:15 पर आप सुनेंगे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मिट्टी की सेहत और मेड़बंदी। इसी कार्यक्रम में एक और चर्चा होगी बीजोपचार का महत्व। चर्चा करेंगी ममता रानी। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता जून के द्वितीय पखवाड़े में किए जाने वाले कृषि कार्य। विशेषज्ञ वार्ताकार होंगे डॉक्टर फूल सिंह। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे ओबी पर आधारित धान की सीधी बिजाई और उपाई में खरपतवार प्रबंधन। डॉक्टर खजान सिंह से दिलीप यादव की बातचीत। साथ ही हमारे श्रोता आनंद ले सकते हैं इस कार्यक्रम में ब्रज लोकगीतों का। शाम 6:45 पर आप सुनेंगे भक्ति परक कार्यक्रम संध्या वंदन।

शाम 7:05 पर आप सुनेंगे ब्रज साहित्य कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे ब्रज वार्ता, ब्रज साहित्य में सुदामा। वार्ताकार होंगे डॉक्टर गोपाल प्रसाद पाठक। संध्या 7:31 पर आप सुनेंगे संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी।

रात 8 बजे आप सुनेंगे हमारी विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर। देश ज्ञान प्रसारित किए जाएंगे रात्रि 8:35 पर। रात 9:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने।

आज रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम करें योग रहें निरोग। आलेख जयसिंह का होगा और वाचन देवराज कृष्ण दीक्षित और संजय सारस्वत का। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। इसमें आज हम आपको सुनवाएंगे विदुषी अनिता सेन का ख्याल गायन राग यमन में। तबले पर आपके साथ संगत करेंगे अब्दुल सलाम। रात 11 बजे होंगे समाचार हिंदी में। 11:05 पर आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में। रात्रि 11:10 पर समापन होगा हमारी आज की इस दूसरी सभा का।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आरंभ हुए है ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन को हमारी राम राम। भैया देखो मौसम को मिजाज तो कैसा बढ़िया हुआ जाता है, और नेक तुम्हें पता है कैसा चल रहा है, वो तो सब ये पता है दिख रहा है भैया। और ऐसे में तो का है हमारे किसान भैया को काम तो पूरे है, का मेहनत को है और चल तो ही रहे है, चाहे बीज की बात कर ले हो, पानी है खेत की, माटी की बात करो। देखो भैया जाको स्वास्थ्य बढ़िया हो माटी को खेत की को, तो वहाँ में खेती बढ़िया हो है। बाकी लें जाँचो जरूरी है, जाते पोषक तत्व की जानकारी है जाते हो। एक बात और है कि जैसे अब पानी आ रहा है मे बरस गो, तो वहाँ में जो पोषक तत्व तो कहाँ वो बह जाएंगे, खरपतवार अगर बाग खेत में रह गए जम रहे हैं बीज होते हैं तो दूसरे में पहुंच जाएंगे, जाके लें का करना है भैया। अरे कोई कैमरा थोड़ी लगाना है के बाद में का कहते पता चल जाएगी। अरे बाकी का है तो वही पुराना हमें कार्य करना, कौन सो मेड़बंदी को। हाँ जब ही भैया आपको ऐसा लगे कि खेत की है का मेड़बंदी कमजोर रह गई है, तो वह मेड़बंदी को चारों तरफ से खेत की को बनाए के रखो, जाते आपकी जो फसल है बाकी जो माटी है जो आप लेंगे या आपने खड़ी करके बह रखी है तो हम बहुत कछु असर पड़ते है। अगर आपने वहां में पानी दे दो है और मेड़बंदी ना है तो दूसरे के खेत में दूसरी फसल में नुकसान ना कर जावे गो। बिल्कुल सही बात है, कहाँ सुनी हुई है जाते है ऐसे तो गावन में हमारे में। तो भैया हम तो जी कहते हैं कि खेत की मेड़बंदी जरूरी है, ध्यान रखो। और मिट्टी की सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि जो हमारे पोषक तत्व हैं वो खेत के खेत में बने रहते हैं।

0: और तो और की मतलब मेड़बंदी करवे थे तो जे मेड़न के सारे नेकात कछु कोई एकाए कोई बेल है कोई खाइवे पीवे की चीज है साग सब्जी बेलन की पे डार दियो कोई फसल खड़ी है तो वो घर की साग सब्जी काम हुआ जाते हैं घर की खेती की सब्जी मिल जाते। तो भैया हम तो आपसे ये कहें कि आप अपने खेत की जो माटी है वाको विशेष ध्यान रखियो और बाकी का जो मेड़बंदी भी करियो समय के अनुसार सारे कार्य करो। और अब देखो खेत के में अब हमने ऐसा देखो है कि पहले रोपाई करें धान की बड़ो खर्चा आवे हो पर अब तो सीधी बिजाई है जाते भैया बहुत बढ़िया है जाते लागत कम आवे फसल बढ़िया होवे। तो अपने क्षेत्र में ऐसे बहुत ही ज़्यादा हमारे कुशल हैं विशेषज्ञ हैं और वो हमें जानकारी दे देते हैं हम और आप लेंगे जानकारी धान की खेती की बिजाई और रोपाई में खरपतवार प्रबंधन डॉक्टर खजान सिंह और सुधीर अग्रवाल से बातचीत है दिलीप यादव की सुनो भैया।
1: किसान भैया, धान की सीधी बुवाई मथुरा जनपद में काफी अच्छी तादाद में हैवे लगी है। किसान भैया, धान की सीधी बिजाई आप सब करवे लगे हो, लेकिन या में विशेष सावधानी की जरूरत हुए है, और सावधानी यह बात की कि खरपतवार नियंत्रण कैसे रखो जाए। देखो, सबसे जरूरी चीज है कि दो तरीका हुआ खरपतवार को नियंत्रित करवे के, एक प्री इमरजेंस और एक पोस्ट इमरजेंस, यानी कि एक जहां में दवाई बुवाई के तुरंत बाद 72 घंटा के भीतर भीतर छिड़कनी हो, और दूसरो जब खरपतवार 2 से 4 पत्ता को है जाए, यानी कि 20-25 दिन की फसल आपकी है जाए। तब कोई भी नई तकनीकी DSR जो विधि है या सीधी बुवाई की विधि है या गेहूं की तरह मशीन से धान की बुवाई की जो विधि है बहुत अच्छी है, बहुत उपयोगी है। या में पानी की बचत होए, लेबर की बचत होए, धन की बचत होए, लेकिन यह बचत के संग ही हमको ये ध्यान रखना है कि हम अपनी फसल में खरपतवार नियंत्रण कम से कम लागत में या कीमत में कैसे करें। तो एक तरीका तो कोनोवेटर जैसे यंत्र में है, क्योंकि या में 9 इंच बाई 9 इंच पे कूण में बीज डले है और कूण से कूण की दूरी भी 9 इंच ही रहे और बीज से बीज की दूरी भी। तो अगर आपको कोनोवेटर जैसे यंत्र मिल जाए तो आप पानी अगर हल्को है खेत में तो बाय घुमाते चले जाओ और जो खरपतवार हैं वो मिट्टी में मिलते हुए चले जाएं। लेकिन जो किसान भैया धान लगा रहे हैं या बो रहे हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि धान की बिजाई के, यानी आपने धान की फसल बोई और बोवे के बाद में 72 घंटा के भीतर भीतर पेंडामेथालिन जैसे कई साल्ट में कई दवाइयां में उनको छिड़काव जरूर करना चाहिए। तो ये जो छिड़काव है, छिड़काव में भी विशेष सावधानी की जरूरत है। वैज्ञानिक जो संस्तुति करें वो ये करें कि हम जो स्प्रे मशीन है बाकू लेके उल्टे चले, यानी कि दवा को हमने जहां छिड़काव किया है वह जगह पे हमारे पैर नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि जहां पैर पड़ेंगे या दवाई से एक परत बने और वो परत को काम यही हो कि जैसे ही कोई अंकुर धान को छोड़ के बाकी कोई खरपतवार को अंकुर जैसे ही जमीन से बाहर निकले ये दवाई तुरंत वाकु मार दे है। तो आपने अगर आप सीधे चले सीधे मुंह करके तो जहां आपने छिड़काव किया वहां आपके पैर पड़ेंगे, और पैर पड़ेंगे तो बाई जगह पे वो लेयर टूट जाएगी, यानी दवाई की परत टूट जाएगी, तो उन पैरन की जगह पे भी खरपतवार उगेगा। तो जो जानकार हैं जो कृषि रक्षा रसायन बेचे हैं उनको मानवो है कि इन दवाई के यानी प्री इमरजेंस वाली जो दवाई है इनसे 40 से 50% तक ही खरपतवार नियंत्रण हो है। बाकी और साल्ट जो आप लोग सब जानो ही हो कि 20-25 दिन बाद जो छिड़के जाए हैं उन साल्टन या उन दवाई से आप अपने खरपतवार को नियंत्रण कर सको हो। लेकिन चूंकि सीधी बुवाई में 800-700 रुपया बीघे को खर्चा आवे और धान की रोपाई में 3-3.5 हजार रुपया तो लेबर ले बाके अलावा हमें पानी भर के खड़ा रखना पड़े, यानी 5-6 हजार रुपया बीघे ते कम में हमारी धान की रोपाई न है पावे। तो अगर मैं ये कहूँ कि आप अपने खेत में खरपतवार नियंत्रण को कोई दवाई भी ना डाल रहे तो आप हल्की वाली जो फवड़िया जाकू कहें फावड़े से छोटी बाकू लेके आप अपनी जो फसल है बाकी हल्की हल्की निराई हल्की हल्की गोद नुमा लगा के खरपतवार नियंत्रण करोगे तो ज्यादा फसल भी अच्छी होगी और आपकी फसल स्वस्थ भी रहेगी। तो ये तरीका सीधी बिजाई में खरपतवार नियंत्रण को है। और अब हमें जानकारी दे रहे हैं धान की रोपाई के बाद जो खरपतवार नियंत्रण है वाकू कैसे करें, वो जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर खजान सिंह।
2: खरपतवारों के नियंत्रण हेतु प्री इमरजेंस हर्बिसाइड जैसे ब्यूटाक्लोर प्रेटिलाक्लोर की 1 से 1.5 किलोग्राम सक्रिय तत्व को पौध रोपाई के 7 दिन बाद छिड़काव करें। प्रोपेनिल का छिड़काव पौध रोपाई के 15 दिन बाद जब खरपतवार 2-3 पत्तियों की अवस्था में हो करने से अधिकतर खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। धान की फसल में प्रभावी जल प्रबंधन भी खरपतवार नियंत्रण में सहायक होता है।

0: खेत में लगातार 5 सेंटीमीटर पानी का स्तर बना रहने से खरपतवार की समस्या में कमी आती है तथा खरपतवार नाशी की दक्षता भी बढ़ती है। खरपतवारों की उचित एवं समय पर नियंत्रण होने से दूसरे आदान जैसे उर्वरकों की दक्षता में भी वृद्धि होती है, जिससे उपज में इजाफा होता है। धान की रोपाई वाली फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी की लिक्विड फॉर्मुलेशन को 150 किलो रेत में मिलाकर समान रूप से छिटक दें। द्रव फॉर्मुलेशन को रेत में मिलाकर छिड़काव दानेदार फॉर्मुलेशन के समान उपयोगी होता है तथा दाने की अपेक्षा अधिक इकोनॉमिकल होता है।
1: तो किसान भैया, धान की सीधी बुवाई कर रहे हैं या रोपाई कर रहे हैं, दोनों स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण चीज हो धान में खरपतवार नियंत्रण। और हमारे किसान भैया रात दिन, यानी धान ऐसी फसल है जबकि आरंभ से लेकर अंत तक अपने खेत में ही डटे और जमे रहे, तो आप सबको इन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी फसल को अच्छी रखें, स्वस्थ रखें, निरोगी रखें। तो रोपाई के बाद के जो दवा है उनकी जानकारी ज्यादातर भैया ने है, कछु टपका वाली दवाई डाले हैं, कछु बाद में जो दवाई आमे हैं नॉमनी गोल्ड टाइप की उनको प्रयोग करे हैं। तो खरपतवार नियंत्रण पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आप अपनी फसल में जो भी उर्वरक डाले हैं, चाहे डीएपी डाल रहे हैं, जिंक डाल रहे हैं, बाकी ज्यादातर मात्रा को ये खरपतवार खाए जाए हैं। तो आपको अगर अच्छी फसल लेनी है, अच्छा उत्पादन लेना है, तो खरपतवार को मारने पे विशेष ध्यान दें। तो हमारे संग हैं प्रगतिशील किसान सुधीर अग्रवाल, आओ इनसे भी जाने कि खरपतवार नियंत्रण को धान की रुपाई के बाद खरपतवार नियंत्रण को कैसे करें।
2: पौध लगाने के 3 दिन के अंदर जो सस्ते रसायने पहले से आती हैं उनको डालने, जैसे क्या कहते हैं ब्यूटाकोलोर है या मचेटी है, ये 3 दिन के अंदर डालने को। अच्छा। यानी आज रुपाई की 3 दिन होने तक हमको इन रसायनों को डालना पड़ेगा। अब कुछ ऐसे रसायन आ गए हैं कि जो हमको 40-45 दिन पे लगाने, उसमें हमको विशेष ध्यान ये रखना पड़ता है कि हम पानी देना बंद करना पड़ेगा, जमीन इतनी सूख जानी चाहिए उसमें पैर नहीं। जब हम उसका स्प्रे करेंगे, जैसे वो एक जो है आया है नॉमनी गोल्ड, जब हम उसका स्प्रे करेंगे तो जमीन गीली नहीं रहनी चाहिए, और उसका स्प्रे करने के 24 घंटे बाद या 48 घंटे बाद फिर खेत में पानी भर दें तो सब खरपतवार समाप्त।
1: तो किसान भैया, ये रही जानकारी धान में खरपतवार प्रबंधन विषय पे, और निश्चित रूप से ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और आपके हर ब्लॉक पे कृषि रक्षा इकाई है, आप वहाँ जाके संपर्क कर सको, तो तकनीकी जानकारी के संग में वहाँ अनुदान पे दवा भी आपको मिल सके है।
3: भैया, आप ले रहे हैं जानकारी, बातचीत सुन रहे धान की सीधी बिजाई और रोपाई में खरपतवार प्रबंधन। डॉक्टर खजान सिंह और सुधीर अग्रवाल ने दी जानकारी और इनसे बातचीत हती दिलीप यादव की। तो भैया, अब तो आप समझ गए होंगे कि मतलब जो हमें सीधी बिजाई में इतनो करके जो रोपाई है जाएगी, वहाँ में हमारी बचत भी है जाएगी, और बचत है जाएगी तो फिर क्या कहते हैं, हमें लाभ ही लाभ होगा ना। जब लाभ है जाएगा तो हमें फिर अपने कछु ठाकुर जी के ले कछु सोचें और कर देवे हैं, और हम हैं ब्रजवासी, और जब ब्रजवासी की हमारी जो है का इष्ट हैं वो है यमुना महारानी और श्यामा श्याम की पटरानी हैं, तो उनको कछु फिर हम याद कर ले हैं, गुनगुनाए उठे हैं और गाए उठे हैं। आपको सुनवा में है शालिनी शर्मा को गायो भयो ये लोकगीत।

शालिनी शर्मा को गायो भयो आपने सुनो ये लोग गीत कि यमुना महारानी को तो दरअसल इतना लुभावनो और सुहावनो हती है सब।

0: सबको आनंदित कर दिए हैं। और हमारे किसान भैया तो जहाँ उन्हें है का सिंचाई और जल की बात आवे ना तो वो बहुत ही खुश है जामे। कैसे कि अब जो जून को महीना चल रो है जामे उन्हें कहाँ कृषि कार्य करने हैं भैयाओ, या अकेले पतो है आपको कहाँ करना। अरे हमें ना कछु पतो और ना आपको पतो, हमें तो बस विशेषज्ञ जानकारी देंगे, उनकी सलाहते कार्य करेंगे और आगे बढ़ेंगे किसान भैया को। तो और हमारा यही उद्देश्य है आपको, तभी हम सफल रह जाएंगे। तो अब चल रहा महीना जून को, जून के द्वितीय पखवाड़े में किए जाने वाले कृषि कार्य डॉक्टर विशेषज्ञ हैं फूल सिंह, तो भैया आपको दे रहे हैं ये जानकारी, सुनो।
1: किसान भाइयों नमस्कार। बंधुओं, आप द्वारा अगर मृदा की जांच नहीं कराई गई है तो पहले खेत की मृदा की जांच अवश्य कराएं, जिससे खेत की मृदा का प्रकार, उसकी प्रकृति, बोए जाने वाली फसल व उसमें दिए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा का सही निर्धारण किया जा सके। इस पखवाड़े में पूर्व में बोई गई जायद, मूंग आदि की फसलों की कटाई करें व मौसम की प्रतिकूलता को देखते हुए काटी गई फसल के बंडल बनाकर सुरक्षित स्थान पर रख लें। फसल के अवशेषों को मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर खेत में दबा दें। बाकी खेत की ग्रीष्मकालीन जुताई नहीं की गई हो तो एक गहरी जुताई करें। कृषक बंधुओं, जिनके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो पलेवा देकर अरहर फसल की बुवाई करें। इसके लिए उन्नत किस्में ICPL 87, प्रभात, मानक व UPS 120 आदि का चुनाव करें। बाजरे की खाद्यान्न फसल के लिए खेत की तैयारी कर उपयुक्त संकर किस्मों का चयन कर बोएं, जिनमें MP 171, ICMH 356, MH 179, MHB 60 व 67, RHB 90, ICTP 8203 व WCC 75 प्रमुख हैं। अगेती ज्वार की फसल की बुवाई के लिए उपयुक्त किस्म CSH 5-6 व CSH 9, SPB 96-245 व SPB 475 एवं COFS 29 बहुकाटे वाली किस्में हैं। मक्का फसल की बुवाई के लिए उन्नत व संकर किस्में गंगा 2, गंगा 11 तथा संकुल माही धवल, जो मध्यम अवधि में पकती है अर्थात वर्षा आधारित किस्म है, जैसे नवजोत व दक्कन 103 प्रमुख हैं, जबकि अगेती किस्में माही कंचन, अगेती 76, PEHM 1 व 2 प्रमुख हैं। ये पखवाड़ा ग्वार की अगेती व अधिक उपज देने वाली किस्मों को बोने का उचित समय है। पलेवा करके RGC 986, 1038 व RGC 197 व 471 व HG 87 बोएं। किसान भाइयों को मानसून की आगे की वर्षा का लाभ लेने के लिए इस पखवाड़े में मूंगफली का बोना लाभदायक है, जिसमें फैलने वाली रेतीली व दोमट मिट्टी के लिए किस्म N 335, HNG 10, RG 382 व 425 किस्म मुख्य हैं। अर्धविस्तारी किस्मों की बुवाई के लिए RG 141, TG 37-A व गिरनार हैं। झुमका वाली किस्मों में AK 141, JL 24, चित्रा व चंद्रा का चुनाव करें। मूंगफली को गलकट रोग से बचाने के लिए बीटावैक्स पाउडर, फफूंदी नाशक 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज व सफेद लट के प्रकोप से बचाने के लिए 2 ग्राम क्लोथिए निडीन 50 WDG कीटनाशक दवा से बुवाई से पूर्व बीज उपचारित कर बोएं। धान की नर्सरी में पौधा तैयार करने के लिए उन्नत किस्में जैसे पंत संकर 1, PHB 71, नरेंद्र संकर धान 1, MGR 1, पूसा 1121, पूसा सुगंधा, चंबल व माही सुगंधा और जया क्षेत्र के लिए उपयुक्त हैं। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में संकर धान रोपने के लिए 700 से 800 वर्ग मीटर नर्सरी क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। गन्ने की खड़ी फसल में सिंचाई कर शेष 50 किलोग्राम नत्रजन को 1 से 10 किलोग्राम यूरिया के माध्यम से देवें व गन्ने के पौधों के पास मिट्टी चढ़ावें। कपास की फसल में आवश्यकता के अनुसार सिंचाई करें। साधारणतः ध्यान रखें कि पहली सिंचाई बुवाई के 20 से 30 दिन पश्चात करने पर फसल की जड़ें

जमीन में गहरी जाती हैं। इस मौसम में पशुओं को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा उपलब्ध रहे, इसके लिए किसान भाइयों को इस पखवाड़े में चारा फसलें जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया, ग्वार व बहुवर्षीय घासें बोनी चाहिए। ग्वार की हरे चारे वाली किस्में एमपी चरी, पूसा चरी 6, हरा सोना, पीसी 23, एसएसजी 988 व एसएसजी 59-3 जैसी उपयुक्त किस्में हैं। हरे चारे के लिए बाजरा की किस्में राज बाजरा चरी 2, जाइंट बाजरा, अभी का बाजरा चरी 19 और को 8 किस्मों को ही बोएं। हरे चारे के लिए मक्का की उन्नत किस्में अफ्रीकन टॉल, मोती कंपोजिट, J1006 व गंगा 7 बोएं। हरे चारे की पौष्टिकता बनी रहे और मुख्य चारों के साथ पशु को मिलाकर खिलाया जा सके, इसके लिए ग्वार व लोबिया की फसलों का चुनाव करें। ग्वार की उपयुक्त किस्म RG 986, 471 बुंदेल ग्वार 1, सिरसा 2, HFG 156 प्रमुख किस्मों का चुनाव करें। चारे के लिए लोबिया की मुख्य किस्में बुंदेल लोबिया 1 व बुंदेल लोबिया 2, UPC 287, UPC 618, सिरसा 10 एवं UPC 622 को बोएं। सब्जी वाली फसलें टमाटर, मिर्च, बैंगन की पौध की तैयारी करने का उचित समय है। टमाटर की उन्नत किस्में पूसा रूबी, पूसा अर्ली ड्वार्फ, पूसा 120, अर्का विकास, कर्नाटक हाइब्रिड, पूसा हाइब्रिड 1 व पूसा हाइब्रिड 2 बोएं। मसाले वाली मिर्च की किस्में पूसा ज्वाला, पंत सी 1 व 2, सी 960, एनपी 46, जी 3 व कल्याणपुर 1 है। जबकि शिमला मिर्च व सलाद के लिए एलो वंडर, कैलिफोर्निया वंडर, बुलनोज व चाइनीज जाइंट बोने का उचित समय है। किसान बंधुओं को इन फसलों की रुपाई के लिए खेत की तैयारी में अंतिम जुताई के पूर्व 150 से 250 कुंटल गोबर की खाद प्रति हेक्टर की दर से खेत में डालें व इसके अतिरिक्त 75 किलोग्राम नत्रजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस व 45 किलोग्राम पोटास भी भूमि में मिलाएं। भिंडी की बिजाई के लिए उचित समय है उन्नत किस्में पूसा साबनी, पूसा मखवली, परवनी, क्रांति, अरकाव है, अरका अनामिका चुने। मध्यकालीन फूलगोभी की पौध तैयार करने का भी उचित समय है। इम्प्रूव जापानीज, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हिम, ज्योति जैसी उन्नत किस्में बोएं। खरीफ प्याज की फसल का बीज द्वारा पौध तैयार करने का भी उचित समय है। इसके लिए N53 एग्री फाउंड डार्क रेड ही खरीफ प्याज की किस्में हैं, उनको ही बोएं। किसान भाइयों को 1 हेक्टर क्षेत्रफल पर पौध लगाने के लिए 10 किलोग्राम शुद्ध व नए बीज की आवश्यकता होगी। औषधीय पौधे जैसे सफ़ेद मूसली की बुवाई करें। 1 हेक्टर क्षेत्रफल में 400 से 600 किलोग्राम गूदेदार सफ़ेद मूसली की जड़ों की आवश्यकता होगी। इसके लिए गूदेदार जड़ जिसमें स्टेम डिस्क का कुछ अंश ऊपरी सिरे पर लगा हो का ही चयन करें। अगेती मूली की खेती के लिए पूसा चेत की किस्म का चुनाव करें। अरबी शंकर, बड़ी चौलाई, पालक, पत्तीदार सब्जियों को ही बोने का भी इस पखवाड़े में उचित समय है। आमले के बगीचे में बोरेक्स व जिंक सल्फेट का 0.5% घोल बनाकर छिड़काव शीघ्र करें। बगीचों में फलदार पौधों को रोपने के लिए निर्धारित आकार के गड्ढे खोदें जिसमें अनार व आंवला के लिए 60x60x60 सेंटीमीटर, अमरूद व नींबू के लिए 90x90x90 सेंटीमीटर, आम व बेर के लिए 1x1x1 मीटर के आकार के गड्ढे खोदकर 15 दिन तक धूप में तपाएं। इसके बाद गड्ढों में गोबर की खाद अमरूद, आम व नींबू के लिए 25 किलो, अनार व आमले के लिए 15 से 20 किलो व सिंगल सुपर फास्फेट 1 किलो प्रति गड्ढा मिट्टी में मिलाकर मिश्रण बनाएं तथा उसमें प्रति गड्ढा 50 से 100 ग्राम कुनालफास 1.5% चूर्ण को मिलाकर गड्ढों को भरें और पौधे लगाएं। जुताई किए गए खेतों के ढेले फोड़ने, दू को नष्ट करने व समतल करने के लिए रोटावेटर यंत्र का प्रयोग करें। खेतों को समान मात्रा में समतल करने के लिए

एडेड लैंड लेवलर यंत्र का उपयोग करें, जिससे प्लस माइनस 2 सेंटीमीटर तक खेत का समतलीकरण किया जा सकता है। समय में समतल किए गए खेतों में मेड़ बनाकर उचित स्तर पर नाली लगाएं, जिससे कूड़ का पानी कूड़ में, खेत का पानी खेत में संरक्षित हो सके।

भैया, अभी आप जानकारी ले रहे जून के द्वितीय पखवाड़े में किए जाने वाले कृषि कार्य, डॉक्टर फूल सिंह विशेषज्ञ आपको दे रहे हैं जानकारी। और भैयाओं, मैं आपको बताऊं कि आप जो खेत में माटी की और पानी की आप बात कर ले हैं, बात हो वह बीज की, यानी कि बीज के लिए हमें बहुत सतर्कता रखनी है। बीज हमें घुनो सड़ो और सीलो भयो ना लेनो है, विश्वसनीय दुकान से खरीदनो है। और सर्वप्रथम बाकू हम उपचारित करके ही बीज को बोएं, जैसे कहा हो वो आपकी जो फसल है वा में गुणवत्ता आवेगी और लागत कम आएगी, उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। तो जा बात पे आप विशेष ध्यान दो कि जो आप बीज को फसल में बैविक काजा तैयार कर रहे हैं ना, वाको पहले आप उपचारित करके वाको सुधार जरूर कर लियो। सुधार बहुत ज़रूरी है, जैसे आपको उत्पादन अच्छा मिले, लागत कम आवेगी। और बात ये है कि आप इन बातन को तो विशेष ध्यान रखें, और फिर एक बात तो और है कि वो ये है कि अपनों और अपने स्वास्थ्य को खूब ध्यान रखो, अपने परिवार के स्वास्थ्य को ध्यान रखो, क्योंकि देखो मौसम कछु ऐसो ही चल रहा है, ऐसो ही मिजाज है मौसम को। तो अब आपको दे दो मौसम की जानकारी। अधिकतम तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और मौसम विभाग के अनुसार हल्की के मध्य बारिश और आंधी तूफान और तेज हवा की संभावना बनी हुई है। हम तो ये कहें भैया, मौसम के अनुसार चलो, समय के अनुसार चलो, और घड़ी की सुई तो हमें बताती रहे, आपको भी बतावे है कि जो कार्यक्रम हमारो है वो समय में बंद हो गयो है। तो अब ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम को समय हुई है संपन्न। कार्यक्रम सुनवे वाले सभी भैया बहनन को हमारी राम राम।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। अभी सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम संध्या वंदन।

ये तो लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार फिल्म थी राधा का संगम। इसी के साथ ही भक्ति परक कार्यक्रम संध्या वंदन अब संपन्न होता है।

0: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। ब्रज साहित्य कार्यक्रम, यह कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा में ब्रज वार्ता, ब्रज साहित्य में सुधामा। वार्ताकार हैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद पाठक।
1: ब्रज साहित्य में भगवान कृष्ण के अनेक मित्रन को एवं बाल सखान को वर्णन मिले है। श्री कृष्ण के बिन मित्रन में एवं बाल सखान में सुधामा को विशेष स्थान मानो गयो है। अध्ययन समाप्त करके ब्राह्मण कर्म करते हुए सुधामा विदर्भ देश में बस गए। जिस सुधामा विद्या निधान, शांत चित्त एवं जितेंद्री तथा परम संतोषी विप्र के रूप में जाने गए हैं। कविवर दाऊदयाल ने अपने महाकाव्य में सुधामा को परिचय या प्रकार दियो है। एक सखा जदु नाह करो रयो सुदामा नाम, जितेन्द्रिय अति शांत चित सब गुण विद्या धाम। सुदामा के गुणन को बखान करते हुए कविवर

अति सहाय विप्र सुदामा विद्यान होते भयु दरिद्रता को भोगते रहे और भिक्षा मांगने के अपनों अपने परिवार को निर्वाह करते रहे। इनकी दरिद्रता को वर्णन करते हुए कविवर दादू जुगल किशोर अपने काव्य ग्रंथ सुदामा चरित में कहे हैं।

असह्य भयो दिन घाम निसा अति शीत सतावे। सुदामा की पत्नी सुशीला ने अपने पते अनेकन दिवस श्री कृष्ण की प्रभुता दयालता एवं भक्त वत्सलता सुनी ही सो अपने परिवार की दर्दता दूर करवे को श्री कृष्ण के पास द्वारका जाइवे को अपने पति सुदामा ते कहवे लगी। या प्रसंग को वर्णन महात्मा सूरदास ने हूँ कियो है। सूर सारावली में वे कहे हैं, एक दिना एक वेक प्रभक्त मति हरि को सखा कहा, अति दरिद्र दुखित जब जानी तब पत्नी समझाओ, जाहु नाह तुम पुरी द्वारिका कृष्ण चंद्र के पास, जिनकी दरस परस करुणाति दुख दारिद्र को नास। कविवर नरोत्तम दास हो सुशीला को सुदामा को कांता सम्मत परामर्श या प्रकार ते कहे हैं, फाटे पट टूटी छान खायो भीख मांग आन, बिगा यज्ञ विमुख रहत देव पित्रयी, वे हैं दीन बंधु दुखी देख के दयाल, वे हैं देहें कछु भलो सो हो जानत अगत्री, द्वारका लो जात पिय इति अलसात तुम काहे को लजात भई कौन सी विचित्री, जो पै सब जन्म दरिद्र ही सतायो तो पै कौन काज आई है कृपा निधि की मित्री। अपनी अर्धांगिनी के परामर्श को सुन गए सुदामा सोचवे लगे कि मैं कछु न मांगू तो दर्शन को लाभ तो मुकु मिलेगो ही, किंतु दर्शन हेतु चलवे ते पहले कछु भेंट हु हाथ में होनी चाहिए। श्री कृष्ण को भेंट को प्रस्ताव सुदामा ने रखो ही हो सो इनकी पत्नी परोसते चार मुट्ठी चावल ले आई। या प्रसंग को श्री कृष्ण चरित मानस के प्रणेता कवि दाऊदयाल या प्रकार ते कहे हैं, पाए न मुनि जे बहुत तप ते दर्शन में पाऊं, पर गवनो हरे पाहे तो भेंट काह ले जाऊं। सुदामा पत्नी ते बोले, सुमखी देव वस्तु अस कोई हरे चरणन धरे हो मैं जोई, बोली तिय घर मह कछु नाही लाभ जाए परोसन पाही, अस कई द्रुत परोस मह जाई चार मोष्ट का तंडुल लाई, जीरन बसन बांध सोई दीने चली बे प्रजज कत कर लीने। अंततः अपनी अर्धांगिनी सुशीला की प्रेरणा एवं आग्रह के अधीन वैके धन की कामना लेके सुदामा द्वारकाधीश श्री कृष्ण के द्वार पर जाए पहुंचे। द्वारका नगरी को सौंदर्य देख के द्विजवर सुदामा की आंखें खुली की खुली रह गईं। दादू जुगल किशोर अपनी रचना में या प्रसंग को वर्णन कर रहे हैं, कंचन राश बिलोकत ही द्विज भूल गयो तन की ममता को, देखें कहूं देखें कहूं।

कौन सुने पर आज नहीं इनकी समता को। श्री कृष्ण ने सुदामा के आगमन को समाचार सुनियो और धाय के सुदामा को स्वागत कियो। सुदामा को अपने राजमहल में बैठा के वाकी आत्मीयता ते सेवा करते हुए श्री कृष्ण ने अपने आंसू ते सुदामा के चरण धोए। या प्रसंग को कविश्रेष्ठ नरोत्तम दास ने या प्रकार ते कहो है।

भगत होए अपने अश्रुपातन ते चरण धोवे के पश्चात श्री कृष्ण जब जल लेके विप्रवर के चरण धोए तथा चरणन की धूमन अपने शीश पर चढ़ाई माला पान चवन आदि ते सुदामा की अनेकन सेवा करी। या दृश्य को वर्णन साहित्यकार दाऊ दयाल गुप्त ने कियो है। दुजले जाए पलंग बैठारे पुनः प्रभु निज कर चरण पखारे चरणोदक निज शीश चढ़ाने दिव्य गंध ते अंगल पानी पहुपन माल

आवन लागी। सुदामा ने अपनी पत्नी के दिए भए चावल अपनी कांख में छिपाए रखे है, सगुचाए गए प्रभु को भेंट नाए की नहीं। श्री कृष्ण चावरन को देख लियो, या प्रसंग को कई बार नरोत्तम दास या प्रकार ते कहे। आगे चना गुरु मात दए ते,

आप रहे तुम खोलत नाए सुधारस भीने पाछले बाने अजौन तजी तुम तैसे ही भावी के तंदुल कीने। सुदामा के सहपाठी एवं सखा श्री कृष्ण ने सुदामा के बगलते चावल की पोटरी खींच ली और मुट्ठी भर भर के खाए हुए लग गई। श्री कृष्ण दो मुट्ठी तंदुर ही खाए पाए है, तीसरी मुट्ठी खाए को भरी ही हती तभी पटरानी रुक्मणी ने श्री कृष्ण को हाथ पकड़ लियो। या प्रसंग को नरोत्तम दास या प्रकार ते कहे हैं।

0: कारी। सुदामा ने श्री कृष्ण दे सब कछु पाए लियो, किंतु प्रातः प्रस्थान की वेला में सुदामा प्रभु संपदा को अनुभव न कर पाए। सुदामा के द्वारका ते प्रस्थान की चर्चा करते हुए महात्मा सूरदास कहे हैं, भोर भये उठ चली भवन को हर कछु वेना दीन, ताको हर्ष शोक कछु मन में दुज छिन हो न कीन। या प्रकार ते सुदामा की अनेक स्थान पर चर्चा की गई है। जब तक यह धरातल पर भगवान श्री कृष्ण को नाम रहेगा, तब तक विप्र सुदामा को नाम या संसार में चर्चा को विषय बने रहेगा।
1: अब भाई आपने जो ब्रज वार्ता सुनी, ब्रज साहित्य में सुदामा, वार्ताकार है डॉक्टर गोपाल प्रसाद पाठक। और अब ये के संग आज को ब्रज साहित्य कार्यक्रम संपन्न हुए है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किरदार चाहिए?
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
0: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किरदार।
2: आरबीआई कहता है
3: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
4: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
5: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र, 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह। प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जन भागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से शुरू हो गई हैं। नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश भर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट घरेलू संचालन का हब बनेगा।
6: ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशन के लिए हब बनेगा और खास तौर पे यहाँ एरोट्रोपोलिस का मॉडल हमने इस्तेमाल किया। आप देखेंगे तो एशिया का ही सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक हमारे ये जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। तो आगे जाकर बहुत ही संभावना यहाँ पे है, नेटवर्क बढ़ेगा, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
3: इस पहली उड़ान से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसानों को स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ लखनऊ भेजा गया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से संवाद करते हुए सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के प्रतिबद्ध है और इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।
7: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।

0: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज लखनऊ, बेंगलुरू, हैदराबाद और अमृतसर के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। 1 जुलाई के बाद 16 शहरों के लिए नियमित उड़ानें संचालित होंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे समाज के सभी पक्षों को जोड़कर एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में रामभाव महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने आयोजन के उद्देश्य और महत्व की जानकारी दी। इस सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स एक साथ एक मंच पर जुटे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। केंद्र सरकार की इन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आज से 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को हवा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। 12 साल पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से शुरू हुआ। श्री मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली। भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर के संवर्धन और स्वस्थ जीवन शैली के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अयोध्या में श्री राम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र

0: ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
1: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। दूसरा एक महत्वपूर्ण कार्य जो अब ट्रस्ट को करना है, क्योंकि 90% निर्माण कार्य अब हस्तांतरित हो गया है, ट्रस्ट को दे दिया गया, अभिलेख दे दिए गए, रिकॉर्ड दे दिए गए, तो उनका ऑपरेशन मेंटेनेंस मैं जरूर कहूंगा कि एक चुनौती है। ट्रस्ट जो राम कथा संग्रहालय है, हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा।
0: सोमवती अमावस्या आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में आस्था के साथ मनाई गई। प्रयागराज में पवित्र त्रिवेणी संगम पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। पेश है एक रिपोर्ट।
2: श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान सूर्य और भगवान विष्णु का मंत्रोच्चारण के साथ घाट पर जल अर्पित कर पूजन किया और जरूरतमंदों को अनाज और वस्त्र दान किया। सोमवार और अमावस्या का यह मेल स्नान दान और पितरों के तर्पण के लिए बहुत पवित्र माना जाता है। सनातन धर्मावलंबी महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए आज के दिन व्रत रखकर पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करके कच्चे सूत का फेरी देती हैं। अधिक मास का भी समापन सोमवार को पड़ने से आज बड़ी संख्या में शिव मंदिरों में श्रद्धालु जला से किया। प्रवीण आकाशवाणी समाचार प्रयागराज।
0: इस अवसर पर अयोध्या, वाराणसी, चित्रकूट, हापुड़, बदायूं, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मिर्जापुर सहित अन्य जिलों में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान के साथ ही प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपू राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए जारी किए प्रवेश पत्र, 21 जून को होगा इम्तिहान। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में आज से शुरू हुआ योग सप्ताह। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने योगाभ्यास कर जनभागीदारी बढ़ाने का दिया संदेश। और सोमवती अमावस्या पर प्रदेश की पवित्र नदियों में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी, प्रशासन ने किए सुरक्षा के खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
3: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
4: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
4: चलो,
3: कहाँ
4: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: मीडियम वेव 400
8: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। हमें जो संदेश मिल रहे हैं उनके नाम हैं, गांव पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल और यशस्वी वर्मा। आप हैं परमवीर हाउस आदर्श नगर भटिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, विक्रमजीत, अनमोल सिंह और पवनीत ग्रोवर। दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मेहलोत्रा, ऋतिक मेहलोत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, सहिल बजाज और बिट्टा बजाज। कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण और नितिन, इनके साथ हैं मयंक शर्मा। जिला कासगंज यूपी से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका, सुशांत, सुरेश चौरसिया और उनके मित्र।

अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागोड़े, योगिता, प्रियाली, पार्थ और हागोड़े परिवार के सभी सदस्य, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, दरियापुर भावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और अशोक येले, शेरी वडने रकोला से अरुणा बलदेव दामोदर और आदित्य दामोदर, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय और परांजल राय,

0: मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़। ये संदेश भेजने वाले हैं मधुबनी एक्सटेंशन से फूल राणा, अजय राणा, ज्योति, विजय सागर, श्वेता सागर, स्वर्णिमा और उनके मित्रगण। आप हैं चांदनी चौक गंडई पंडेरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू रौनक, रविंद्र रौनक सेन और उनके परिवारीजन। मामलबाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, वसुंधरा भोजने, पी एस नोहानकर और तुषार कारांगले। गांधीनगर गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल, जूली और जगदीश जौहरी। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। आइए सुनते हैं आप सबके लिए आशा भोसले और मोहम्मद रफी को फिल्म है एक फूल दो माली, गीत प्रेम धवन का, संगीत निर्देशक रवि।
1: ये पर्दा हटा दो,

एक फूल दो माली इस फिल्म का गीत अभी आपने आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सुना, और अब आप सुनेंगे किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों को। फिल्म है कालिया, शब्दकार मजरूह सुल्तानपुरी, संगीत निर्देशक R.D. बर्मन, पसंद भेजने वाले श्रोता गांव गोपी की नगरिया से मिट्ठन लाल सारस्वत, नेहा नीरज, निकिता और इनके माता पिता। कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत राजे जाधव, संचित, प्रथमेश, सरवद, प्रणाली सानवी और कल्पना देशमुख। गांव चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। गांव नगला पोला से विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, पीहू, कृष्णा, राधिका, पवन, करण, नमन और इनके परिवारीजन। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग तनुजा और ईशांत देवांगन। गांव नौखरा से कोमल मास्टर, यशोदा, सूरज, शिवानी और उनके परिवारीजन। गांव कुमोदवन से रमेश, सुरेश, सुनील, रचना और उनके साथी। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से सोनिया, अजीत, शिवांश और इनके माता पिता। आप हैं नौगांव से महावीर, रेखा, रोशनी और उनके परिवारीजन। ये संदेश हमें भेजा नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार डावर, खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। गोकुल चौक गंगजला सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, राकेश रंजन विद्यार्थी, राजीव रंजन, संजय कुमार, ओम कुमार, गुंजेश कुमार विद्यार्थी, रिया रानी, कुमकुम, कुमारी साक्षी और उनके परिवारीजन। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब और उनके परिवारीजन। हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और उनके साथी। कुमार गली श्रीरामपुर से रोहिणी दले, अशोक दले, सबिता, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका, सानिका और उनके परिवारीजन। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अभिराज सिंह। करणवीर हाउस भूचो कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू, एकम, दमन और अभिजोत। रसीड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार और डीकेश साहू। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन।

टिल्लू नायक और मधु नायक। आप हैं गोवर्धन बैरी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, बीना मस्कीन, आशीष राजा, चेतन मस्कीन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, के सूर्यधान खुराना। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिम्पल, मीनाक्षी निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी।

ये थे किशोर कुमार और आशा भोसले, फिल्म थी कालिया। और अब आप सुनेंगे आशा भोसले के साथ मोहम्मद रफ़ी को, गीत मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत निर्देशक राहुल देव बर्मन, फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं। पसंद भेजने वाले श्रोता नास पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलना सलमा असद अरहाम और हाशमी परिवार के सभी सदस्य, वनस्थलीपुरम से दोरनाला बालाजी, रेणुका बद्री, हिरणी लोकेश, साई कृपा, नंदुरा से संतोष वसाने, उषा वसाने, ऋषिकेश अनिकेत और सागर कटक, डिंडोरी नाशिक से विशाल गवली, सोनाली समर्पण और भक्ति गवली, आप हैं भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वैदेही जोशी, हंसिका जोशी, अकिता जोशी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयवंती केवट, नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश और प्रमिला बंछोर, कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर और विजयलक्ष्मी सावनकर, ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, जवाहरनगर दूर से आरसी कामड़े, करुणा मीना अश्विनी और विपुल कामड़े, बोड़सरा नेला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया और पप्पी भाटिया।

उदित नारायण और अलका याग्निक, फिल्म थी मन, गीत समीर का था, संगीत निर्देशक थे संजीव दर्शन। हमें जो संदेश मिले उनके नाम है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्भी और हिमाक्ष। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद, तरुण श्रीनिका और श्रीनिजा। दादरीगेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल और कुणाल मेहरा। पैठण से शेख चांद, गुफरान शेख, फुरखान शेख, अदनान शेख, नुमान शेख, जाकिया बाजी और उनके परिवारीजन। कोकहा बिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष और नंदनी जंगेल। बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान। गडकेनगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मणराव लोखंडे, कल्पना ताई, शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षिता और उनके परिवारीजन। मोताला महाराष्ट्र से राज गवई, राजवीर गवई। जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसोलिया और उनके परिवारीजन। राजनगर मधुबनी बिहार से राजू कुमार गुप्ता, विनीता गुप्ता, रविराज, गौरव कुमार और उनके मित्रगण। और श्रोता उसी के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं संपन्न होता है। हमें अनुमति दें, नमस्कार। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। अब आइए सुनते हैं सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला। आज आप सुनेंगे इसकी 15वीं कड़ी।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें, तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें, तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद।
1: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
2: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूं, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूं कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
1: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें, तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
2: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूं तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। पीएमएवाई

0: प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले पीएमआईवाई 1 था, पीएमआईवाई 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो ये देंगे। अभी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज है, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो टीओडी बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रेवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रेवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें टीओडी पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही है, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे मोबाइल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत न हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
1: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
0: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3.25 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो, 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है, तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं। उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं, और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए, ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की, अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें, खास करके जमीन, बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार है, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है, तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी, उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है, तो ऐसे वो प्लानिंग

0: ज्यादा ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया। RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है। और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हमें थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े। RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप है। वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रेवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है। अदरवाइज फिर चेन्नई कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती मध्यम।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे भी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि 3 गुना 2.5 गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा 7 कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहां की 2 भी नहीं होगी 1-1.5 लाख की आबादी थी। ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है। और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कहें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, ULVs को भी फाइनेंशियली स्ट्रांग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजनाएं चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, Tier 2 Tier 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी। तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और वो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को मैंने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के, छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं। 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ।

0: उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती है मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा। तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रूपये की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रूपये लेता है तो महीने का अगर 1,000 रूपये भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रूपये का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरी बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रूपये ले ले, उसी तरीके से वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रूपये का यूपीआई कार्ड भी देंगे जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन लिए जा चुके हैं। 75 लाख लोगों को लाभ हुआ है जिसमें से 40 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कम्प्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझे?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए तो उन देशों को मिलाकर के अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है। जैसे हमारी मोबा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में, तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही हैं और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है, रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक

0: वातावरण के नाते एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए। एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता है। एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है। पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहां मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई। हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारी ने बनाया और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं। लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है। कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है। घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती है तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में देकर उसमें से पैसे भी कमाए तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिलाकर 78,000 भारत सरकार देती है। टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उसे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्यघर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है। कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाए। इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो। वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत, बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं
1: जी। पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूं, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए, लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी

और कास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

संवेद स्वरों में अभी अपने सुनी कुछ देशभक्ति परक रचनाएं। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचार संध्या की प्रतीक्षा करें।

0: मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त

0: व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्योरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथि एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
2: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवो टेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से

0: विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
2: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
1: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
3: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
1: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
4: एलएनजी कैरियर दिशा
5: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
0: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने

होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को

0: भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. India and Slovakia elevate ties to comprehensive partnership. Ink 11 pacts to boost cooperation in key sectors including labor migration, digital technology and defense. Prime Minister Narendra Modi and its Slovak counterpart also agree to establish a joint working group on counter-terrorism. French city of Avignon gears up to host G7 summit beginning tonight. Prime Minister Modi to attend summit tomorrow. DRDO successfully conducts flight test of indigenously developed long-range land attack cruise missile. Israel says its military will continue to hold positions indefinitely in Lebanon, Syria and Gaza despite US-Iran peace deal. And in the FIFA World Cup, Spain to take on Cabo Verde in Group H clash at Atlanta in US tonight. And now the news in detail. India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labour migration, digital technology and defence following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolises shared beliefs, priorities and future.
2: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector.
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: Prime Minister Modi said the two sides also signed the memorandum of understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility.
2: स्लोवाकिया में रह रहे भारतीय मूल के लोग यहाँ की इकोनॉमी और सोसाइटी में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोनों देशों के बीच प्रोफेशनल्स और स्किल्ड वर्कर्स की मोबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हमने लेबर माइग्रेशन पर MOU की घोषणा की है। हम शीघ्र ही सोशल सिक्योरिटी पर MOU को भी अंतिम स्वरूप देंगे।
1: Speaking on the occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors.
3: I congratulate you to the results in all areas which you have achieved. It's the field of digitalization and the use of artificial intelligence. You've come so far that you're ahead of many other advanced countries in different parts of the world. I would like to congratulate you to economic growth, which is amazing.
1: According to the joint statement, Prime Minister Modi and his Slovak counterpart also agreed to establish a joint working group on counter-terrorism.

ये थे हरी आनंद, सोनिधि चौहान और साथी। फिल्म थी बिच्छू, गीत समीर का था, संगीत निर्देशक थे आनंद राज आनंद। और अब सुनते हैं कुलवंत सिंह की रचना, संगीत निर्देशक उषा खन्ना, गायक स्वर मोहम्मद रफ़ी और शैलेंद्र सिंह के। फिल्म का नाम है दादा।

ये थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर, फिल्म थी आसपास। शब्दकार आनंद बख्शी, संगीत निर्देशक थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तराने अब समाप्त होता है। FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 9:30 होने को हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग। श्रोताओं, आज के दौर में जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा और तनाव हम सबको घेर रही हैं। ऐसे में जरूरत है हम दवा से पहले परहेज और बचाव की ओर ध्यान दें, और यही काम करता है हमारा प्राचीन विज्ञान योग। ये कहा भी गया है कि योग भगाए रोग। योग केवल आसन नहीं है, यह संपूर्ण जीवन पद्धति है जो शरीर को निरोग, मन को शांत और प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाता है। पहला सुख निरोगी काया, इस कहावत को सच करने का सबसे सरल और सुलभ उपाय है योग। आज इस विषय की गहराई को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। दोनों विशेषज्ञों का अनुभव लाखों लोगों के जीवन को स्वस्थ दिशा दे रहा है। स्टूडियो में आप दोनों का स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे योग को अपनाकर हम अपनी बीमारियों को आने से पहले ही रोक सकते हैं और स्वस्थ तथा सुखी जीवन जी सकते हैं। श्रोताओं, आपके मन में योग और स्वास्थ्य से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार रहेगा। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली से बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो कार्यक्रम के शुरू में सबसे पहले कमल जी, आपसे जानते हैं, बदलते मौसम में सर्दी खांसी से बचने के लिए कौन सी योगासन और प्राणायाम रोज करने चाहिए?
1: जी मुकेश जी, धन्यवाद। बदलते मौसम के लिए सबसे बेहतर जरूरी होता है कि हम लोग आग नाक कान को ठीक रखें। तो उसके लिए उज्जयी प्राणायाम होता है
0: जी,
1: जो गले को बहुत अच्छे तरह से ठीक रखता है। साथ ही साथ हम कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे नाक में, नासिका में तेल डालना
0: जी,
1: और डेली बेसिस पे डालें तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, ये कर सकते हैं हम लोग, उज्जयी प्राणायाम कर सकते हैं हम लोग और सिंह गर्जना कर सकते हैं। इससे गले की खराश ठीक होगी और गला ठीक रहेगा, तो बदलते मौसम में फिटनेस बनी रहेगी।
0: जी अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे, आजकल नींद ना आना एक बड़ी समस्या है, अनिद्रा के लिए कौन सा योग सबसे कारगर रहता है?
2: अनिद्रा के लिए आपको सबसे पहले तो ध्यान लगाने की आदत होनी चाहिए, उससे बहुत जल्दी आपको नींद आ जाती है। ध्यान लगाएंगे, जैसे ही आप लेटेंगे कॉन्सेंट्रेट कर लीजिए, अपने आपको थॉटलेस हो जाइए
0: जी,
2: सबसे बेस्ट ये है। बाकी आप जो है ना मोबाइल को दूर रखें सोने से एक घंटा पहले, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी।
0: जी बहुत अच्छी बात बताई आपने। और इस बीच हमारे साथ एक श्रोता जुड़ गए हैं हिसार से, राजेंद्र। राजेंद्र, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे विशेषज्ञ से क्या सवाल पूछना चाहेंगे?
3: नमस्कार जी मुकेश जी और विशेषज्ञ जी को नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता जी, घुटनों का दर्द और कमर का दर्द अक्सर रहता है और जो बैठने का काम करता है उनको ज्यादा ही, और कुछ काम करने से भी घुटनों का दर्द ज्यादा और

0: कमर का दर्द बढ़ जाता है। और ये योग करना चाहिए, कौन सा स्टेप है जो करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, वो इसके बारे में जानना था। आज अभी डॉक्टर साहब गले के बारे में बता रहे थे, अक्सर लोगों को गले का कैंसर बहुत ज्यादा आ जाता है
1: जी।
0: तो उसके बारे में भी कोई योगा का स्टेप है तो उनके बारे में भी बताए। नमस्कार जी,
1: मुझे लगता है इन्होंने कई सारे प्रश्न एक साथ कर दिए हैं जी, बताए।
2: हाँ देखिए, कमर के दर्द के लिए सबसे अच्छा है आप ना भुजंग आसन करें, बहुत आराम आराम से करें, मरकट आसन करें। यदि कमर में दर्द है तो भी आप मरकट आसन कर सकते हैं
1: जी।
2: और आपने जैसे बोला है कि घुटनों में दर्द है तो आप हल्दी मेथी सौंठ ये तीनों का कॉम्बिनेशन बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर शाम को दूध के साथ 5 ग्राम ले लें
1: जी।
2: तो ये कंटिन्यू आप लेंगे तो इसमें आपको बहुत लाभ होगा। गले की जहाँ तक आपने बोला है कि गले में है तो उज्जायी प्राणायाम करेंगे और आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा, गले में भी लाभ होगा जैसे मौसम के बदलते हुए। उसमें गुनगुना पानी करके उसको उसका सेवन किया करें, गरारे किया करें तो गले में आपको लाभ होगा
1: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं कमल जी, हरिद्वार से रवि जवालिया। रवि जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछें क्या सवाल है आपका।
3: हाँ जी नमस्कार जी, और विशेषज्ञ को भी नमस्कार जी।
4: नमस्कार
3: जी, और सबसे पहले आप सभी का आज पवन दिवस है जी, विश्व पवन दिवस, उसकी हार्दिक शुभकामनाएं जी। और मैं जानना चाहता हूँ जी, योग का हमारे जीवन में बहुत महत्व है, सभी जानते हैं। तो सर मेरा जो वर्क लोड है वो मतलब कंपनी में मेरा ज्यादातर बैठने का कार्य है जी, तो उसके लिए मुझे क्या कौन सा आसन करना चाहिए जिससे कि मुझे मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो हड्डी में या कोई भी फ्रैक्चर ना हो, क्योंकि ज्यादातर मेरा बैठने का ही कार्य है जी काम कंपनी में। और एक और क्वेश्चन और है कि क्या मतलब जो मुझे काउंटिंग करनी होती तो क्या म्यूजिकली काउंटिंग से भी एक मतलब रिदम बन सकता है मेरा।
4: धन्यवाद रवि जी, और आपका जो आप प्रश्न है उसमें ज़्यादातर लोगों का ये प्रश्न है, क्योंकि सारे लोग मैक्सिमम ऑफिस में ही काम करते हैं बैठने का काम, तो ये आपके माध्यम से उनके भी काम आएगा। इसके लिए आप चेयर पे बैठे बैठे भी कुछ योग कर सकते हैं, जैसे पैरों को हिलाना, पैरों की मूवमेंट करना, लेफ्ट राइट पैरों को लेके जाना, हड्डियों के लिए जैसे आपने बताया उसमें भी कारगर करता है, ठीक है। और पैरों की रोटेशन जो होती है कई तरह से हो सकती है, ठीक है, लेफ्ट राइट लेके जाना, उंगलियों को दबाना छोड़ना, सांसों के साथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ बीच बीच में आप उठने का प्रयास करें हर 2 घंटे बाद, और अपने डेस्क के आसपास पानी ज़रूर रखें, क्योंकि पानी अगर बीच बीच में ज़्यादा पीते रहते हैं कि बॉडी हमारी 70% पानी से बनी हुई है
1: जी,
4: तो पानी की कमी भी बहुत सारे रोगों का कारण बनती है। तो आप इसको करें, आपको निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
1: बिल्कुल लाभ होगा। और अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि हाई बीपी के मरीजों को कौन से आसन नहीं करने चाहिए, उनके लिए क्या सावधानियां।
2: हाँ, हाई बीपी के मरीजों को एक तो आसन बहुत धीमी गति से करने होते हैं
1: जी,
2: फास्ट कोई भी आसन नहीं करना है। और सबसे बेस्ट उसके लिए जो है सब आसन है, कहने में तो एक हंसी की बात आ जाती है
1: सभी के लिए।
2: हाँ, लेकिन जैसे हाई बीपी होता है तो आप सब आसन में लेट जाएंगे तो आपका बीपी 5 मिनट में काफी कम हो जाएगा, तो इस चीज का विशेष ध्यान करें। सब आसन का मतलब होता है वही थॉटलेस होकर सीधे लेट जाना, लंबे गहरे श्वास धीमी गति से भरना और धीमी गति से छोड़ना।
1: और इस समय हमारे साथ एक श्रोता और जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राजेश नेमा। राजेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है आपका।
5: जी मैं सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ
1: जी,
5: और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे तो बहुत बधाई। और मेरा सवाल ये है, श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए योग का कौन सा आसन श्रेष्ठ है
1: जी, बताएं।
2: हाँ, श्वसन क्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम है
1: जी,
2: और उसमें भी भस्त्रिका प्राणायाम है, लंबे गहरे श्वास भरना और लंबे गहरे श्वास छोड़ना एक रिदम के साथ, एक लय के साथ, तो वो जो है आपकी श्वसन क्रिया को नॉर्मलाइज करेगा। उसके बाद पहले तो आपने भस्त्रिका प्राणायाम जितना समय, यानी कि आपने सपोज 2.5 सेकंड समय श्वास को भरने में लगाए हैं तो कोशिश करें 3 सेकंड को श्वास छोड़ने में लगाएं
1: जी।
2: तो इस तरीके से करना है, फिर धीरे धीरे क्या करना है, 2.5 सेकंड में रोकना है, 2.5 सेकंड भरना है, फिर 3 सेकंड छोड़ने में लगाना है। छोड़ने में अधिक समय लगाने का जब आप अभ्यास करेंगे तो आपके श्वासों का रिदम बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको काफी लाभ होगा उसमें
1: जी। कमल जी आपसे जानना चाहेंगे, पाचन तंत्र ठीक रखने के लिए सवेरे उठकर कौन से 3 योग करने चाहिए।
4: सवेरे

0: से पहले कार्य करना चाहिए, एक ग्लास या दो ग्लास या तीन ग्लास, जितना आपसे हो सके उतना पानी पीना है। बट इसमें कंडीशन है कि आपको कुल्ला नहीं करना है और रात में ब्रश करके सोना है
1: जी,
0: ठीक है। मुंह साफ रहना चाहिए, रात में जो भी लार बनती है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जनरली हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं, हम लोग सुबह उठते ही कुल्ला करते हैं और हमारी जो बहुमूल्य लार है
1: वो उसको
0: हम वेस्ट कर देते हैं। तो जब बॉडी के अंदर वो लार पानी के साथ जाती है तो आपकी पाचन क्रिया को स्वतः ही तंदुरुस्त करती है। साथ ही साथ उसके बाद ताड़ासन कर सकते हैं, हाथों की प्रक्रिया होती है जिसमें कमर में रोटेशन होती है, इस तरह के जो दो तीन आसन होते हैं वो कर सकते हैं रोटेशन के साथ। हाथों को लेफ्ट राइट लेके जाना है जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, बैठ करके किया जा सकता है इसके अंदर, घुटनों को लेफ्ट राइट दबाना जिससे कमर के ऊपर जोर पड़े, इससे पाचन क्रिया सुदृढ़ होगी और पाचन क्रिया में लाभ मिलेगा। धन्यवाद।
1: बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से, राकेश। राकेश जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न पूछना चाहेंगे?
2: जी धन्यवाद, मैं राकेश कोटखाई शिमला, और मेरा एक प्रश्न है, जिनको मोतियाबिंद है या आंखें को कम दिखाई देता है, तो मैं विस्तार से ये पूछना चाहता हूँ कि आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कौन कौन से योग करने चाहिए?
3: हाँ, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको बताऊं, बड़ा है, बहुत ही अच्छा है, आप रात को ब्रश करके अच्छे से सोएं, ठीक है। और जो लार होती है ना मॉर्निंग में, उस लार को आंखों में काजल की तरह लगाएं तो आंखों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे चश्मा भी उतर जाता है इससे, ठीक है। और मुँह में पानी भर के, फ्रेश होने के बाद मुँह में पानी भर के आँखों में छपके मारना। और वो बेस्ट ये होगा कि यदि आप रात को त्रिफला भिगो देते हैं, उसको छान के सुबह उसमें आँखों को धोना, यानी कि आई कप मिलते हैं उसमें आँखों को घुमाना, वो आँखों के लिए बहुत अच्छा है।
1: अनीता जी, जैसे आपने बताया कि रात में ब्रश करके सोएं और सवेरे जो लार है उसको आंख में लगाएं, क्या एजेंट ऐसा होता है उसमें जो आंखों के लिए लाभदायक होता है?
3: लार तो सर बहुत इफेक्टिव है, जैसे भैया ने अभी बोला था, कमल भैया ने, कि आपको कुल्ला नहीं करना पानी पीने से पहले
1: जी।
3: तो वो लार आपके लिए उससे बढ़िया दवाई तो कुछ है ही नहीं।
1: बिल्कुल। और महाराष्ट्र के पुणे से जुड़ गए हमारे श्रोता श्रीकांत झकड़े। श्रीकांत जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, क्या प्रश्न है हमारे विशेषज्ञ से?
4: हेलो नमस्कार, मैं मुकेश
1: जी। नमस्कार,
4: नमस्कार
1: जी, सवाल पूछिए। शायद कहीं फोन लाइन में डिस्टरबेंस है, इस वजह से आपका प्रश्न हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं, आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। उससे पहले जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य पर अगर हम बात करें अनीता जी, तो छात्र परीक्षा के तनाव को योग से कैसे कम कर सकते हैं? कोई एकाग्रता बढ़ाने वाला कोई आसन है?
3: जी हाँ बिल्कुल, प्राणायाम है
1: जी।
3: भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, जिससे कि उनकी एकाग्रता बढ़ती है और थोड़ा थोड़ा वो अनुलोम विलोम और कपालभाति भी करें, लेकिन उनके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, जो हर बच्चा आसानी से कर सकता है
1: जी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर से, विजय कुमार। विजय जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
5: मुकेश कुमार जी,
1: जी क्या सवाल है आपका?
5: कुमार जी नमस्ते।
1: नमस्कार, क्या सवाल है आपका?
5: डीजे और सर को भी मेरा नमस्कार जी।
3: नमस्कार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।
5: मेरा पहला सवाल यह है कि वेट बहुत ज्यादा है
1: जी,
5: इसके लिए कौन सा योग करना चाहिए? और मेरा पेट का ऑपरेशन हो गया है 2004 में
1: जी
0: जी,
5: और योगा करने से वो ये होगा
0: वेट के लिए? विजय कुमार जी, सबसे पहले तो अपने खाने पीने की जो दिनचर्या है उसको नियमित करें, एक निश्चित समय पर खाएं और सूर्योदय के बाद खाना बंद करें, पहला सबसे पहला कार्य आपको ये करना है। दूसरा कार्य आपको ये करना है, जैसे आपका ऑपरेशन हो रखा है तो सिस्टम यानी गड़बड़ हो रखा है, तो आपके जीवन शैली के आपने फर्मेंटेड चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना है। फर्मेंटेड चीज़ों के अंदर आप बासी चावल ले सकते हैं दही के साथ में, अगर सूट करता है, उसके बाद कांजी है और उसके बाद अचार है, इस तरह की चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं, पत्ता अमृत भी ले सकते हैं। और आसनों की अगर बात करें तो आप लेट करके दोनों पैरों को ऊपर उठाना, गोल गोल घुमाना, दोनों पैरों से तभी करें जब आपको हाई बीपी ना हो, अदरवाइज एक एक पैर का प्रयोग करें। साइकिलिंग का प्रयोग करें लेट करके, वो वेट में काफ़ी लाभदायक है। और बैठ करके कटि सौंदर्य आसन होता है, लेफ्ट राइट पैर को खोल करके हाथों को घुमाना, ये करना है आपने। और सूर्य नमस्कार अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, निश्चित लाभ होगा। धन्यवाद।
1: अनीता जी, एक मेरे दिमाग में सवाल आ रहा है कि

0: योग और प्राणायाम मेडिटेशन, इसमें क्या फर्क होता है, क्या दोनों को करना आवश्यक है?
1: ये दोनों योग के ही अंग हैं
0: जी,
1: प्राणायाम और आसन
0: जी।
1: प्राणायाम श्वासों की क्रिया है जिसको कि हर व्यक्ति कर सकता है। कई बार क्या होता है कि एजिड पर्सन ये सोचता है कि शायद मैं तो योग कर नहीं सकता हूँ, योग में वो केवल आसन मानते हैं। तो आसन ही नहीं, यदि आप प्राणायाम को भी अपना लेते हैं, और प्राणायाम संपूर्ण है, प्राणायाम से आप शरीर के हर रोग को निकालकर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं
0: जी।
1: तो श्वासों की क्रिया को ही प्राणायाम कहा जाता है, और योग का ये एक अंग है, और व्यायाम और आसन इसके और विभिन्न अंग है।
0: और हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं बिहार के दरभंगा से, मोहन पासवान। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है हमारे विशेषज्ञ से?
2: जी धन्यवाद, प्रणाम इकट्ठे सर।
0: जी बताइए
2: सर, जानना चाहता हूँ कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वास्थ्य का स्वस्थ होना जरूरी है, तो इसके लिए योग व्यायाम और खान पान कैसा होना चाहिए? दूसरा बात है सर, दूसरा प्रश्न है कि आरोग्य विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय पूरे देश में पंचायत से लेकर शहर मोहल्ला तक खोलने की योजना है क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार की? मैडम
1: नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी योजना जो है योगियों की तो है ही, श्रद्धेय स्वामी जी की भी है इसमें, रामदेव बाबा की भी है इसमें। ये बिल्कुल वो चाहते हैं कि गांव गांव और गली गली तक ये सुविधा उनको पहुंचे। और आपने बोला स्वास्थ्य के लिए बोला है ना कि तो उसके लिए क्या है, आपको आपको प्राणायाम अपनाना है। श्वासों की क्रिया में क्या, लंबे देखिए श्वास आप प्रतिपल लेते हैं, उसी श्वास को ध्यान के साथ कंसंट्रेट होकर शांत मन से बैठ जाएं और लंबे गहरे श्वास भरें और लंबे गहरे श्वास छोड़ें, उससे आपको बीमारियां भी दूर होंगी। देखिए आपको लगता है कि श्वास तो हम प्रतिपल ले रहे हैं, लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि भस्त्रिका प्राणायाम से आपके रोग जो खत्म होते हैं, और आपको विश्वास नहीं होगा कोरोना के टाइम में तीव्र भस्त्रिका हम लोगों ने किया, और हमें कोरोना के पेशेंट के पास बैठकर भी हमको कोरोना का कोई मतलब नहीं।
0: बहुत बड़ी बात। जो श्रोता अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, आज हम रोगों की रोकथाम और बेहतर स्वास्थ्य का आधार योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर। तो अनीता जी, घर से काम करने वालों के लिए आंखों और मानसिक थकान दूर करने का कोई योग है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और अधिकतर लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं तो बड़ी थकान सी होती है।
1: देखिए आंखों के लिए तो पहली बात तो ये कि हर दो घंटे के बाद आंखों को धो लें पानी से
0: जी,
1: और उसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ जैसे कि दवाई आती है ना आंखों की, हमारे तो दृष्टि है, इसको डालें थोड़ा सा आंख में, जो कंप्यूटर पर बैठते हैं उनको जरूर डालनी चाहिए। दो तीन तरह की अब तो आंखों की दवाइयाँ आ गई हैं। और जहाँ तक बात है कि हमें थकावट हो जाती है, तो थोड़ा जब हम थोड़ा समय निकालेंगे शरीर के लिए, एक घंटा हमको जरूर निकालना चाहिए, और आप सुबह प्रातःकाल में यदि थोड़ा कपालभाति अनुलोम विलोम ये करेंगे तो आपके शरीर की थकावट बहुत जल्दी दूर होगी आपको लगता है, और आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि लगेगा कि हम पड़ोसियों के भी काम कर दें।
0: जी बिल्कुल। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर से, रशीद अहमद खान। रशीद जी आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू। नमस्ते सर, सब लोगों को नमस्कार।
0: जी सवाल पूछिए।
3: पिछले हफ्ते आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए थे, फोन नहीं लग पाए थे, इसलिए अभी मैं शुभकामनाएं दे रहा हूँ पूरे देशवासियों को, पूरे प्रधानमंत्री
0: आपको भी शुभकामनाएं। जी सवाल पूछिए।
3: सवाल हमारा ये है कि जैसे क्या योगा करने से चश्मा उतर जाता है, एक बात। दूसरी बात, क्या गुलाब जल वगैरह डालना आंखों में कितना लाभदायक रहता है, प्लीज बता दीजिए।
4: धन्यवाद रशीद जी, बिल्कुल निश्चिंत ही चश्मा उतर जाता है, परंतु उसके लिए आपको योग निरंतर करना होगा, और आंखों में गुलाब जल तभी डालें जब गुलाब जल आपका शुद्ध हो। शुद्धता की जांच आप अपने लेवल पर कर लें, अगर गुलाब जल नहीं मिलता है तो फिर आप शुद्ध लेवल पर ना मिलने की वैसे आंखों में कुछ भी ना लें, ठीक है। और योग के अंदर आप प्राणायाम सबसे ज़्यादा करें, चश्मा बिल्कुल उतर जाएगा। और आंखों के अंदर जैसे अनीता जी ने पहले भी बताया कि सुबह सुबह की बासी लार जो होती है आंखों में रेगुलर बेसिस पर लगाएं काजल की तरह, आपको चश्मा जरूर उतर जाएगा। धन्यवाद।
0: और अनीता जी, गुस्सा और चिड़चिड़ापन कम करने के लिए कौन सा प्राणायाम है जो हम 2 मिनट या 5 मिनट जितनी जरूरत है कर सकते हैं?
1: उसके लिए सबसे बेस्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम
0: जी,
1: आपके मन को शांत करने के लिए। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, और अपना जो है ध्यान का मैंने आपको बोला ना, थोड़ा कंसंट्रेट होके करें प्राणायाम को, यदि आप ध्यान में बदल कर, यानी कि आप फुल कंसंट्रेशन के साथ

0: अनुलोम विलोम करते हैं
1: जी,
0: तो आपका माइंड काफी शांत हो जाता है। लेकिन करें, करेंगे तो मिलेगा रिजल्ट।
1: बिल्कुल, करेंगे तो होगा।
0: हाँ।
1: कमल जी, आजकल डायबिटीज और बीपी जैसी बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, योग इनकी रोकथाम में किस तरह सहायता कर सकता है?
2: देखिए, डायबिटिक और बीपी ये बीमारियां आज की डेट में ही पैदा हुई हैं
1: जी,
2: ये पहले नहीं हुआ करती थी। उसके पीछे कारण है कि हमारा लाइफस्टाइल खराब कर लिया हम लोगों ने, तो ये मतलब नेचुरल बीमारी नहीं है, ये हम लोगों के द्वारा पैदा की गई बीमारी है
1: जी।
2: बीपी का मुख्य कारण हमारे यहाँ रेडिएशन फैला हुआ चारों तरफ, हम लोग जहाँ जाते हैं वाईफाई है, मोबाइल के अंदर वाईफाई है, ये भी एक मुख्य कारण है
1: जी।
2: हर जगह तनाव में, टॉक्सिक माहौल में, ऑफिस में भी टॉक्सिक माहौल है, कई जगह पर बहुत ज़्यादा अननेसेसरी प्रेशर रहता है, ये भी एक मुख्य कारण होता है। पहले कारण जानना जरूरी है, उसके बाद ही निवारण होगा। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप जो भी कार्य करें, योग, प्राणायाम, जो भी करें, इतना स्लो करें कि आपको स्वयं की आवाज़ भी सुनाई ना दे। आप प्राणायाम कर रहे हैं तो इतना धीरे धीरे करें। मैंने कई बार देखा लोग गलती में है ना, बहुत तेज करने लग जाते हैं,
1: उसका
2: फायदा नहीं होता, नुकसान होता है
1: जी, जी, जी।
2: बट मेरा मानना है आप कम करें, बट जितना धीरे करेंगे आपको लाभ ज्यादा मिलेगा, मेरा अपना अनुभव ये है। और डायबिटिक के लिए अगर आप बात करें तो मंडूकासन वन ऑफ द बेस्ट है, रामबाण है, घुटने के बल बैठना होता है, वज्रासन में बैठना होता है। और वज्रासन की खास बात यह है कि खाने के बाद इकलौता एक ऐसा आसन है जिसमें आप बैठ सकते हैं, इससे खाने के बाद पाचन क्रिया भी दुरुस्त होती है और खाना जो खाया है वो जल्दी पचता भी है। जैसे किसी का समय नहीं है टहलने का तो वज्रासन में बैठ सकते हैं, 5-10 मिनट उनका जो भी खाया हुआ है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। उसे मंडूकासन में दोनों मुट्ठियों को बंद करें, नाभि के पास लगाएं, आगे की तरफ झुकें, हिप और एड़ियां मिले रहेंगे, जितना संभव हो सके आगे झुकने की कोशिश करें, गर्दन सीधी रखनी है और सांसों को नॉर्मल लेना है। ये है मंडूकासन, ये बिल्कुल रामबाण इलाज है। इसके अलावा वक्रासन है, गौमुखासन है, जिस पे भी नाभि पे प्रेशर पड़ता है वो सब डायबिटिक के लिए लाभदायक है। धन्यवाद।
1: निश्चित तौर पर हमारे श्रोताओं को इससे लाभ होगा। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंदौर से अनिल। अनिल, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए, क्या सवाल है आपका?
3: सर, हमारा सवाल ये है कि जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, क्या उनको योग करना चाहिए क्या, और डॉक्टर कौन सा योग की सलाह देते हैं जो उनके लिए और उनके होने वाले बच्चे के लिए सही है?
1: बहुत अच्छा सवाल,
0: बहुत अच्छा आपका ये प्रश्न रहा है। कुछ आसन होते हैं जो उनको करने होते हैं, पैर ऊपर उठाने वाले आसन नहीं करने हैं, जैसे अभी मंडूक आसन बताया वो नहीं करना है, सीधे लेटकर पैर, जैसे मरकट आसन होता है वो कर सकते हैं, जो भी कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है, तो धीरे धीरे बहुत धीमी गति से मरकट आसन कर सकते हैं। प्राणायाम में उनको कपाल भांति नहीं करना है, बाह्य प्राणायाम नहीं करना है, उनको अनुलोम विलोम करना है, भ्रामरी करना है, उद्गीत करना है
1: जी।
0: तो ये कुछ प्राणायाम हैं जो उनको करने हैं, और हमेशा योग शिक्षक के समक्ष बैठकर ही वो करें, सीखें, उसके बाद करें।
2: इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, उनको बटरफ्लाई रेगुलर करना है। बटरफ्लाई करेंगे रेगुलर, बहुत आसान होता है, बैठ के किया जाता है, ये बहुत लाभदायक रहेगा। धन्यवाद।
1: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर। धर्मवीर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए, क्या सवाल है आपका?
4: नमस्कार।
1: नमस्कार,
4: धर्मवीर गांधी, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, एक्सपर्ट को भी नमस्कार।
2: धन्यवाद।
4: एक मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि मन में सवाल आया था कि आजकल जो हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी हाइट कम रह जाती है, कम होती है, तो बेचारी ऊंची हील की सैंडल पहनती है हाइट बढ़ाने के लिए, पर वो ठीक नहीं है, पर उनका जो शारीरिक हाइट कैसे बढ़े उसके लिए कौन सा आसन करना चाहिए, क्योंकि सुनने वाले सभी ये इसको जरा गौर से सुनेंगे, क्योंकि ये मेन समस्या आज की तारीख में शादियां नहीं हो पाती, कई जगह टूट जाती है इस बारे में। धन्यवाद।
1: बहुत अच्छा सवाल है और मुझे लगता है कि घर घर की ये कहानी है।
0: घर घर की, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खाने पर ध्यान दीजिए। जितना ये बच्चे फास्ट फूड खाते हैं वो आप उसको डाइजेस्ट नहीं होता, जब डाइजेशन ठीक नहीं होता तो प्रॉपर हाइट कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले आप उसका अब खाने पे ध्यान दीजिए। मैं देखती हूँ, मेरा भी चिकित्सालय है तो मैं वहाँ बच्चों को यही समझाती रहती हूँ कि बेटे इन चीज़ों को मत खाइए जो आपको नुकसान देती हैं। प्राणायाम करें और आसन, ताड़ासन है, ठीक है, वृक्षासन है, और आपको 5-6 आसन का ये उपयोग वो करेंगे तो उससे उनकी जो है ना हाइट बढ़ेगी। लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं ये कहूँगी कि खाने का ध्यान रखें, समय से उठना, समय से सोना, इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है उन पर नियंत्रण करना।
1: बिल्कुल, हमारे श्रोताओं को इससे ज़रूर लाभ होगा। और कमल जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये श्रोता पूछते हैं कि खाली पेट योग करना ज़रूरी है क्या, और खाना खाने की कितनी देर बाद योग कर सकते हैं?
2: जी बिल्कुल, खाली पेट करना योगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना खाली पेट अगर योगा करेंगे तो नुकसान हो जाएगा।

0: जी
1: क्योंकि उस समय हमारा सिस्टम पाचन क्रिया में लगा होता है, अगर हम खाना खाने के बाद योग करते हैं उस समय सारा ब्लड सर्कुलेशन पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में लगा होता है, तो योग नहीं करना चाहिए। खाने के कम से कम अगर दिन की बात करें तो 4 से 5 घंटे बाद करना चाहिए दोपहर के बाद में, और शाम को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खाने से आप एक काम कर सकते हैं, जिनको इस तरह की परेशानी होती है तो खाना खाने से 1 घंटा पहले कर लें, आधा घंटा पहले कर लें, वो उनके लिए लाभदायक रहेगा। और अर्ली मॉर्निंग सबसे ज़्यादा बढ़िया होता है क्योंकि उस समय नेचुरल हवा होती है, उस समय पॉल्यूशन नहीं होता बॉडी के अंदर, बिल्कुल एकदम नेचुरल नॉर्मल रहती है बॉडी, एकदम रिफ्रेश रहती है। तो उस समय करेंगे ज़्यादा लाभदायक रहेगा, इस तरह से करें ज़्यादा लाभदायक रहेगा।
2: और रायबरेली से एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, रमाशंकर वाजपेयी। रमाशंकर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी,
3: मेरा सवाल यही है कि योग और दंड बैठक, जिसे हम लोग देहाती भाषा या आम प्रचलन में योग, एक तो बहुत गणित कठिन है
2: जी।
3: और जो है ये दंड बैठक, ये भी स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ लाभदायक है या क्या है?
2: जी
1: रमाशंकर जी नमस्कार, धन्यवाद आपने जो प्रश्न किया। ये बेसिकली दंड बैठक योग के अंदर जो प्राणायाम के बल जो आसन होते हैं उसमें इंक्लूड है ऑलरेडी, दंड बैठक जो पहले प्राचीन टाइम पे हुआ करता था वो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आप जब वो दंड बैठक लगाएंगे तो उससे शारीरिक विकास ज़्यादा अच्छा होगा, और जिनके शरीर में बल नहीं है उनके अंदर बल आएगा। युवाओं को खासतौर से बहुत बात है क्योंकि उनका एनर्जी लेवल पे कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जो उनकी स्फूर्ति को बढ़ाए और उनके शरीर से पसीना जल्दी निकाले। तो दंड बैठक का समावेश ऑलरेडी योग के अंदर होता है, आप उसका प्रयोग करें और निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। बट इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि दंड बैठक के साथ साथ प्राणायाम जरूर करें, क्योंकि जब शरीर के अंदर जान ही नहीं होगी तो फिर दंड बैठक लगाई नहीं जाएगी। तो प्राणायाम जितना ज़्यादा अच्छे से करेंगे वो आपको ज़्यादा लाभ देगा।
2: और बिहार के सासाराम से जुड़ गए हैं अमित। अमित क्या सवाल है आपका?
4: जी नमस्कार सभी विशेषज्ञ टीम को, मैं अमित उपाध्याय सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि जैसे कि हम लोग योगा करते हैं अलग अलग, जैसे कुछ ट्रेनर हो गया, बाबा रामदेव का एक अलग रहता है और बाकी जो ट्रेनर का रहता है, जो मॉड्यूल रहता है अलग एंगल रहता है, तो ये हम लोग के शरीर में कितना ये इफेक्ट डालता है कि कभी उस ट्रेन कर लिया मैंने देखकर, हम लोगों ने इसको देखा तो इससे कर लिया, इससे कुछ शरीर में इफेक्ट पड़ता है क्या? या फिर या 10 दिन या 1 महीने करने के बाद हम लोग छोड़ देते हैं, रेगुलर नहीं हो पाता है, तो इससे शरीर में कुछ इफेक्ट पड़ता है क्या? जी यही सवाल था
2: जी।
5: देखिए रेगुलरिटी तो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए कि जो भी योगाचार्य होते हैं वो कंटिन्यू करते हैं, सालों साल करते हैं, जब तक जीते हैं तब तक करते हैं, तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। 10 दिन में कुछ होने वाला नहीं है, हमने इतने दिन से अपने शरीर को बिल्कुल बेकार बनाया हुआ है, डल बनाया हुआ है, तो रेगुलरिटी ज़रूरी है। और जो यदि आपको कोई सिखा रहा है वो थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई आपको शिक्षक सिखा रहा है तो उसके उस संपर्क में आके आप कर सकते हैं।
2: और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, इंदर भान सिंह। इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, शायद उनसे संपर्क कट गया है। अनीता जी आपसे जानना चाहेंगे, 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं जिन्होंने घुटने बदलवाए हैं, कुर्सी पर बैठकर भी कोई योग आसन है?
5: हाँ नहीं, सबसे पहली बात वही है मैंने बोला ना कि लोग कहते हैं अरे हम योग कैसे करें। योग का एक अंग है प्राणायाम, जो कि संपूर्ण है। यदि हम आसन भी नहीं कर पाते हैं तो प्राणायाम करें, जिन्होंने घुटने बदलवाए या कुर्सी पे बैठ के करते हैं नहीं वो ज़्यादा कुछ कर सकते, और बैठने के आसन भी बहुत सारे हैं, लेकिन वही है योग शिक्षक के संपर्क में जाकर वो अपना आसन कर सकते हैं। घुटनों को हिलाते रहें, हाथों को हिलाते रहें, इतना तो कर ही सकते हैं, रोटेट करें, गोल गोल घुमाएं, तो ये कर सकते हैं, और प्राणायाम सबसे कंपलसरी है।
2: कमल जी, बुजुर्गों में याददाश्त की कमी हो जाती है, कमजोर होने लगती है, तो उसके में उस स्थिति में भ्रामरी प्राणायाम लाभदायक हो सकता है?
1: जी बहुत अत्यंत लाभदायक है भ्रामरी प्राणायाम, और इसके अलावा अनुलोम विलोम भी करें साथ साथ, क्योंकि वो भी बहुत लाभदायक होता है। वो आपकी जो तीसरी नासिका होती है, जो इस विशेष नस बोलते हैं, उसको एक्टिवेट करता है। ठीक है, सुषुम्ना नाड़ी होती है उसको एक्टिवेट करता है भ्रामरी प्राणायाम। के अलावा बुजुर्गों को ये भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपस में मिलें, और हाथों की अलग अलग एक्सरसाइज भी क्या करें, जैसे बदल बदल के क्या करें, और भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जैसे मोबाइल लेफ्ट की जगह राइट में रख लिया, तो इससे क्या होता है कि मानसिक रूप से उनको थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और सबसे ज़्यादा मैं चाहूँगा बुजुर्गों से कि आपस में वार्तालाप ज़्यादा बना के रखें, क्योंकि वार्तालाप बनाते नहीं हैं तो उसकी याददाश्त पे असर होता है, तो जितना आप में बातचीत करेंगे उतना बुजुर्ग फायदेमंद रहेंगे।
2: और श्रोताओं, घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि हम इस चर्चा को यहीं पर विराम दें। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही हमारी योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है।

aarnsdtalks@gmail.com। और कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह सोमवार रात 9:30 बजे किसी और मुद्दे पर चर्चा के लिए हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुकेश कुमार को कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति। नमस्कार।

FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम करें योग रहें निरोग। आलेख जयसिंह का है, वाचन स्वर देवराज कृष्ण दीक्षित और संजय सारस्वत के हैं।

0: चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए निरोग तथा स्वस्थ शरीर ही मुख्य साधन है, इसलिए शरीर की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। आचार्य कहते हैं,
1: इदं शरीरं खलु धर्म साधनम्। देह स्वस्थ और निरोग हुए बिना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करना संभव नहीं है। ये भी सत्य है, निरोग शरीर के द्वारा ही धर्म कर्म का अनुष्ठान तथा मोक्ष साधन संभव है।
0: वित्त, वैभव, नाम और यश सब कुछ प्राप्त हो, फिर भी यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो जीवन भार बन जाता है, जीवन व्यतीत करना दूभर हो जाता है। मानव सभ्यता जितनी प्राचीन है उतनी ही प्राचीन योग की उत्पत्ति मानी जाती है। मूल रूप से योग की शुरुआत स्वयं के हित के बजाय सभी के हित के लिए ही हुई है।

0: योग को अदृश्य दुनिया से जोड़ने और अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित करने का तरीका माना जाता है। योग वास्तव में भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और इसके शाब्दिक अर्थ में ही समाहित है जोड़ना, अर्थात तन और मन को प्रसन्न रखना। यदि हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ होगा तो निश्चित ही हमारा मन भी प्रसन्न और प्रफुल्लित होगा।
1: भारतीय योग विधा की महत्ता को स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता प्रदान की और आज पूरा विश्व योग को अपनाकर स्वास्थ्य लाभ कर रहा है और पूरी दुनिया ने ये माना कि योग मानव स्वास्थ्य और मानव कल्याण की दिशा में एक संपूर्ण नजरिया है।
0: कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते पूरे विश्व ने इस बात को स्वीकार और अंगीकार किया है कि योग अपने आप में संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है और अनेक बीमारियों को दूर भगाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए इस वर्ष भी योग के सामूहिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं किया जाएगा। इस वर्ष विश्व योग दिवस की थीम है परिवार के साथ योग, घर पर योग। डिजिटल अथवा सोशल मीडिया मंच के माध्यम से हम सभी योग के कार्यक्रमों से जुड़ सकेंगे।

0: आज तनाव से भरी जिंदगी में योग जीवनदायिनी अमृत की तरह उभर कर आया है। योग के मुख्यतः दो पहलू हैं, शारीरिक और आध्यात्मिक। शरीर की स्वस्थता से समाधि की सिद्धि तक योग की यात्रा बहुत ही सरल, सहज, वैज्ञानिक, प्रामाणिक, व्यवहारिक और सार्वभौमिक है।
1: योगासन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे सहज, सरल और सुलभ हैं। इसके लिए धन की आवश्यकता नहीं होती, ये अमीर गरीब सभी के लिए बराबर है। योग और प्राणायाम का स्वास्थ्य रक्षा में बहुत बड़ा योगदान है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यदि हमारा शरीर पूरी तरह स्वस्थ होगा तो निश्चित ही मन भी प्रसन्न और प्रफुल्लित होगा। योग और शारीरिक स्वास्थ्य के संबंध में राजेश अग्रवाल जी के विचार आइए सुने।
2: जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हमारे जो त्रिदोष हैं वो संतुलित हो जाते हैं। हमारा आयुर्वेद एक योग की एक परिभाषा बताता है स्वस्थ व्यक्ति की, समदोष समाग्निश्च समधातुश्च मलह क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यवधीयते। जो व्यक्ति योग करता है उसके ऊपर ये सारी चीजें एकदम से फिट बैठती हैं, उसके बात पित्त कफ भी संतुलित हो जाते हैं, उसकी तेरह अग्नियां ठीक हो जाती है और मल की क्रिया भी ठीक हो जाती है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे शरीर से मल केवल एक या दो रास्ते से नहीं निकलता है, हमारे शरीर से मल चार रास्तों से बाहर जाता है। मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा, पसीने के द्वारा और श्वास के द्वारा। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो श्वास के माध्यम से हमारे शरीर की सफाई हो जाती है, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। स्वच्छता अभियान हम भारत का में बाहर चलाते हैं लेकिन हमारे अंदर का स्वच्छता अभियान प्राणायाम के द्वारा भी हो सकता है। योग के आठ भाग हैं जिसमें सातवें नंबर पर आता है ध्यान। तो ये ध्यान का अभ्यास वही कर सकता है जो बाकी के यम नियम आसन और प्राणायाम का पालन करेगा। क्योंकि अगर आप ठीक से बैठ ही नहीं पाएंगे स्थिरतापूर्वक, सुखपूर्वक जब आप बैठ ही नहीं पाएंगे तो आप ध्यान कैसे करेंगे। सपोज आपके घुटने में दर्द है और आप ध्यान के लिए बैठ गए तो आपका ध्यान लगेगा ही नहीं।

0: आप तो घुटने पर ही ध्यान देगा, तो हमको पहले घुटने को स्वस्थ करना है। हमारा फेफड़ों में कोई समस्या है तो हम कैसे ध्यान करेंगे, हमें खांसी आएगी बार बार, तो हमें पहले शरीर की व्याधियों को दूर करने के बाद तब हम ध्यान करेंगे, तो वो वास्तविक ध्यान होगा। इसलिए इसको अष्टांग योग कहा गया कि एक एक सीढ़ी हमको चलना है। समाधि की स्थिति है, उससे ठीक पहले की स्थिति ध्यान की स्थिति है। ये बहुत अच्छी स्थिति है और इसके बहुत सारे लाभ भी होते हैं, निश्चित रूप से लाभ होते हैं। तो हमें निश्चित रूप से सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। सीधे भागेंगे तो हमें लाभ उतना नहीं होगा, हमें सब चीज सारे सिस्टम को स्टेप बाय स्टेप चल करके ध्यान और समाधि को प्राप्त करना चाहिए।
1: यदि हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ और निरोगी रहें, तन फुर्तीला और मन प्रफुल्लित रहे, तो हमें योग को अंगीकार करना होगा। सरल योगासनों के द्वारा हम अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं और अपने जीवन से रोगों को दूर भगाकर दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। अपनी काव्य पंक्तियों के माध्यम से योग के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कविवर मोहनलाल मोही।
2: करे योग तो जीवन भर ये काया रहे निरोग की, सुखी रहे विधि जो अपनावे हिंदुस्तानी योग की। भारत

पर हम भूल गए धन माया, भंवर बनी है भोग की, सुखी रहे विधि जो

0: प्राचीन काल में दवाओं का प्रयोग न के बराबर होता था। जड़ी बूटियां और औषधीय पौधे तथा योग ही प्रचलित थे, जिन्हें अपनाकर हम शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ रहते थे। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि अपने शिष्यों को योग की अनिवार्य शिक्षा प्रदान करते थे और यही शिक्षा विद्यार्थियों को एक स्वस्थ, संपूर्ण, जिम्मेदार, बलशाली और उच्च बौद्धिक स्तर का इंसान बनाती थी। इस संदर्भ में आइए सुने डॉक्टर अमिताभ पांडेय के विचार।
1: योग जैसा कि माने, योग माने जुड़ना, तो ईश्वर से जुड़ने के लिए योग है एक्चुअली। पर उस जुड़ने के लिए हमें कुछ क्रियाएं करना आवश्यक है, शरीर का स्वस्थ होना भी आवश्यक है। होता क्या है कि बगैर स्वस्थ तन के मन स्वस्थ नहीं रह सकता। जब मन स्वस्थ नहीं हुआ तो मन के वो कार्य आगे हम नहीं कर सकते, तो ईश्वर तक क्या पहुंचेंगे। तो जो पुराने ऋषि महर्षि हुए हैं, उन्होंने तन की स्वस्थता के ऊपर बहुत ध्यान दिया और उन्होंने देखा कि हमारे जो एक्टिविटीज होती हैं उनका प्रभाव भी मन पर पड़ता है और मन का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। इन दोनों का आपस में परस्पर संबंध है। इस बात को उन्होंने जाना तो उन्होंने बहुत सारे योग में या ऐसी जो टेक्निक्स है जिससे कि हम भगवान को पा सकते हैं, ईश्वर को पा सकते हैं, तो उसमें उन्होंने तन का भी प्रयोग किया। और उसको पाने के लिए तन को स्वस्थ रखना जरूरी था, तो उसके लिए भी कुछ उन्होंने डिवाइसेस बनाई, जैसे कि हम योगा एक्सरसाइज कहते हैं, कॉमन भाषा में योगा कहने लगे, पर वैसे तो योगा की एक्सरसाइजेस हैं, वही अभ्यास हैं योगा के, जिससे कि हम अपने तन को स्वस्थ रखते हैं, मन को पूरी तरह से अपने वश में करके हम ईश्वर को पा सकते हैं। तो इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि योगा की इम्पोर्टेंस न केवल अध्यात्म में बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में भी बहुत ज्यादा लाभदायक है। मन का भी एकाग्रीकरण उन एक्सरसाइज के साथ करते हैं, जैसे कि हमने सोचा कि हमने इस बाह को फैलाया, हम ये सोच रहे हैं कि हम इस बाह को फैला रहे हैं और हमारी ऊर्जा इस बाह में जा रही है, मतलब हमने मन को भी उस एक्सरसाइज के साथ ले लिया। तो जो असली योग साधन वाली एक्सरसाइजेज हैं उनमें मन को भी साथ लेना चाहिए, खास करके ये एक्सरसाइज एक तरह का प्राणायाम।

0: बन जाती हैं अगर हम मन को भी उस एक्सरसाइज के साथ ले रहे हैं। जैसे कि अगर हमने सांस भरना है तो हम सांस भर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हम अपने को कड़ा कर रहे हैं, अपने पूरी बॉडी को टाइट कर रहे हैं, उसमें एनर्जी भर रहे हैं। अगर इस तरह का मन में भाव लाते हैं तो मन भी एकाग्र हो रहा है, साथ में तन में भी एक्सरसाइज हो रही है और उससे तन को तो फायदा होता ही, बॉडी को साथ साथ मन भी शांत होता है।
1: वर्तमान समय में जब पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, ऐसे में योग का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के योगासन न केवल हमारे शरीर को, मन को स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रखते हैं, बल्कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाने में सहायक होते हैं।
2: योगाभ्यास तनाव से मुक्ति दिलाता है। योग केवल साधु संतों, ऋषि मुनियों के लिए ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी वर्ग का क्यों ना हो, व्यापारी, किसान, नौकरी पेशा, मजदूर या फिर विद्यार्थी, सभी के लिए है ये अनुपम देन। इस संबंध में प्रीतम सिंह जी के विचार आइए सुने।
3: जब भी हम योग की बात करते हैं तो एक साधारण जनमानस जो है योग का मतलब एक तपस्या या प्राचीन ऋषियों मुनियों से जोड़कर उस तरीके से उसको देखने की कोशिश करता है, तो उसे ये योग फिर सहज नहीं लगता है, क्योंकि वो एक तपस्या के भाव में इन भावों से उसको सोचता है जो कि उसको साधारण एक व्यवहार की जिंदगी से थोड़ा हटके लगता है। लेकिन वास्तव में जिस तरीके से आप योग को जो आदमी फॉलो कर रहा है, योग के साथ जो जी रहा है आज की डेट में, हम लोग योग करते हैं तो व्यवहारिक रूप से अगर देखा जाए तो ये एक तपस्या ना होकर ये खुद को साधने का एक कला है। तो साधारण जीवन के साथ इसको जीना तो और भी आसान हो जाता है। योग के साथ आपकी मुश्किलें, जो दिन प्रतिदिन की मुश्किलें हैं, जो जरूरतें हैं या जो स्ट्रेसेज हैं, जो तनाव हैं, उन सबके साथ आप जो है लड़ सकने में अपने आप को सक्षम बनाते हैं। योग आपको न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी आपको संतुलित और एक ज्यादा परिपक्व आदमी बनाता है, और एक व्यावहारिक जीवन में सही तरीके से, यानी कि एक हमारे चारित्रिक दृष्टि से भी हमारा विकास करता है। शारीरिक दृष्टि से निश्चित रूप से करता है, बल्कि एक चारित्रिक और व्यावहारिक दृष्टि से भी हमारा विकास करता है, जिससे हमें साधारण जीवन, अपना जीवन यापन करने में, हमें डिसीजन लेने में, निर्णय लेने में या चीजों को सही तरीके से उनका कार्यान्वयन करने में, हमें योग के माध्यम से तो हम ये सारे काम बेहतर तरीके से कर सकने में सक्षम होते हैं।

योग का उद्देश्य है जीवन का सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास से तात्पर्य शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास करना। योग हमें वो दिव्य दृष्टि प्रदान करता है जिसके द्वारा हम सांसारिक समस्याओं के समाधान के साथ साथ आंतरिक शंकाओं का भी समाधान प्राप्त कर सकते हैं और

0: उत्पन्न विवादों को सरलता से समाप्त कर सकते हैं, खोई हुई एकाग्रता को प्राप्त कर सकते हैं।
1: प्राणायाम आदि के दैनिक अभ्यास से इंद्रियों को हम शक्तिवान बना सकते हैं। प्राचीन योग को विश्व स्तर पर मान्यता दिलाने में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। योग और मानव जीवन में उसके महत्व पर आइए सुने श्री नरेंद्र मोदी जी का ये संदेश।
2: भारतीयों को आयुष्मान बनाने में योग का जो महत्व है उसे भी हम भली भांति जानते हैं, समझते हैं। योग हमारे देश में हमेशा से रहा, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। लेकिन ये भी सच है कि आधुनिक योग की जो यात्रा है वो देश के ग्रामीण और आदिवासी अंचल में अभी उस तरह नहीं पहुंची है जैसी पहुंचनी चाहिए थी। और हम सबको मिलकर के आधुनिक योग की यात्रा शहरों से गांवों की तरफ, जंगलों की तरफ, दूर सुदूर आखिरी इंसान तक ले जानी है, गरीब और आदिवासी के घर तक योग को पहुंचाना है। क्योंकि ये गरीब ही हैं जो बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा कष्ट पाता है, ये बीमारी है जो गरीब को और गरीब बना देती है। इसलिए योग की स्थापना का मतलब है उन्हें बीमारी और गरीबी के चंगुल से बचाना। सिर्फ सुविधाओं से जीवन आसान बनाना काफी नहीं है, दवाइयां और सर्जरी का ही समाधान पर्याप्त नहीं है। आज के बदलते हुए समय में इलनेस से बचाव के साथ साथ वेलनेस पर हमारा अधिक फोकस होना जरूरी है। यही शक्ति हमें योग से मिलती है, यही भावना योग की है, पुरातन भारतीय दर्शन की भी है। योग सिर्फ तभी नहीं होता जब हम आधा घंटा जमीन या मेट पर या दरी पर होते हैं। योग अनुशासन है, समर्पण है और इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है। योग आयु, रंग, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, अमीरी, गरीबी, प्रांत, सरहद के भेद, सीमा के भेद, इन सब से परे है। योग सबका है और सब योग के हैं।

योग वास्तव में भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है। आइए हम सब यथार्थ में इसका हिस्सा बने, शरीर और आत्मा की शुद्धि के लिए योग को अपनाएं, मानव से मानव को जोड़ने का संकल्प करें।

अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम करें योग रहे निरोग। आलेख जयसिंह का था, वाचन स्वर देवराज कृष्ण दीक्षित और संजय सारस्वत के थे।

0: रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं देश गान।

अभी आप देशगान सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग यमन में, ख्याल गायन। कलाकार हैं विदुषी अनिता सेन, तबले पर इनके साथ संगत की है अब्दुल सलाम ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग यमन में ख्याल गायन। कलाकार थी विदुषी अनिता सेन। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

एफएम 102.9 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं अब समाचार होंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में होंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग

0: तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप H में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से, जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a common